सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन साहस, वाचन रचना सिंह का है।
1: साहस इंसान का एक मानवीय गुण है जो हमें आपात स्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। यह विशेष रूप से तब जब हम विपरीत परिस्थितियों में किसी मुश्किल कार्य को करने की ठान लेते हैं, तब यही साहस हमें बल प्रदान करता है। एक साहसी व्यक्ति कम अवसर, कम संसाधन होते हुए भी बड़ा से बड़ा निर्णय कर लेता है। साहस की भावना के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। साहस हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें पकड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साहस का मतलब यह है कि समझदारी और विवेक के संयोजन के साथ सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करना चाहिए। व्यक्तियों ने अपने साहस और संकल्प के बल पर ही सफलताएं अर्जित की। दुश्मनों के मुकाबले संख्या बल में कम होने के बावजूद

0: बावजूद पोरस छत्रपति शिवाजी रानी लक्ष्मीबाई अपने साहसिक गुणों के कारण ही इतिहास में अमर हो पाए। मनुष्य के सभी गुणों में साहस सर्वोत्तम गुण है, क्योंकि यह सभी गुणों की जननी है। इतिहास में उसी की गाथा दर्ज हो पाई है जिसने समय पर सही निर्णय लेते हुए साहस का परिचय दिया। संकट में साहस से काम लेना ही आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। बिना निराश हुए पराजय को सह लेना साहस की सबसे बड़ी परीक्षा है। साहसी व्यक्ति को यदि कभी पराजित होना भी पड़ता है तो उसकी पराजय क्षणिक होती है, अंत में विजय भी उसी के हाथ लगती है। जीवन में आने वाले संकटों को वही आसानी से पार कर सकता है जिसमें साहस के साथ कठिन निर्णय लेने की क्षमता हो। जो पानी से डरते हैं उनके ही डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। लहरों से खेलने का अभ्यास करने वालों को डूबने का खतरा नहीं होता। महान दार्शनिक सुकरात अपने सत्य और साहस के बल पर हमेशा सत्य ही स्वीकारते और बोलते थे, जिसे हम सत साहस कहते हैं। साहस शरीर की शक्ति का नाम है तो सत साहस आत्मा की शक्ति का नाम है। प्रबल विचार शक्ति के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहना सत साहस है। इंसानियत, देश, समाज और सत्य के लिए मौत को हंसते हुए गले लगाने में भी साहस ही आलोकित होता है। जब हमारे अंदर संवेदना अपनी पूर्णता की राह पर बढ़ती जाती है, तब सत साहस हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हम अज्ञान, अनाचार, हिंसा, अमानवीयता और क्रूरता को परास्त कर डालते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डी मैकडॉनल्ड के अनुसार कौन क्या करता है और कितना सफल होता है, इस बात का महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि किसने कितना ऊंचा आदर्श अपनाने में सत्य निष्ठा और साहस को अपना आधार बनाया। जहां इस स्तर की मजबूती होगी वहीं अवरोधों से लड़ने और लंबे समय तक अविचल भाव से लक्ष्य तक चलते ही रहने का साहस भरा विश्वास पाया जाएगा। हम कह सकते हैं कि साहस एक जीजी विषय है, संकटों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने की। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखे श्लोक के अनुसार साहस अविषाद शक्ति शौर्य धैर्य आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इस प्रवृत्ति से समाज एवं मानवता को लाभ पहुंचता है। साहस का सकारात्मकता से गहरा रिश्ता है। सकारात्मकता नैतिक साहस को बढ़ाती है। गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अन्याय के खिलाफ विशाल जनमत को खड़ा किया। यह साहस के बिना संभव नहीं था। दशरथ मांझी जैसे साधारण व्यक्ति का एक साहसिक फैसला ही उन्हें भीड़ से अलग एक नई पहचान देता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जो मनुष्य साहस नहीं छोड़ता वह कभी पराजित नहीं होता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, साहस, वाचन स्वर रचना सिंह का था। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। कृषि चर्चा में आज का विषय है अमरूद के रोग एवं रोकथाम। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। अमरूद के जब आप बाग लगाते हैं तो उसमें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वैसे तो अमरूद बहुवर्षीय पेड़ है, लेकिन इसमें समस्याएं इतनी होती है कि 5 या 6 साल ही आप इससे फल प्राप्त करते हैं यदि आप हाइब्रिड अमरूद के बाग लगाते हैं। तो इसमें रोगों की जो समस्या होती है, उन रोगों से कैसे आप निजात पाएंगे, कैसे रोगों की पहचान करेंगे, कौन कौन से उपाय करेंगे, इस बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अमरूद में जो महत्वपूर्ण रोग है वो है उकठा रोग। उकठा रोग लगभग प्रत्येक पेड़ में और अधिकांश पौधे में भी दिखाई देता है। उकठा का मतलब होता है कि इसमें जो है पौधे सूखने लगते हैं, अचानक आपको पता नहीं चलता है, और पौधे के जड़ भाग पे संक्रमण जब होता है तो पौधे सूखने लगते हैं। उसके बाद आप देखते हैं

0: हैं कि पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, छाल भी बदरंगी हो जाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं। प्रभावी पौधों को यदि आप काटें या जड़ को देखें तो वहाँ एक विशेष काला पदार्थ जमा रहता है या जड़ जो है काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इससे पेड़ को बचाने के लिए आप जो बीमार या खराब टहनियाँ हैं उनको काट करके हटा दें। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में मिला करके आप बरसात के पहले प्रति पेड़ प्रयोग करें। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो है उसे आप 5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलावें और उसका प्रयोग करें। पेड़ के चारों ओर मिट्टी में चूना और समुचित मात्रा में खाद भी दे दें। कार्बेंडाजिम 0.3% दवा जो है उसका भी प्रयोग करें। इस घोल से आप जड़ों को सिंचित करें, यानी कि 3 ग्राम जो दवा है उसे 1 लीटर पानी में घोल बनावें कार्बेंडाजिम की, और उससे जो है वो आप सिंचाई करें। फलों पर भी कुछ रोग लगते हैं जिनमें फल कैंकर महत्वपूर्ण है। कैंकर जो है कैंसर जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है। इसमें जो फल होते हैं उनके ऊपर कुछ खुरदरे फफोले बनते हैं जो पहले छोटे होते हैं, बाद में वे बड़े हो जाते हैं, और जब व्यास उनका बड़ा हो जाता है तो कच्चे और अधपके फल जो हैं वे कड़े हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं, सड़ने की भी प्रक्रिया इनमें शुरू हो जाती है। तो इसके लिए भी वही दवा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% के घोल का आप 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें, 2 या 3 बार छिड़काव करें। फल सड़न रोग भी लगता है और खास करके ये बरसात के मौसम में ज़्यादा लगता है। इसमें अमरूद की पत्तियों पर भूरे या काले धब्बे पाए जाते हैं। कभी कभी बीमार ग्रस्त कुछ उत्तक भी पैदा हो जाते हैं पौधे के ऊपर। उसके बाद पेड़ जो है या उसकी टहनियाँ जो है वो सूख करके गिरने लगती हैं, उनके ऊपर भूरे धब्बे भी बनते हैं। फलों के ऊपर जो भूरे धब्बे बनते हैं वे बाद में सड़न पैदा करते हैं और फल जो हैं जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बीमार ग्रस्त होते हैं लेकिन वो ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं, बाद में वे काटने पर पता चलता है कि सड़ गए हैं। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आवश्यक ये है कि कुछ आप उपाय करें। वे उपाय यदि आप पहले से करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। एक तो बागीचे की साफ सफाई रखें, पेड़ जो है वो सही है कि नहीं उसकी देखभाल करते रहें, और समय समय पर कार्बेंडाजिम दवा का प्रयोग करें जो कि 0.3% का ही प्रयोग किया जाता है। 1 लीटर पानी में 3 मिलीग्राम की दवा जो है उसका आप प्रयोग करें, उसका जड़ों के नज़दीक प्रयोग करें तो काफ़ी लाभ होता है।
1: कृषि चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था अमरूद के रोग एवं रोकथाम। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की

0: 10X बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

पंडित डीवी पलुस्कर के स्वर में आप ये भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम वंदना में सुनिए शब्द बख्शी सिंह रागी और साथियों के स्वर में।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ।
1: एपिसोड 113।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस पाठ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है मलेरिया से बचाव के तरीके। कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर संजीव कुमार से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर संजीव कुमार, प्रोफेसर एवं हेड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग IGIMS पटना। आप साथ में नोडल ऑफिसर हैं नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर IGIMS पटना में। श्रोताओं को हम बताते चलें कि आज का हमारा विषय है मलेरिया से बचाव के तरीके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मलेरिया होता कैसे है, और अगर होता है तो कैसे सावधानियाँ बरती जाएँ और बचाव के क्या क्या तरीके अपनाए जाएं।
2: मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नाम के एक पैरासाइट्स है जिसके बॉडी में प्रवेश करने से होती है, और इस पैरासाइट्स को फैलाने वाला जो चीज है वो है फीमेल एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, जो रात के टाइम में, शाम के टाइम में और रात में, ये जो है घर घर में, खासकर जहाँ पर गंदे जगह रहते हैं, ये हर एक के घर में लगभग, जहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं रहती है वहाँ पर फैले रहते हैं, और ये जिसको काटते हैं साथ साथ अपना सलाइवा के साथ साथ ये स्प्रेड कर देते हैं, और इस बॉडी के अंदर में जाने के बाद से ये सबसे पहले उसके लीवर में घुस जाते हैं, और लीवर में जाकर हेपेटोसाइट्स, उसके जो सेल्स होते हैं, उसको डैमेज करने लगते हैं, और अल्टीमेटली मरीज जो है मलेरिया का शिकार हो जाता है, उसके लक्षण आने लगते हैं, फीवर और बहुत सारे चीज।
1: जी, तो कई बार होता है कि मलेरिया में रिपीटेटिव बुखार आता है, तब लोग समझ पाते हैं कि अच्छा मलेरिया हुआ होगा, तब हम टेस्ट करवाएं। तो शुरुआत में कैसे पता चले लोगों को कि ये मलेरिया के लक्षण हैं? क्योंकि बुखार आता है तो वो तो दवाई लेकर के ठीक हो जाते हैं।
2: देखिए, ये इस तरह की समस्याएं तो रहती है, जब भी किसी आदमी को बुखार लगता है तो एक लिस्ट ऑफ द डिजीज रहती है जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकती है, वायरल हो सकती है। तो ये जब तक इसको जांच करके देखा नहीं जाए और उसका हिस्ट्री नहीं पता रहे कि भाई ये मच्छर वाले इलाका में रहता है या ये मच्छरदानी लगा कर रहता है, कितना सावधानी से रहता है, तो एक तरह से उसकी हिस्ट्री और उसके उसके दिनचर्या के आधार पर हम लोग पता लगाते हैं कि इसको क्या हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि मलेरिया का जाँच करके हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारा किट रहता है जिसके थ्रू जो है हम लोग टेबलेट का टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि मलेरिया इसको है या नहीं है।
1: जी, तो मलेरिया से बचाव के क्या तरीके हों और हो जाने के बाद कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए?
2: मलेरिया से बचने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है फुल स्लीव का ड्रेस पहने, जिससे कि आपको मच्छर को काटने के लिए जगह ही कम बचे। दूसरी बात जरूरी है कि आप लाइट कपड़ा पहने, क्योंकि डार्क कपड़ा जो है वो मच्छर को अट्रैक्ट करता है। तीसरा चीज़ है कि शाम में या रात में जब भी निकलें तो अपना मॉस्किटो रिपेलेंट लगा कर निकलें, और अगर घर में है तो अपना मच्छरदानी लगाइए और मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कीजिए। ये बचाव ही मेन उसका उपाय है।
1: जी, और दवाइयाँ कौन कौन सी लेनी चाहिए, और हॉस्पिटल जाने की जब नौबत आ जाए तो उसमें क्या किया जाए?
2: दवाइयाँ तो अपने से नहीं लेना चाहिए। जब भी अगर मलेरिया डायग्नोस हो जाए तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और वहाँ से उसे संबंधित दवा लेना चाहिए, क्लोरोक्विन और भी बहुत सारे दवाइयाँ, जिसके आधार पर जो कितने डोज में खाना है, ये करना है, ये सब जो है डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किस सीवियरिटी का है। क्योंकि अगर बात किया जाए मलेरिया का तो उसमें भी कई तरह के होते हैं कि, और उसमें सीवियर वैरायटी के मलेरिया होते हैं, तो किस ग्रेड का है उस चीज़ को समझना है और उसके आधार पर ही दवा लेना चाहिए। दवा बिना चिकित्सीय सलाह से नहीं लेना चाहिए।
1: जी, डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और

0: और मलेरिया से बचाव के तरीके के बारे में इतनी अच्छी जानकारियों को आपने साझा किया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। विषय था मलेरिया से बचाव के तरीके। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार से चंद्रमणि कुमार सिन्हा की बातचीत। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम हालचाल आप सुनेंगे सुबह के 7:05 पर। पॉप म्यूजिक का प्रसारण होगा सुबह के 7:15 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह के 7:25 पर। शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे डॉक्टर श्याम मोहन का तबला वादन, ताल 3 ताल।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा दिन के 9:10 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी का प्रसारण होगा दिन के 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी का प्रसारण समय होगा दिन के 10:15 पर। बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली आप सुनेंगे दिन के 10:30 पर।

फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण होगा दिन के 11 बजे। बिहार का लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम रूपक का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। समवेत गान शिक्षा ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दोपहर 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय होगा शाम के 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा शाम के 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात के 8:00। सुगम संगीत का प्रसारण होगा रात के 8:30 पर। सुगम संगीत में आप सुनेंगे गीत सुनीता जोशी की आवाज में। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10:00। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत और हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति सुरक्षा संबद्धान् विषयान् समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं सम्प्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान् सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य एषा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा संपर्क शिक्षा पारस्परिक जनसंबंधादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च संभाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतम वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय, पूर्वीय मध्यप्रदेशाय, विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इण्डियन् प्रीमियर् लीग् क्रिकेट् स्पर्धामालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट् क्रीडाङ्गणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस् अय्यरेण अर्जितानाम् एकोत्तरशतधावनाङ्कानां बलेन पञ्जाब किङ्ग्स् दलेन लखनऊ सुपर जायण्ट्स् दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धापुरुषः घोषितः।

0: अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे सार्धद्विवादने मुम्बई इण्डियन्स् दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते, ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमरीका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ

उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मई है। आज जिन श्रोताओं का जन्मदिवस है उन सभी श्रोताओं को आकाशवाणी पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में अब आपको कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों के जन्मदिवस से अवगत कराते हैं। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया, इनका जन्म 24 मई 1819 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा, इनका जन्म 24 मई 1896 ईस्वी में हुआ था। काजी नजरुल इस्लाम, प्रसिद्ध बंगला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक थे, इनका जन्म 24 मई 1899 ईस्वी को हुआ था। बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, इनका जन्म 24 मई 1954 ईस्वी को हुआ था। भारतीय थल सेना के जांबाजों में से एक सुधीर कुमार वालिया, इनका जन्म 24 मई 1969 ईस्वी को हुआ। श्रोता मित्र, कार्यक्रम में हम महत्वपूर्ण लोगों के जन्मदिवस से अवगत हो रहे थे। कार्यक्रम में हम आगे और भी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम हालचाल में फिर से आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम में अब जानते हैं आज का इतिहास और अवगत होते हैं कि क्या छुपा था, क्या छुपा है आज के इतिहास में। चौबीस मई 1994 ईस्वी को मीना सऊदी अरब में हज से जुड़े एक समारोह के समय भगदड़ मच जाने से 250 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। 24 मई सन 2000 में दक्षिण लेबनान से 22 साल का खूनी दौर समाप्त कर इजरायली सेना वापस लौटी। 24 मई सन 2002 ईस्वी में नेपाल में नेपाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को नेपाली कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया। इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने पश्चिम एशिया शांति योजना को स्वीकार किया 24 मई 2003 ईस्वी को। 24 मई 2005 ईस्वी को एनबी इंक बेयर मंगोलिया के राष्ट्रपति चुने गए। 24 मई 2007 ईस्वी को एमा निकोलसन रिपोर्ट यूरोपीय संघ की मदद से संसद में पारित किया गया। 24 मई 2008 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 6% बढ़ाने का फैसला किया था। श्रोता मित्र, आप ये जान रहे थे, कार्यक्रम में आप जान रहे थे आज के दिन का इतिहास। कार्यक्रम में हम आगे और भी चर्चा करेंगे। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हारी भोली।

श्रोता मित्र, इसी के साथ हालचाल का हमारा आज का अंक यहीं समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हालचाल। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पॉप म्यूजिक। सबसे पहले पॉप म्यूजिक सुनिए अलीसा चिनॉय की आवाज में।

पॉप म्यूज़िक आप सुन रहे थे शाजिया हसन की आवाज़ में। इसी के साथ पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आप सुनिए डॉक्टर श्याम मोहन का तबला वादन, ताल तीन ताल।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर श्याम मोहन का तबला वादन ताल तीन ताल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात।

संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर

0: सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय

0: चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी

0: तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
1: सर्टेनली विल बी एबल टू गेट द सक्सेस।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
6: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
2: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडर

0: एशियन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ता में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमेरिका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
0: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक सीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to hold bilateral talks with U.S. Secretary of State Marco Rubio in New Delhi today. Ayushman Bharat scheme to be rolled out in West Bengal from July. Swasthya Sathi beneficiaries to be included. Maharashtra SIT files charge sheet against 4 accused in Nashik TCS sexual assault and religious conversion case. U.S. President Donald

0: फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अमन के अलावा सलामती से मुतालिक उमूर समेत दीगर मामलात पर भी वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड के वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत की गरज से 4 दिन के दौरे पर कल भारत पहुंचे। उन्होंने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें दिफा, अहम टेक्नोलॉजीज, तिजारत और सरमायाकारी के अलावा तवानाई की फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात समेत बहुत से शोबों में दो तरफा तआवुन में ठोस पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम की। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि भारत और अमरीकी आलमी भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। वजीर आजम ने अमन कोशिशों के लिए भारत की मुसलसल हिमायत का इरादा किया और मुजाकिरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की अपील को दोहराया। वजीर खारजा जनाब रूबियो ने मगरबी एशिया की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी उमूर पर अमरीकी मौकफ साझा किए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को मुनक़िद होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए क्वाड के विजन को मद्देनजर रखते हुए वज़राए खारजा तरजीह शोबों में क्वाड के ताउन को आगे बढ़ाने के बारे में ख्यालात का तबादला करेंगे। क्वाड के जारी इकदाम पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी तौर पर मुतालिका दीगर बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर करेंगे। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से भारतीय कारोबारी रहनुमाओं के एक वफ्द के साथ कैनेडा के 3 रोजा दौरे पर होंगे। वजारत तिजारत ने मुत्तला किया है कि तिजारत, सरमायाकारी और भारत कैनेडा जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहदे CEPA के मुजाकिरात को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में दो तरफा मसरूफियात में हिस्सा लेंगे, जो इस दौरे का मरकजी महवर होगा। इस साल मार्च में कैनेडा के वजीर आजम मार्क कार्नी के दौरे भारत के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर दस्तखत किए गए थे। मुजाकिरात का पहला दौर मार्च में वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को खत्म हुआ था। इस दौरे के दौरान ओटावा में मुजाकिरात के अगले दौर का इनेकाद किया जाएगा। दोनों फरीक इस साल के आखिर तक एक तवाजुन और बाहमी तौर पर फायदेमंद CEPA को जल्द हतमी शक्ल देने की समत में काम कर रहे हैं, जिसका मुश्तरका मकसद 2030 तक दो तरफा तिजारत को 70 अरब कैनेडियाई डॉलर तक पहुंचाना है। मगरबी बंगाल में इस साल जुलाई से आयुष्मान भारत स्कीम का आगाज होगा। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता में सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा के साथ वर्चुअल वसीले से एक मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत पहले से मौजूद मुस्तफिदीन को आयुष्मान भारत स्कीम में जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में एक मफाहमत नामे पर जून में नई दिल्ली में दस्तखत होंगे। जनाब अधिकारी ने कहा कि मगरबी बंगाल में PM जन औषधि केंद्रों की तादाद 117 से बढ़ाकर 469 करने के सिलसिले में मरकज को एक तजवीज भेजी गई है। वजीर आला ने यह भी कहा कि अलीपुर द्वार, कालिम्पोंग और जुनूबी दिनाजपुर में नए मेडिकल कॉलेजेस और शिमाली बंगाल के लिए एक नए एम्स के सिलसिले में तजावीज भी मरकजी हुकूमत को भेजी जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में TCS फैसिलिटी के खिलाफ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती और मजहब तब्दील कराने की कोशिश करने के मामले में नासिक की एक अदालत में 1500 सफात पर मुश्तमिल एक फर्द जुर्म दायर की गई है। SIT के चीफ संदीप मिटके के मुताबिक ये फर्द जुर्म 4 मुलजिमान

0: दैनिक दानिश शेख निदा खान, मतीन पटेल और तौसीफ अत्तार के खिलाफ कल दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले से मुतालिक 7 से 8 अफराद के खिलाफ इजाफी फर्द जुर्म अगले 3 से 4 रोज के दौरान दायर की जाएगी। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ सेहत और तिब्बी पेशेवर अफराद की तरबियत यकसां तौर पर अहम है। उन्होंने ये बयानात कल नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीर से खिताब करते हुए कही। जनाब नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टरों को हिफ्जान सेहत के निज़ाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देनी चाहिए। वहीं बुनियादी ढांचे और दीगर सहूलियात को मुल्क के लिए हार्डवेयर के तौर पर काम करना चाहिए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क के उभरते हुए तिब के मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन को एजाज देकर भारत अपने हिफ्जान सेहत के इको निज़ाम के मुस्तकबिल को एक शक्ल दे रहा है। मेडिकल साइंसेज में इम्तहानात के कौमी बोर्ड के बारे में बात करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट ने एक मजबूत ब्रांड तामीर किया है जो कि हिफ्जान सेहत में पेशेवराना सलाहियत, मफाहमत और साख को पेश किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरीज की देखभाल में और ज्यादा सहूलियात पैदा करने और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए 11 नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हुकूमत वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए VBG राम जी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये कर दिया है। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई भी फर्दो फरीक, तंजीम या कोई इदारा अगले माह की 21 तारीख तक सलाह मशवरे के लिए जाब्तों के मसौदे पर अपने एतराजात या तजावीज पेश कर सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जीराम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा 2005 की जगह ले ली है। इस कानून का मकसद एक माली साल में कानूनी रोजगार की जमानत 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों के मसौदे सेक्शन 33 और इस कानून की दीगर मौजूदा शिकों के मुताबिक वज़े किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि उबूरी शिकों के जाब्ते कौमी सतह की कायमा कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी कौंसिल के जाब्ते, इंतजामी अखराजात के जाब्ते व शिकायात के इजाले के से मुतालिक जाब्ते समय जाब्तों के मसौदे सलाह मशवरे के लिए अवामी सतह पर रखे गए हैं। नए कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेह उजरत की अदायगियों पर काफ़ी जोर दिया गया है। इस कानून में बेरोजगार भत्ते की भी गुंजाइश फराहम की गई है, बशर्ते के मुकर्रर वक्त के अंदर काम नहीं फराहम किया जाता। VBG एक्ट 2025 इस साल 1 जुलाई से निफाज के साथ तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शुरू करने के लिए इस माह की 11 तारीख को नोटिफाई किया गया था। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और खित्ते में दीगर हलीफ मुल्कों के साथ फोन पर गुफ्तगू के बाद आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक मुज़ाकरात हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पेशरफ्त का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे के हतमी पहलुओं और तफसीलात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है और जल्द ही उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल के साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के लीडरों के साथ बातचीत की थी। इससे पहले ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सरकारी टेलीविजन पर बताया कि पिछले हफ्ते अमरीका और ईरान के मौकफ में कुछ तब्दीलियां आई हैं, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि इसका मतलब ये नहीं कि अहम उमूर पर समझौते हो जाएंगे। उन्होंने अमरीकियों पर मुतजाद बयानात देने का इल्जाम लगाया। ईरान 8 अप्रैल को जंगबंदी पर मुत्तफिक हुआ था और इसके बाद से वाशिंगटन और तेहरान एक तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर बातचीत में मसरूफ हैं। वाशिंगटन में सदारती कॉम्प्लेक्स के नजदीक गोलियों के चलने की आवाज सुनने के बाद व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी के ताल्लुक से खौफ और हिरास पैदा हो गया। इससे कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। अमेरिका की खुफिया सर्विस ने पेश आए इस वाकये के नजदीक एक मुश्तबा शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया और अफरा तफरी के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि वो इस वाकये की तफसीलात हासिल करने के बाद अवाम को जानकारी

0: फराहम करेंगे। जमहूरिया कांगो में हुकाम ने बताया है कि मुल्क में इबोला वायरस के फैलने से मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 204 हो गई है। मुल्क की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक 204 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि इबोला वायरस के कुल 867 केसेस सामने आए हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के हिस्सों में सख्त गर्मी की लहर की पेशगोई की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की सूरत हाल रहने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में रात में गर्मी की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज अंडमान और निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में गरज चमक का इम्कान है। गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड के एक नए कौमी रिकॉर्ड टाइमिंग के साथ 2026 के एथलेटिक्स फेडरेशन कप में मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता। उन्होंने अपने सबका जाति बेहतरीन रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा, जो 10.17 सेकंड का था और 10.16 सेकंड के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफिकेशन निशाने को आसानी से उबूर कर लिया। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड की टाइमिंग के साथ चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि प्रणॉय प्रमोद ने 10.29 सेकंड में अपना मुकाबला जीतकर कांसे का तमगा हासिल किया। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की 101 रन की शानदार कारकर्दगी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज दो मैच होने हैं, जिसमें पहला मैच दोपहर 3:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान होगा और दूसरा मैच शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत दौरे से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की इस सिलसिले में शह सुर्खी है, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, भारत अमरीका आलमी अमन व तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, वजीर आजम ने 51,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे तकसीम किए, कहा विकसित भारत में नौजवानों का अहम रोल। अखबार ने मुल्क में जारी शदीद गर्मी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है, अगले चंद दिनों में दिल्ली NCR समेत मुल्क के बड़े हिस्सों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं। अखबार प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जमान RP सिंह के इस बयान को सफे अव्वल पर शाया किया है कि संगीन माली और इंतजामी बहरान की तरफ बढ़ रहा है पंजाब।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर SJयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ बाहमी मुज़ाकरात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम जुलाई से मगरबी बंगाल में शुरू होने जा रही है, इसमें स्वास्थ्य साथी मुस्तफिदीन को शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र SIT ने नासिक PCS जिनसी ज्यादती और मजहब की तब्दील के केस में 4 मुलजिमान के खिलाफ फर्द जुर्म दायर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलने समेत ईरान के साथ समझौते पर बड़ी हद तक बातचीत हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली समेत शिमाली, वस्ती और मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी रहने की पेशगोई की है। और एथलेटिक्स में रांची में गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप में एक नए कौमी रिकॉर्ड के साथ मर्दों के 100 मीटर मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एआई नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को एआई हब बनाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एआई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने पटना में 2 दिवसीय बिहार एआई समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि एआई का इस्तेमाल बढ़ने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आधारित विकास से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
1: लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, यह हमारे नौजवान यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं होगा।
0: श्री चौधरी ने कहा कि एआई के माध्यम से बिहार देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एआई का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में देश भर के एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप डेवलपर्स और शोधकर्ता समेत हजारों की संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराकर उत्पादन में बढ़ोतरी लाना लक्ष्य है।
2: अभी जो योजना है, नहरों का पुनर्स्थापन भी होगा, उसमें

0: कृषि कार्य में जो किसानों के आवागमन की सुविधा के लिए कलवर्ट बनाने हैं वो भी हम लोग बनाएंगे, और भी जो किसानों के हित के लिए है कुछ सड़क बनाना है उसको भी हम बनाएंगे, जिससे न सिर्फ सिंचाई की सुविधा होगी बल्कि कृषि उपज को बाजारों तक ले जाने में भी सुविधा मिलेगी।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी का मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पटना सिटी में आयोजित दो दिवसीय दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारें समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और उनके ही बल पर पार्टी का विस्तार हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला वैचारिक संगठन भी है। इस अवसर पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद समेत कई सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बिहार विधान परिषद में जदयू के ललन सर्राफ और भाजपा के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदन का उपनेता मनोनीत किया गया है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुशंसा पर इन नेताओं को उपनेता की मान्यता दी है। वहीं सभापति ने संजय सिंह को सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक जबकि जनक राम को उप मुख्य सचेतक बनाया है। नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक मनोनीत किया गया है। संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 15वीं विधानसभा में ओबरा से सदस्य रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी गई है और सदस्यों की सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि सोम प्रकाश सिंह 2010 में औरंगाबाद जिले के की ओबरा विधानसभा सीट से निर्दलीय निर्वाचित हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी रहे जदयू उम्मीदवार प्रमोद चंद्रवंशी ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2014 में पटना उच्च न्यायालय ने सोम प्रकाश सिंह के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली 28 जनवरी को पटना हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विधानसभा सचिवालय ने सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद कर दी है। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आगामी 4 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी उनकी जगह पर मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगी। युवा रोजगार और कौशल विभाग पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थानों में आवेदन तथा स्लॉट बुक कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मोक्ष धाम बनाएगी। इसका निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रत्येक शवदाह गृह के निर्माण में 22 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 7 निश्चय 3 के तहत किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार के 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र परिजनों को दे दिए जाएंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।

0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रदेश का दक्षिणी भाग लगातार लू की चपेट में चल रहा है, हालांकि उत्तर बिहार में नमीयुक्त हवा से थोड़ी राहत है। पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। औरंगाबाद, भभुआ और बक्सर में लू की चेतावनी जारी की गई है। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा गर्म स्थान डेहरी रहा, जहां अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.5, शेखपुरा का 43.2, औरंगाबाद का 43.1 और गया का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिणी भाग का मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। दूसरी तरफ प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी दी गई है। अररिया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है।
4: दिनांक 24 मई, राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
2: राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक और आर्थिक विकास में व्यापारिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के आर्थिक विकास में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार, उद्योग जगत और समाज के बीच मजबूत साझेदारी से ही विकास को गति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में 11,000 संपर्क विहीन बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 14,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रामीण कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विभाग ने राज्यव्यापी सर्वेक्षण अभियान चलाकर छूटी हुई बसावटों की पहचान की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स

0: के बीच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इधर कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। रांची में आयोजित 29वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में बिहार के विभास्कर कुमार ने 4था स्थान प्राप्त किया। विभास्कर ने 10.39 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी की। वहीं पंजाब के गुरिंदरवीर सिंह ने 10.09 सेकंड में यह दौड़ पूरी कर पहला स्थान प्राप्त किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पटना में पेट्रोल 110 रुपये और डीजल 96 रुपये के पार। दैनिक जागरण मौसम की खबर पर लिखता है, झुलसा रही गर्मी, 40 के पार हुआ पटना सहित 13 शहरों का तापमान। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, नीतीश कुमार को मिलेगा VVIP प्रोटोकॉल, अब रनवे तक जाएगी गाड़ी। प्रभात खबर ने राज्य सरकार के निर्णय पर लिखा है, नीट यूजी में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा। आज अखबार की सुर्खी है, पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, पटना में 114 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय सागर ने कृषि मंत्री विजय सिन्हा के हवाले से लिखा है, एग्री एटेक के तहत 86 लाख किसानों के निबंधन का लक्ष्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए AI नीति बनाई जाएगी। 15वीं विधानसभा में ओबरा से विधायक रहे सोम प्रकाश सिंह की पेंशन बंद, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। सिक्किम उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में, पटना सहित दर्जन भर शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: ना सफाई।
1: स्वच्छता की आवाज आकाशवाणी के साथ।
0: ओ भाई सफाई, ओ बहना सफाई।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हाथ उठाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गजल से।

0: सामीन, अभी आप मिर्ज़ा गालिब की लिखी ये गज़ल सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। चलिए अब करते हैं आज की थोड़ी सी बात, योगा और सेहत। योगा कदीम दौर से चला आ रहा एक ऐसा तरीक़ाकार है जो जिस्मानी, जहनी और रूहानी तंदुरुस्ती का बेहतरीन इम्तिज़ाज है। ये महज चंद जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि तर्ज़ ज़िंदगी और नज़्म ज़ब्त का नाम है जो इंसान को बीमारियों से महफूज रखता है और एक मुतवाजन ज़िंदगी गुजारने में मदद करता है। योगा एक कदीम मशक है जो रोज़मर्रा के तनाव को कम करता है और लचक को बढ़ाकर मजमूई तवानाई को बहाल करता है और सेहतमंद और पुरसुकून ज़िंदगी का हुसूल में मददगार भी बनता है। योगा के मुख्तलिफ हरकात हैं, यानी आसान है, जैसे कि सांस के कंट्रोल करना जिसे कहते हैं प्राणायाम, और मुराकाबा शामिल है इसमें। जो जो असरात हैं वो ये जो असरात हैं प्राणायाम के, ऑक्सीजन के हरकत हैं जो ऑक्सीजन फ्राहम करता है बेहतर तरीके से और आसाब को सुकून बख्शता है। मेडिटेशन या जिसे ध्यान कहते हैं, अरतकाज और मुराकाब जहनी दबाव को कम करने करके दिमाग को वाजे और मुस्बत बनाता है। योगा से जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ, पट्टों के सख्ती वगैरह दूर होती है। ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को भी मुतवाजन रखने में बहुत मददगार होता है। फेफड़ों की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने में माउन होता है। भूख कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। अगर आप योगा करके अपने और योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर शामिल करते हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह बेहतरीन रहेगी और आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो ये थी आज की बात। चलिए अब करते हैं अगले प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और सुनते हैं आज का सेहतनामा। सेहतनामा का आज का मौजू है जिस्मानी निज़ाम सेहत और ग़िज़ाइत। इस मौजू पर डॉक्टर जमाल अख्तर से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू होगी।
1: आदाब सामीन, आपका अंजुमन की आज की खास नशे सेहतनामा में खैर मकदम है। हमारी हुकूमत की ये कोशिश जारी है कि वो आवाम में सेहत की अहमियत को लेकर उन्हें बेदार करे। इसी कोशिश के तहत हुकूमत हर साल नई नई थीम के साथ आवाम को सेहतमंद गिजा और सेहतमंद जिस्म की अहमियत बताने में कोशा है। इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर जमाल अख्तर को मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, सेहतनामा में हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे सामेन के लिए खास वक्त निकाला।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। मैं इस टाइटल पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये टाइटल जिसका नाम सेहतनामा है, इस टाइटल के तहत जैसा कि ये टाइटल दिख रहा है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बेदार करने की कि जो गिज़ा के ताल्लुक से हमारे समाज के अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए।
1: जी, इसी के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सामीन को अच्छी सेहत के बारे में बताएं और उन्हें बेदार करें और वो अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर कर सकें ताकि वो ताहयात सेहतमंद रह सकें। सबसे पहले तो सामीन को बताइए कि इंसानी जिस्म के लिए ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है।
2: मैं बात करूं थोड़ा सा उससे पहले की, गिजा से पहले की, कि एक जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ सेहत का, जिसको यूनानी के अंदर अस्बाब सित्ता जरूरिया के अंदर रखा गया है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में इसको नाफिज कर ले, न कि अपनी सेहत को वो बरकरार रखे बल्कि अपनी सेहत की वो हिफाजत भी कर सके। अस्बाब सित्ता जरूरिया के अंदर छह चीजें रखा गया है, जिसमें पहला है आबो हवा, दूसरा है माकूलो

0: शुरू। तीसरा है हरकत सुकून बदनी, चौथा है हरकत सुकून नफसानी, पांचवा है नीदो बेदारी और छठा है एतबासो इस्तफराग। ये जो असबाबे सित्ता जरूरिया है, अगर इंसान इसको अपनी जिंदगी में नाफिज कर ले तो वो अपनी सेहत को बरकरार भी रह सकता है और सेहत को अपनी हिफाजत भी कर सकता है। इस नाहिये से अगर देखा जाए तो इस असबाबे सित्ता जरूरिया में जो दूसरे नंबर पर है, माकूल व मशरूब, यानी खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजें भी क्या है, इनका असर हमारे जिस्म के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। आज के टाइटल के ताल्लुक से देखा जाए तो जो उसका दूसरा पार्ट है यानी खाने की चीजें, तो इस खाने का जो इफेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि असबाबे सित्ता जरूरिया क्या है, जिस तरीके से मर्ज का सबब है वैसे ही सेहत का भी सबब है। ऐसा नहीं है कि सेहत है तो बगैर किसी सबब के है या सिर्फ मर्ज का काज है, बल्कि जिस तरीके से मर्ज का कोई काज होता है, कोई सबब होता है, ठीक उसी तरीके से सेहत का भी सबब होता है। सेहत में जो गिजा के ताल्लुक से अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में नाफिज करके बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। अब जो बात आती है हमारे इसमें कि गिजा का हमारे जिंदगी के अंदर क्या रोल है, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम के अंदर उम्र को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, पैदाइश से लेकर उसकी 25 साल की उम्र, जिसके अंदर बॉडी क्या है, ग्रोथ करती है। दूसरा जो सेक्शन है उसका, वो 25 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र, और तीसरा सेक्शन है 40 साल से 60 साल की उम्र, और लास्ट जो है फोर्थ नंबर पे है कि 60 साल से लेकर आखिर उम्र तक। तो इस जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से में गिजा का बहुत अहम रोल है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें जिसको हम सिन्ने नमू कहते हैं, उम्र के इस हिस्से में गिजा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो बच्चा ग्रोइंग एज में है, एक तो उसको डाइट इस हिसाब से चाहिए कि जो उसकी डेली रूटीन है, जो उसकी बॉडी की एक्टिविटी है वो तो हो ही, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग हो। इस सिन्ने नमू के अंदर या इस पैदाइश से लेकर 25 साल तक की उम्र में गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी अगर पाई गई या गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर होगा।
1: यानी हर उम्र के लिए गिजा बहुत अहमियत रखता है। ये मेरा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सवाल होता आपसे, लेकिन खैर आपने बहुत अच्छे से इस बात को बता दिया, और आपने ये भी बताया कि हर उम्र को अलग-अलग तरीके से डिवाइड करने के साथ साथ में उसके बारे में उसकी गिजा की भी अहमियत अलग-अलग होती है। और यकीनन हुकूमत हमारी लगी हुई है कि हम हमारी आवाम को किस तरीके से सेहतमंद रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम चलते हैं उस जानिब जहाँ हमारे सामीन को बताइए कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन गिजा है, जो कहते हैं कि एक इंसान के पैदाइश से लेकर के आखिर तक में बहुत तरह की गिजा हमें मिलती है, लेकिन जब इंसान की नशोनुमा जब होती है, जिस वक्त वो जब पैदा होता है, तो एक पैदा हुए हुए किसी भी इंसान के लिए वो सबसे बेहतरीन गिजा कौन सी हो सकती है?
0: इस बेहतरीन गिजा की तरफ अगर हम जाएं, पैदा होने वाले बच्चे की अगर हम बात करें, तो उस बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन गिजा होगी वो माँ का दूध होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ का दूध तो सिर्फ बच्चे के लिए है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो माँ के दूध के साथ उसके लिए और भी गिजाओं की जरूरत पड़ती है। डेली डाइट की अगर हम बात करें तो हमारे डाइट के अंदर जो दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर कंपोनेंट गिजा का, और दूसरा होता है माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में के अंदर जो चीजें आती हैं वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और जो माइनर कंपोनेंट है उसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं। इनमें जो हमारे गिजा का जो मेजर कंपोनेंट है, ये ही मेजर कंपोनेंट क्या है, बॉडी के अंदर एनर्जी और ग्रोथ के जो प्रोसेस हैं वो मेजर कंपोनेंट करता है, जबकि जो माइनर कंपोनेंट है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन है, जो मुख्तलिफ अफाल है आजा के, उस मुख्तलिफ अफाल को प्रॉपर तरीके से अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है।
1: जिस्म के लिए अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसके साथ साथ में हमें मिनरल्स विटामिन्स इसकी भी सख्त जरूरत है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ताकि
0: बगैर
1: हमारी
0: उसके
1: बॉडी जो है वो, हमारा जो जिस्म है वो अच्छे से अपने नशोनुमा को कर सके। ये बहुत अहम है सामीन, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं उस सवाल की जानिब जहाँ आज के वक्त के जो वालदेन हैं वो बहुत परेशान है। जैसे आपने कहा कि माँ के दूध के बाद बच्चों को एक उम्र आती है जिसके बाद में उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें बाहर से भी कुछ खाने दिए जाएं, तभी तो फिर वो आगे बढ़ेगा और अच्छी उसकी नशोनुमा होगी। आज के वक्त में वालदेन बच्चों के ना खाने से ज़्यादा, ना बच्चों के फास्ट फूड के खाने से ज़्यादा परेशान है। कैसे वो अपने बच्चों को अच्छे खाने की तरफ उसको ले करके जाएं, और कैसे वो बच्चों को फास्ट फूड से थोड़ा दूर करें, क्योंकि फास्ट फूड पेट तो भर देता है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हमें चाहिए मिनरल्स, विटामिन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें फिर उनको कैसे

0: से मिलेंगी? फास्ट फूड में तो सारी चीजें नहीं होती हैं, थोड़ा हमारे सामने इनको बताइए इसके बारे
1: मैं
0: में।
1: समझता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो वालिदैन की है। इसके कई एक फैक्टर्स हैं, चूंकि आज के वक्त में जो वालिदैन हैं दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, टाइम की कमी होती है अपने इस टाइम को पूरा करने के लिए। जैसे अगर ऑफिस जाना है, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी स्कूल जाना है, जो कम टाइम है तो पेरेंट्स क्या करते कि उस कम टाइम में ऐसी गिजा बना के बच्चों के लिए देते जो जल्दी से तैयार हो जाए। जैसे नूडल्स है, मैगी है, पास्ता है, ये तमाम चीजें जो बनाए, ये सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है, ये पेरेंट्स की है कि वो बच्चे की सेहत को ना रखे, तरजीह किसको दे रहे हैं, टाइम को दे रहे हैं कि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन जब वही बच्चे को आदत पड़ जाती है वो चटपटा खाना खाने की, तो फिर वही वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी
0: मुश्किल,
1: बन
0: हाँ
1: जाती है।
0: बिल्कुल, उनकी मुश्किल
1: तो
0: बढ़ा देता है।
1: इसमें मेरा कहना यह है कि जो वालिदैन को इस बात का ख्याल रखा जाए कि जहां अपना थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम अगर आप ज्यादा दे दें तो उन बच्चों के लिए आप खाना भी अच्छा बना देंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उसके अंदर जो हम बच्चे को दे रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन है, फैट है, क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उतना है, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है।
0: अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँ कि ठीक है, माँ बाप दोनों जॉब पर हैं, दोनों काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने लिए भी तो लंच बनाते होंगे ना सुबह के वक्त में आखिर, और बच्चों के लिए फिर अलग से, तो क्यों ना उसी लंच में कुछ अलग वो कर दें और फिर अपने बच्चों को उसी में से कुछ दें जिससे कि उनको सेहत भी मिल सके। आखिर वो अपने लिए तो वो पास्ता नूडल्स नहीं लेके जाते होंगे, चपातियाँ बनती होंगी घरों में, सब्जी या जो भी चीज़ें बनती होंगी। तो ये बहुत अच्छी मतलब गुफ्तगू से ये बहुत बेहतरीन निकल करके आया कि हमें थोड़ा सा वक्त मैनेज करके अपने बच्चों को अच्छी सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए अच्छे लंच यानी कि उनके टिफिन का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमारे जिस्म में जा करके वो काम करता है।
1: ये जो गिजा, जिसको हम न्यूट्रिशन या फूड या हम गिजा कहते
0: या
1: हैं,
0: गजा जी,
1: ये गिजा जो है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। यानी जब कोई भी चीज जब हम अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो उसको हम फिर दांतों से क्रश करते हैं, उसके साथ जो माउथ का जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है, फिर वो गिजाई अज्जा हमारे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर जाता है। तो कुछ चेंजेस क्या हैं, स्टमक के अंदर होते हैं, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहां इंटेस्टाइन में फिर चेंजेस होते हैं। तो जो चीजें हमने खाई है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट का ही कोई मिश्रण, जैसे हमने चावल खाया, रोटी खाई, तो वो क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें, थोड़ा बहुत फैट भी है, थोड़ी बहुत प्रोटीन भी है, लेकिन मैक्सिमम उसमें मेजर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब तक अपने सिंपलेस्ट यूनिट में टूटेगा नहीं तब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये कंप्लीट इसके मेटाबोलिज्म के बाद ये एब्जॉर्ब होके जिस्म का हिस्सा बन जाए वो चीज गिजा कहलाता है। अगर इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो फिर वो गिजा के जुमरे में नहीं आएगी, वो चीज तो ऐसे ही एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जीआईटी से या हमारे इंटेस्टाइन से जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो गिजा का ये पहला वसूल है कि वो जिस्म के अंदर जाए और मेटाबॉलिज्म के बाद जिस्म का हिस्सा हो जाए, ऐसी चीज गिजा के जुमरे में आती है।
0: इसीलिए फास्ट फूड जो होता है वो हमारे जिस्म के साथ कहीं भी मैच नहीं कर पाता है, मतलब हमारी जो जिस्म है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और हम फास्ट फूड खा के बिल्कुल फास्ट फास्ट से और फैट फैट से हो जाते
1: नहीं,
0: हैं।
1: उसमें ये बात नहीं है, रियल में उसमें क्या है, जो फास्ट फूड है उस फास्ट फूड के अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम चीजें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
0: कार्बोहाइड्रेट्स जी,
1: लेकिन हमारे बॉडी के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, ये अलग बात है कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस एनर्जी का 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अगर मकदार बढ़ा दें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा,
0: कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो
1: कार्बोहाइड्रेट का
0: जाएगा
1: लेवल ज्यादा हो
0: जी।
1: जाएगा, तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कार्बोहाइड्रेट फिर फैट डिपॉजिट के अंदर तब्दील होता रहता है, तो आदमी क्या होता है कि ओबीज हो जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। और मोटापा क्या है, एक खुद बीमारी है, बल्कि बीमारी क्या, मैं तो कहूंगा मोटापा क्या है, एक सिंड्रोम है, यानी बीमारियों का मिश्रण है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, या इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाइपरटेंशन, ये तमाम बीमारियां, मोटापा जो है इन बीमारियों को दावत देता है।
0: ये कहा जाए कि मोटापा एक छोटा सा बीज है जो हमारे जिस्म अगर दाखिल हो गया तो उसके साथ पता नहीं कितनी सारी बीमारियों की शाखें निकल आती हैं। ये अगर
1: बिल्कुल
0: कहा जाए
1: बिल्कुल
0: तो ज्यादा ही सही है। लोग जो हैं जो वो समझना नहीं चाहते हैं कि मोटापा दरअसल बस थोड़ा सा तो बढ़ गया, ये सोच करके लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बॉडी के ऊपर। अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बॉडी फैलती है तो कहीं ना कहीं स्किन थोड़ा ग्लो करने लग जाता है और लोग समझते हैं कि हम तो स्मार्ट लग रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी जब फैली

0: तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई तो मोटापे में शामिल हो गए। तो सामीन, हमें इस बात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि अगर हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी कोई और बीमारी तो साथ में शामिल नहीं कर रही है, लेकर तो नहीं आ रही है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को और हमें ये बताइए, जिस्म है जो हमारा, जो हमारे जिस्म की सेहत ख़राब होती है, इसकी खास वजह क्या क्या होती है?
1: मैंने अभी सबसे शुरुआत में ही आपको असबाबे सित्ता जरूरिया का एक एग्जाम्पल दिया था। तो ये ऐसे फैक्टर हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहेगा इन फैक्टर से उसको दो चार होना पड़ेगा। जैसे पहला मैंने बताया हवा, अगर हवा अच्छी होगी सेहत होगी। हवा के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस आए, चाहे उसके कंपोजिशन में कोई हार्मफुल गैस उसके अंदर दाखिल हो जाए, कोई पॉल्यूटेंट उसके साथ शामिल हो जाए, जैसा कि अभी, चाहे कोई ऐसे इन्फेक्टियस सब्सटेंस जैसा कि अभी बहुत करंटली हमने देखा कोरोना
0: कोरोना
1: वायरस का, एक
0: जी
1: कि उसके जो ड्रॉपलेट थे उस एयर में थे और उस एयर को जितने लोग इनहेल करेंगे सब उससे इन्फेक्टेड होंगे। तो जहां पर ये हवा के, इसके बिना जिंदगी का तस्वीर ही मुमकिन नहीं है, तो ये इसका असर हमारे जिंदगी के ऊपर या हमारी सेहत के ऊपर डायरेक्ट है। इसी तरीके से जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस पानी में अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी के अंदर लगभग 40 लीटर्स वाटर होता है। और ये वाटर क्या है, जो हम पीने से या कुछ मेटाबॉलिज्म के नतीजे से बनता है, तो पानी के बिना भी हमारे जिंदगी का तस्वीर मुमकिन नहीं है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, तो अगर पानी कंटामिनेटेड है, पानी खराब है, उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी मिनरल्स की कमी है, तो जाहिर है कि जो कमियां उसके अंदर होंगी उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट दिखेगा। उसी तरीके से जो हमारी गिजा है, उस गिजा के अंदर जिस भी चीज की कमी होगी, आयरन की कमी है तो आयरन की कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर मुरतब होंगे, कैल्शियम की कमी है तो उसके असरात मुरतब होंगे, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन माल एनर्जी न्यूट्रिशन जो सभी लोग जानते हैं। तो जिस तरीके की चीजें हम इस्तेमाल करेंगे उसी तरीके की जो उसका इफेक्ट है डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आता है।
0: तो जब भी हम कुछ खाने की चीज़ें हों, या हम जिन जिसे कहते हैं दिखती तो नहीं है हवा, लेकिन हम सांस तो लेते हैं पानी से, जैसे आपने बताया, तो पानी से ही बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे इकोलाई, आजकल टाइफाइड बहुत चला हुआ है, बहुत वायरल हो जाता है, कुछ कुछ बीमारियां तो बिल्कुल कहते हैं वायरल हो गया। वायरल वो होने का मतलब ही है कि वो हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए अक्सर हमारे जिस्मों में पहुँचती है, और उसके बाद फिर हमारे जिस्म में बीमारी मुरतब होती है। इसके साथ ही साथ सामीन को बताइए कि हमारे जिस्म के लिए जिस तरह की ग़िज़ा आपने बताई कि बहुत ज़रूरी है, तो उन ग़िज़ाओं में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो सुबह नाश्ते के वक्त में वो लें, दोपहर के खाने के वक्त में लें, शाम में बहुत लोगों को कुछ हल्का फुल्का खाने की आदत होती है, तो वो उस वक्त ऐसी क्या अशिया लें जिससे उनके जिस्म को तवानाई मिले, सेहत मिले, और फिर रात में खाना कैसा होना चाहिए?
1: देखिए, डाइट के अंदर अगर सुबह के हम नाश्ते की बात करें, तो उम्र के लिहाज से मैंने कहा कि सबसे पहला फैक्टर होता है जब हम देखेंगे कि किसके लिए हम बना रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, या जो वर्किंग आवर्स है या जो लोग काम कर रहे हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क है वो सिडेंट्री है, मॉडरेट हैवी वर्क है। जैसे कोई किसी को फिजिकल वर्क ज्यादा है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहां फिजिकल वर्क ज्यादा है, तो हर एक के लिए गिजा का तयन जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन अगर गिजाओं की अगर हम बात करें, अगर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर उसको नाफिज कर ले, तो बहुत सारी बीमारियों से उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। उसमें सबसे बेहतरीन गिजाओं के अंदर अंडा, और बच्चा है, ग्रोइंग एज है, जवान है, तो वो यॉक के साथ ले सकता है। लेकिन अगर एल्डर एज है या ओल्ड एज है, तो विदाउट यॉक यानी सिर्फ उसकी जो अल्बुमिन है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह दूध का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से चने का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, सोयाबीन का इस्तेमाल, इन इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हम अपने नाश्ते के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह रात का जो खाना है, उस रात के खाने के अंदर भी मिक्स डाइट यानी उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तमाम चीजें उसके अंदर होना चाहिए। तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये तमाम चीजें हमारे डाइट के अंदर जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने ये बनाया है कि किसी, जैसे चावल के अंदर जो चीज नहीं है वो चीज दाल के अंदर है। तो आप दाल चावल दोनों चीज खाएंगे तो एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डाइट को मिक्स डाइट आप खाइए, एक ही चीज आप हमेशा नहीं खाइए कि उसके अंदर जो कमी हो तो उस कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर पड़े।
0: जो भी खाना हम खाएं, इसमें हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन, कि जिस खाने से हमारे जिस्म में तवानाई हासिल होगी, वही खाना दरअसल ग़िज़ा से भरपूर खाना कहलाता है, और वही खाना हमारे जिस्म को तवानाई भी देगा, और वही खाना फिर हमारे जिस्म के हर एक हिस्से की नशोनुमा करेगा, चाहे वो बढ़ते बच्चों के लिए हो, एज वाले लोग हों। जैसे कि कहते हैं कि अंडा, सही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों को अंडा नहीं खाते हैं, महक रहा है, जो भी तरह की चीज़ें होती हैं।

0: वो खाना चाहिए और वो इस तरीके से लें जिस एज में वो हैं, जिस उम्र के हैं, उस हिसाब से उनको लेना चाहिए। और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जिनका जितना वर्क है, जो जिस तरीके से काम करते हैं, अगर कहा जाए कि एक मजदूर है तो उसे तो ज़्यादा हर एक चीज़ लेने की
1: हाँ,
0: ज़रूरत है, उसे
1: उसको 100% उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
0: जैसे फील्ड वर्क होता है, जो लोग बाहर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, उनके लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ हमारे सामीन को ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म में कमी होती है, जैसे आजकल बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं और हर बार नई नई बीमारी आ जाती है हमारे सामने, तो क्या हम खाने से, अपनी उस ग़िज़ा से भरपूर जो हमारा जो खाना होता है, उससे हम बीमारी पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा कुछ कम कर सकते हैं?
1: थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी बीमारियों को हम 100% क्योर कर सकते हैं। ये यूनानी के अंदर तो इलाज बिल गिजा सदियों हजारों साल से है, मॉडर्न के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, बल्कि मॉडर्न के अंदर एक ब्रांच डाइटोथेरेपी की खुल गई कि वो लोग दवा के बजाय गिजा से इलाज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एब्जॉर्प्शन चीजों का, जैसे मान लीजिए कि आप एक आयरन की टेबलेट दे रहे हैं और एक ऐसी गिजा जिसमें आयरन मौजूद है, जिसको हम कहते हैं गुड़, जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, तो जितना बेहतरीन एब्जॉर्प्शन नेचुरल गिजा का होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन दवा से नहीं होता है। तो अगर इस तरह की डाइट को, जैसे कैल्शियम की कमी, आमतौर से आप देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। पहले से अगर अवेयर रहें तो बजाय उसको कैल्शियम की टेबलेट देने के, हम ऐसी गिजाओं का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम पाया जा रहा हो। इस तरह का पहले से अगर हमारे पास ये कंसेप्ट है, पहले से हमको अगर पता हो, तो बहुत सारी बीमारियों से हम खुद बच सकते हैं, बजाय इसके कि बीमार होने के बाद हम उसका इलाज करें।
0: ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस बात से तो बिल्कुल सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें अल्लाह पाक ने जो हमें जो नेमत दी है खाने की शक्ल में, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात निकल करके आई कि हम बाद में जा करके दवाइयों से अपनी बीमारी को ठीक करें, उससे बेहतर है कि हमारे पास जो खाना है उससे हम सेहतयाब रहें। ये भी हमें पता होना चाहिए सामीन हजरात कि किस खाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहते हैं और ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमारे सामीन को जाते जाते एक कोई ऐसी बात बता के जाइए जिससे कि

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर हमें बुलाया ताकि लोगों के अंदर इस बात की बेदारी पैदा हो सके और लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके अपनी सेहत को बरकरार रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सामईन, अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा। जिसका मौजू था जिस्मानी निज़ामे सेहत और ग़िज़ाइत, इस मौजू पर डॉक्टर जमाल अख्तर से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू हो रही थी। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। आइए अगली गज़ल भी सुनते हैं जगजीत सिंह की ही आवाज़ में।

ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, प्रेमी थे लोग तो शादी करना चाहते थे तो अपने माँ बाप के पास ले गया लड़का, लड़की को मिलवाया कि साहब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, इसकी जन्म पत्री मैच कर ले। वो बोले भाई ये शादी तो नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती? वो लड़की तुम्हारे से बड़ी है 2 साल, तो इसमें क्या है, 2 साल के बाद शादी करेंगे। एक भाई साहब ने एड निकाला पेपर में, अच्छे थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, कि आई वांट टू गेट मैरिड और एक ही शर्त है कि डाउरी में आई वांट ए ट्रैक्टर और नीचे जो है अंडरलाइन किया हुआ था प्लीज सेंड अ फोटोग्राफ ऑफ द ट्रैक्टर इमीडिएटली।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम रसमंजरी में सबसे पहले सुनिए धुरंधर द रिवेंज फिल्म में जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सरताज की आवाज़, शाश्वत सचदेव का संगीत और सतिंदर सरताज के गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या

0: पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम में अगला गाना सुनिए अभिजीत अनुमलिक और अनामिका की आवाज में। फिल्म है औजार, गीत और संगीत अनुमलिक के हैं।
6: We are about to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, defunk, defunk.

कार्यक्रम रसमंजरी की अगली पेशकश आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, फिल्म है प्रिंस, संगीत सचिन गुप्ता का है और गीतकार हैं समीर।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: तो दोस्तों, आपने सुनना शुरू कर दिया है बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम। बाल किलकारी के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का खूब स्वागत है।
1: हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उस सितारे की जिन्होंने अपनी लेखनी से युगों को रोशन किया है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की,
0: यानी वही महाशय जिन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसा चमकाया कि पूरा युग ही उनके नाम पर हो गया। लेकिन सच कहूँ आकृति, जब मैंने पहली बार सरस्वती का नाम सुना था तो मुझे लगा कोई संस्कारी सी नायिका होगी। बाद में पता चला कि वो तो हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर पत्रिका निकली।
1: हाँ अनुराग, सरस्वती कोई लड़की नहीं थी बल्कि हिंदी साहित्य की सबसे मशहूर पत्रिका थी, और इसकी कमान संभालने वाले थे कोई और नहीं, स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
0: 17 साल तक, यानी उनका ये पत्रिका से रिश्ता किसी बॉलीवुड फिल्म के रोमांस से कम नहीं था।
1: बिल्कुल, और इसी सरस्वती के माध्यम से उन्होंने न सिर्फ पत्रकारिता का नया रूप दिखाया बल्कि हिंदी साहित्य में नव जागरण की हवा भी बहाई।
0: लेकिन ये महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब थे कौन, बस एक संपादक या लेखक?
1: अरे अनुराग, उन्होंने तो केवल लेखक या संपादक का टैग नहीं पाया था, वे थे संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, समाजशास्त्री, समालोचक, अर्थशास्त्री और अनुवादक।
0: बाप रे, मतलब एक इंसान और इतने सारे हुनर। आजकल तो लोग दो लाइन का

0: वायु लिखते लिखते थक जाते हैं और द्विवेदी जी तो चलते फिरते पूरा ज्ञान कोष थे।
1: सही कहा, उनका जन्म हुआ था 15 मई 1964 में। उस समय भारत में भाषा और साहित्य का बहुत बड़ा संकट था। हिंदी को साहित्यिक स्तर पर नया मुकाम देना कोई आसान काम नहीं था, पर महावीर प्रसाद जी ने इसे सहजता और मेहनत से किया।
0: तो ये द्विवेदी युग क्या है? मैंने सुना था हिंदी साहित्य में ऐसा भी कुछ है।
1: सही पकड़ा, हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक का माना जाता है। इस समय हिंदी साहित्य में नए विचार, नई चेतना और सामाजिक जागरूकता का प्रवाह था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी द्विवेदी जी की लेखनी और संपादन कला।
0: उन्होंने सिर्फ साहित्य ही पढ़ाया है, देश को भी जागरूक किया।
1: दोस्तों, महावीर प्रसाद जी ने केवल साहित्य नहीं लिखा, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रेरणा दी। उनके विचार और लेख सीधे लोगों के दिलों तक छूते थे।
0: मतलब वो सिर्फ कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक और राष्ट्र प्रेमी भी थे।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि उनकी रचनाएं आज भी BA और MA के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। UGC, NET परीक्षा में भी उनका जीवन और कृतियां अनिवार्य है।
0: वाह, यानी अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मैं भी उनका एक हिस्सा बन जाऊंगा।
1: हाँ, उनके विचार आज भी हमें साहित्यिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि देते हैं।
0: लेकिन आकृति, तुम्हें इतना कुछ पता है तो द्विवेदी जी के बारे में कोई दिलचस्प किस्सा सुनाओ।
1: अरे हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब को लोग बहुत सख्त और गंभीर लेखक समझते थे, लेकिन असल में उन्हें हास्य और व्यंग भी बहुत पसंद था। उनके लेखों में समाज की कटु सच्चाई को मजेदार और सरल तरीके से पेश करने की अद्भुत हुनर थी।
0: तो मतलब उनके लेख पढ़ो और हंसते हंसते सोचो, ये आदमी कितना बड़ा युग प्रवर्तक था।
1: सही कहा, यही वजह है कि उनके योगदान को याद करते हुए आज भी हम सब कह सकते हैं, द्विवेदी जी का साहित्य हमारी सांस्कृतिक चेतना का दीपक है।
0: तो दोस्तों, आज हमने जाना कैसे एक आदमी की लेखनी, संपादन कला और समाज सेवा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और कैसे उनका योगदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा है।
1: याद रखिए, साहित्य केवल शब्द नहीं विचारों की शक्ति है और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे सबसे बेहतरीन तरीके से हमें दिखाया है।
0: लेकिन आकृति, इतने महान साहित्यकार का जीवन आखिर कब तक हमारे बीच रहा?
1: आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 21 दिसंबर 1938 को हुआ, लेकिन उनकी लेखनी, उनके विचार और हिंदी साहित्य को दिया गया योगदान आज भी अमर है।
0: यानी व्यक्ति भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं।
1: बिल्कुल, द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को नई दिशा दी, साहित्य को नई चेतना दी और समाज को नई जागरूकता दी, इसलिए उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव सम्मान के साथ लिया जाएगा।
0: महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक बहुत अच्छी और लंबी कविता है, प्यारा वतन, वो मुझे पूरी याद है।
1: अरे वाह, ये कविता तो मुझे भी याद है।
0: तो चलो एक काम करते हैं, पहले 4 पंक्तियाँ मैं सुनाऊंगा, फिर अगली 4 पंक्तियाँ तुम। यूं ही शब्दों का कारवा बढ़ता जाएगा और अपनी कविता मंजिल तक पहुँच जाएगी।
1: यह अच्छा विचार है। कविता का शीर्षक है प्यारा वतन और इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्यारे वतन हमारे प्यारे, आजा आजा पास हमारे, या तू अपने पास बुलाकर, रख छाती से हमें लगाकर।
0: जब तू मुझे याद आता है तब दिल मेरा घबराता है, आंख आंसू बरसाती है, रोते रोते थक जाती है।
1: तुझसे जो आराम मिला है दिल पर उसका नक्श हुआ है, उसे याद कर मैं रोता हूँ, रो रो कर आंखें धोता हूँ।
0: कच्चा घर जो छोटा सा था पक्के महलों से अच्छा था, पेड़ नीम का दरवाजे पर सायबान से था वह बेहतर।
1: सब्ज खेत जो लहराते थे दिल को वे कैसे भाते थे, फर्श मखमली जो बिछते हैं नहीं मुझे अच्छे लगते हैं।
0: वह जंगल की हवा कहाँ है, वह इस दिल की दवा कहाँ है, कहाँ ठहलने का रमना है, लहरा रही कहाँ जमना है।
1: वह मोरों का शोर कहाँ है, श्याम घटा घंघोर कहाँ है, कोयल की मीठी तानों को सुन सुख देते थे कानों को।
0: जो ही आम पेड़ से टपका मैं फौरन लेने को लपका, चढ़ा उचक कर डाली डाली खाई जामन काली काली।
1: जब यह मुझे याद आता है नहीं मुझे तब कुछ भाता है, वे दिन क्या फिर कभी मिलेंगे, क्या फिर अपने दिन पलटेंगे।
0: वे लंगोटिये यार कहाँ हैं, वे

0: बच्चे गम ख्वार कहाँ हैं, वह घर वह बैठक मन भाई, क्या फिर कभी मिलेगी भाई।
1: आँख मिचौनी की वे घाते, खेल कूद के दिन और राते, हाय कहाँ है हाय कहाँ है, कहाँ मिले जो ढूंढा चाहे।
0: बिछड़ा वतन हुआ यह बेजा, फटता है सुब किए कलेजा, ठाट अमीरी के सब तुझ पर, मिले अगर तू करे निछावर। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिनकी कविताओं में पहाड़ों की ठंडी हवा, फूलों की खुशबू और प्रकृति का मधुर संगीत बसता है।
1: जी हाँ, हिंदी साहित्य के प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत।
0: नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कविता खुद चलकर सामने आ गई हो, लेकिन आकृति, ये सुकुमार कवि का मतलब क्या होता है?
1: इसका अर्थ है कोमल भावनाओं और प्रकृति की सुंदरता को बेहद मधुर और संवेदनशील तरीके से व्यक्त करने वाला कवि। और पंत जी की कविताएं पढ़ते ही लगता है जैसे हिमालय, बादल, फूल और झरने शब्द बनकर गाने लगे हैं।
0: मतलब अगर प्रकृति कभी कवि बनती तो शायद उनका नाम सुमित्रा नंदन पंत ही होता।
1: बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के खूबसूरत गांव कौसानी में हुआ था। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए आज भी प्रसिद्ध है।
0: तभी उनकी कविताओं में इतनी हरियाली, बादल और पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन उनका बचपन कैसा था?
1: उनका बचपन आसान नहीं था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। बचपन में उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था।
0: यानी जीवन की शुरुआत में ही दुख मिला, लेकिन उन्होंने उसी संवेदना को अपनी कविताओं की ताकत बना लिया।
1: सही कहा। आगे चलकर प्रयाग में पढ़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। 1931 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया।
0: यानी पढ़ाई छोड़ दी लेकिन सीखना नहीं छोड़ा।
1: बिल्कुल, इसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी साहित्य का स्वाध्याय शुरू किया और यही अध्ययन आगे चल के उनकी कविताओं की गहराई बना।
0: मैंने सुना है उनकी काव्य यात्रा कई चरणों में बटी हुई थी।
1: हाँ अनुराग, उनकी साहित्यिक यात्रा लगभग 60 वर्षों तक चली और इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा गया था।
0: अरे वाह, यानी पंत जी की कविता भी किसी वेब सीरीज की तरह अलग अलग सीजन में आगे बढ़ती रही।
1: कुछ ऐसा ही समझ लो। पहला चरण था छायावाद का। इस दौरान में उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ वीणा, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना प्रकाशित हुई।
0: और पल्लव को तो उनकी सबसे श्रेष्ठ कृति माना जाता है ना?
1: बिल्कुल, पल्लव में प्रकृति और सौंदर्य का अद्भुत चित्रण है। ऐसा लगता है जैसे कविता नहीं कोई चित्रकार रंगों से प्रकृति बना रहा हो।
0: फिर दूसरा चरण आया होगा।
1: हाँ, दूसरे चरण में वे प्रगतिवादी विचारों की ओर बढ़े। अब उनकी कविताओं में सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि आम आदमी का संघर्ष और समाज की सच्चाइयाँ भी दिखाई देने लगी।
0: यानी फूलों और चांदनी से निकलकर कवि सीधे गांव और मजदूरों तक पहुँच गया।
1: बिल्कुल सही। इस दौर में युगांत, युगवाणी और ग्राम्या जैसी रचनाएं सामने आई।
0: और तीसरा चरण?
1: तीसरे चरण में वे अध्यात्म की ओर मुड़े। श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने स्वर्ण धूली, रजत शिखर, लोकायतन जैसी रचनाएं लिखी।
0: यानी उनकी कविता ने प्रकृति से समाज और फिर अध्यात्म तक का पूरा सफर तय किया।
1: यही तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उनकी कविता समय के साथ बदलती रही लेकिन संवेदनशीलता हमेशा बनी रही।
0: इतने बड़े कवि को पुरस्कार भी खूब मिले होंगे।
1: हाँ, उन्हें कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: मतलब हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान भी उनके नाम रहा।
1: हाँ, और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया।
0: सचमुच उनका जीवन साहित्य की एक प्रेरणादायक यात्रा है।
1: दोस्तों, आज भी उत्तराखंड के कौसानी में उनका घर सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक विथिका नामक संग्रहालय के रूप में सुरक्षित है।
0: यानी जहाँ कभी कवि ने प्रकृति को महसूस किया था, आज वहाँ लोग उनकी यादों को महसूस करने जाते हैं।
1: बिल्कुल, वहाँ उनकी पांडुलिपियाँ, पुरस्कार और निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं।
0: इतनी सुंदर बातें सुनने के बाद मन कर रहा है कि कोई कविता सुन ले।
1: क्यों नहीं, हमारे बीच स्टूडियो में इब्तिशामा और नैन्सी झा मौजूद है जो आकर यहाँ हमें कविताएं

0: सुनाएंगी।
1: तो सुनते हैं उनकी आवाज में एक कविता।
2: मेरा नाम नैंसी जाय और आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। उस कविता के शीर्षक का नाम है गर्मी, जो सौरभ शाश्वत ने लिखा है। गर्मी आती है हर साल, कर देती है बुरा हाल। गर्मी में आते फल सारे, देखने में लगते बहुत प्यारे। गर्मी तो है बहुत प्रचंड, आम व तरबूज मुझे पसंद। पीना चाहिए खूब पानी, वरना याद आती नानी। मुझे गर्मी अच्छी लगती, क्योंकि मिलती लंबी छुट्टी। जाता मैं मजे में गांव, सुकून देती वहां की छाव। गर्मी आती है हर साल, कर देती है बुरा हाल। धन्यवाद।
3: मेरा नाम इब्तिशामा है। कविता मैं आपको प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उस कविता का नाम है मेरी माँ और उसको अनन्या ने लिखा है। माँ मेरी सबसे प्यारी, सारे जग में न्यारी। माँ ने मुझको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। हर बुराई से बचाती, जाने क्या क्या सही सह जाती। माँ गोद में उठाती, प्यार से मुझको सुलाती। कभी रूठ जाता तो माँ मुझको मनाती। माँ मेरी है झांसी की रानी, मेरे लिए सबसे न्यारी। माँ मेरी प्यारी, मेरे लिए सबसे न्यारी। थैंक यू।
1: हमारे बीच अपेक्स है जो बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं, तो आइए गाने की धुन पे हम बांसुरी सुनते हैं।

0: कितना अच्छा बजाते हैं ये तो आपको सुनकर पता चल ही गया होगा।
1: पर अब समय सीमा को देखते हुए हमारे श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
0: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658। बाल खेलकारी होगा और मजेदार।
1: मिलते हैं अगले रविवार,
0: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार, इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बाल कार्यक्रम बाल मंडली।

जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हम तो आपसे मिलने हर रविवार को आते हैं। रंजना दीदी आज भी आ गई हैं बाल मंडली कार्यक्रम में और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। और बच्चों, आप प्रतिदिन घर से बाहर तो जरूर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए या फिर जब छुट्टी होती है तो कहीं घूमने के लिए, और हर कोई घर से जब निकलता है तो रास्ते पर सड़क पर चलता है। रास्ते में चलने समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि ये हर जगह स्लोगन लिखा भी होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसी सावधानी रखनी चाहिए घर के अंदर भी, और घर से निकले तो खासकर ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि हम बिल्कुल अच्छे से चलें, बाईं तरफ ही चलें। यदि आपको रास्ता पार करना है तो दाएं बाएं अच्छी तरह देखकर रुककर, और जब भी रोड पार करना हो जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। यदि लाल बत्ती हो तो आप देखकर पार करें किस तरह

तरफ से गाड़ी रुकी हुई है उस तरफ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि हम जो रास्ते में चलते हैं तो आगे पीछे बहुत से लोग होते हैं, कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, कुछ लोग गाड़ी से, कुछ लोग बहुत तेज रफ्तार में चलते हैं, तो अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए और यातायात नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। रास्ते में हमारी मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस भी होते हैं जो कि ट्रैफिक को संभालते हैं, और यदि हमको कोई ज़रूरत होती है ऐसी तो हमको मदद भी करते हैं। और बच्चों, आप रास्ते में चलते समय कई बार देखते होंगे कुछ बुजुर्ग होते हैं या कुछ ऐसे लोग लाचार होते हैं जो स्वयं रोड क्रॉस नहीं कर पा सकते हैं, तो उनको हमको जरूर मदद करनी चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी नज़र ऐसे किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो आपके आसपास और लोग भी होते हैं, उनको जरूर कहें आप प्लीज उनकी मदद करिए। इस तरह हम छोटे छोटे अच्छे काम कर सकते हैं, इससे हमको भी अच्छा लगेगा और जिनके लिए हम ऐसी मदद करेंगे, जिनके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वो तो हमेशा ही हमको याद रखेंगे।

बच्चों, क्या आपके मन में आता है कि हमारी धरती कितनी सुंदर है? कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पेड़ हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल हैं, तो कहीं चहचहाते पक्षी हैं, तो कहीं जंगल में रहने वाले और एक दूसरे से डरने वाले भी और डराने वाले भी जानवर होते हैं। इन सब का तालमेल धरती पर मौजूद जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे और सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, यही विभिन्नता जो होती है उसको जैव विविधता कहते हैं। और यही जैव विविधता हमारे जीवन का आधार भी है बच्चों। जैसे पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियां पानी देती है, पशु पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। और बच्चों जरा सोचिए, यदि धरती से पेड़ पौधे जीव जंतु समाप्त हो जाएं, तो मानव तो भयंकर संकट में आ जाएगा। सबके मेल मिलाप तालमेल से ही हमारी पृथ्वी संतुलित है और हम भी यहाँ खुश हैं और हमारा जीवन भी अच्छे से बीत रहा है, यानी कि हमको ऑक्सीजन भी, पानी भी, भोजन भी, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन बच्चों अभी हमें सचेत और जागरूक भी रहना होगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। जंगल काटकर पेड़ पौधे को तो हटाया जा रहा है, और जब जंगल नहीं रहेगा तो उसमें रहने वाले जानवर भी, पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे में बहुत बार सुनने में आता है कि हमारे जिधर हम लोग की कॉलोनी है या जिधर लोग रहते हैं, उधर जंगली जानवर आ जाते हैं। वो भी अपने बचाव में ही आक्रमण करते हैं। उनको जंगल में रहने की आदत होती है, जंगल नहीं है तो भटकते हुए वो आ जाते हैं शहर की तरफ या जहाँ लोग रहते हैं वहाँ। तो इसीलिए यदि हम अपनी तरफ से प्रयास करें तो इस संतुलन को बनाने में हमारा सहयोग भी होगा। और बहुत बार बच्चों सुनने में आता है जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल जलकर खाक हो जाता है। एक तो मिट्टी भी ऊसर हो जाती है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो वहाँ कोई भी फसल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे हैं, हम जो बड़े हैं, उन सबको ही जागरूक होकर मदद करना होगा। और बच्चों आपकी गर्मी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में एक मजेदार काम आप कर सकते हैं कि छोटी छोटी कविताएं लिखिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कविताएं लिखिए, अपनी कॉलोनी से ही शुरुआत करिए। ये अपने चार घर की जो कॉलोनी है, आसपास के जो बच्चे, उनके साथ मिलकर इस तरह पर्यावरण पर और अच्छी अच्छी कविताएं लिखिए, एक दूसरे को सुनाइए, छोटे से नुक्कड़ नाटक का मंचन करिए, अच्छा भी लगेगा और एक दूसरे से सीखिए। और यदि आप ऐसा करते हैं और उसमें सबको इनवाइट कीजिए, अपने आसपास के जो अंकल आंटी दीदी भैया सब हैं, कोई छुट्टी के दिन ऐसा समय निकालिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी इससे सबके बीच जाएगा। और जब बच्चे इतना पहल करेंगे तो बड़े तो साथ देंगे ही, वो जहां तक कर सकते हैं वहां तक आपकी मदद भी करेंगे। तो इस तरह का एक अच्छा काम भी करिए और हमारे पर्यावरण का या जो भी अच्छे थीम होते हैं उस पर इस तरह के नाटक, कविता, इस तरह के काम करते हैं तो अच्छा लगेगा। और बच्चों पेड़ पौधे जो होते हैं ना, उनमें भी जान होती है, उनको भी लगता है हमारी देखभाल हो। और वो तो तुरंत पता चलता है यदि आपने छोटा सा पौधा लगाया है और उसमें पानी नहीं डाले, पानी की छोटी सी भी मात्रा अगर मिट्टी में होती है तो पौधे नहीं सूखते हैं। और जैसे पानी की मात्रा कम होने लगती, पानी नहीं रहता है मिट्टी में, तो पौधे सूखने लगते हैं। इससे पता चलता है उनको भी देखभाल की और उनको भी जल की जरूरत है। तो इन सब का ख्याल रखिए और अपनी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाए रखिए, जिससे हम

0: अच्छी हवा में सांस ले सके, अच्छे जगह में जाएं, घूम सके, पेड़ की छांव में बैठ सके, इन सब का ध्यान हम सबको जरूर रखना चाहिए। बच्चों, प्रकृति है जीवन का आधार, इसकी रक्षा है हम सब का कर्तव्य और अधिकार। इस बात को हमेशा ही याद रखिए। हमारा देश भी विभिन्नताओं में एकता का देश है और शांभवी भी अपने देश पर कविता सुना रही हैं।
1: वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं वह मस्त झाड़ियों में, अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मे जहाँ ती सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका श्रेष्ठ पकाया, जग को दिया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह पूर्ण भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृ भूमि मेरी।
0: वाह, बहुत अच्छी कविता थी। बच्चों, रंजना दीदी आपसे एक पहेली बुझाएंगी, देखते हैं आप कितना ध्यान दे पाते हैं इस पहेली पर, बूझ पाते हैं कि नहीं, नहीं तो हम ही बता देंगे। वह क्या है जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं है। सोचिए सोचिए, सोच पा रहे हैं? चलिए हम बता ही देते हैं। सीढ़ी, सीढ़ी तो अपनी जगह स्थिर होती है, उससे हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। बच्चों, आज हम एक महान कवि और देशभक्त के बारे में भी जानेंगे, काजी नजरुल इस्लाम। इनका जन्म 24 मई 1899 को हुआ था और आज उनका जन्मदिन है। वे बंगाल के प्रसिद्ध कवि, लेखक, संगीतकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति, साहस और मानवता का संदेश मिलता है। उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था, क्योंकि वे अन्याय और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते थे। और जानते हैं बच्चों, उन्होंने लोगों को एकता, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया और उनकी कविताओं से बच्चों को भी सीख मिलती है। हमेशा सच बोलना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, मेहनत ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। हिम्मत जिसकी पहचान बने, सच्चाई जिसकी शान बने, ऐसे महान कवि थे वो, सबके दिल की जान बने। बच्चों, हमें भी काजी नजरुल इस्लाम जी की तरह साहसी, मेहनती और दयालु बनना ही चाहिए। तो गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, आपको कहीं ना कहीं घूमने जाने का मौका मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत दूर जाएं, कई दिनों का सफर करें, कई दिनों के बाद हम घूम कर आए। यदि हम अपने घर से निकल लेते हैं तो बस वो एक आनंद भरा माहौल ही होता है। इस माहौल का आनंद उठाएं। और यदि आप कहीं दूर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए अपने घर में जो मम्मी पापा तैयारी करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसमें अपना सामान, अपने कपड़े, जहां आप जा रहे हैं उस जगह के अनुकूल कपड़े, इन सबको आप खुद ही पैक करिए, एक जगह इकट्ठा करिए, लिस्ट बनाइए। सबसे पहले तो लिस्ट बनाना बहुत अच्छा होता है, कोई भी जरूरत की चीज हमसे छूटती नहीं है। तो इस तरह आप मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो उनको सहयोग भी कीजिए, क्योंकि आनंद तो आप भी लेंगे तो तैयारी में भी सहयोग आपको भी करना चाहिए।

0: और अभी गर्मी का मौसम है, तो ऐसे में जब हम घर में रहें, हमको गर्मी तो बर्दाश्त होती नहीं, इसके लिए हम घर में होते हैं तो कूलर पंखा एसी चलाए रखते हैं, जो कि सही नहीं है। पूरे समय हम इनके संपर्क में रहते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं होता है। हमको प्रकृति के साथ भी होना चाहिए, जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे ना, जैव विविधता, उसी के अनुकूल हम प्रकृति के साथ रहें, तो इसके लिए हमको बाग बगीचे में जाना चाहिए। और बच्चों, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, तो आरुष आप क्या सुनाएंगे अपने साथियों को?
1: कविता। हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम के गान, हमें तिरंगे पर अभिमान, गाए देश प्रेम के गान, अमर जवान इस पर तन मन धन कुर्बान।
0: वाह, बहुत अच्छी कविता थी। मटके का पानी और फ्रिज का पानी, आजकल तो बच्चे खेल कर आते हैं, कहीं से घूम के आए, फट फ्रिज खोला और बॉटल निकाले और ठंडा पानी पी लिए, और इसका इतना प्रभाव हमारे गले पर पड़ता है बच्चों, वो तुरंत तो अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपकी परेशानी शुरू हो जाती है, फिर या तो आपका स्कूल छूटता है या छुट्टी है तो बस आप बीमार पड़ेंगे और आपका घूमना मस्ती करना सब कुछ रुक जाएगा। इसीलिए फ्रिज का पानी हानिकारक होता है, उसको नहीं पिए, अगर जरूरत भी है तो बहुत थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाएं, और उससे अच्छा है फ्रिज का पानी ना ही पिए। मटके का पानी इतना स्वादिष्ट लगता है, पानी में स्वाद क्या होगा, आपको लग रहा होगा रंजना दीदी ये क्या बोल रही है, पानी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आप देखिएगा, अपनी मम्मी से कहिए इस बार गर्मी में मटका लाएं और मटके का पानी पीकर देखिए कितना शीतल, कितना अच्छा लगेगा आपको, फिर आपको लगेगा अरे हमने पहले से क्यों नहीं पीना शुरू किया, और फिर आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो इस तरह से जो मटके बनाते हैं वो तो बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, उनकी मेहनत काफी लगती है, कई दिनों में एक एक सामान तैयार करते हैं, तो उसका खरीदार भी तो मिलना चाहिए ना, तो गर्मी में उनके बनाए मटकों को हम खरीदें, पानी का प्रयोग करें और उनको भी इससे पैसे मिलेंगे जिससे उनका घर चलेगा, उनका काम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का सहयोग तो हमको करना ही चाहिए। और बच्चों, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, हर मौसम में स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। तो स्वच्छता का मतलब आपको पता है, एक तो स्वयं की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, इसमें सहयोग करें, साफ ही कपड़े पहने और घर के बाहर, ये नहीं कि घर से कचरा निकाला और फेंक दिया। कई बार देखते हैं हम बच्चों को अपनी बालकनी से पेपर फाड़कर या जो भी कुछ होता है उसको सीधे रास्ते में डाल देते हैं, तो ऐसी आदतों से बचें, इस तरह की आदतें अच्छी नहीं होती है। यदि साफ सुथरा पेपर है तो उसको अलग रखें, उसको अलग तरह से सूखे कचरे में निस्तारण के लिए रखें, और गीला कचरा जो होता है उसके लिए अलग डस्टबिन रहे, उसमें रखें जिससे उसको अलग डाला जा सके। इस तरह यदि बच्चे मदद करेंगे तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा और पूरा पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा। बच्चों, चलते चलते हम आपको एक चुटकुला सुना दे मजेदार सा। टीचर बोलती है, अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हो और 5 मैं ले लूं तो क्या बचेगा? बच्चा थोड़ा उदास और थोड़ा सर खुजाता हुआ बोला, सर झगड़ा। तो अच्छी लगी होगी।

हमारी पहेली जो रंजना दीदी सुनाई और ये चुटकुला भी और कविताएं सुनी, ये भी आपको अच्छा लगता होगा। अपने समय का ध्यान रखना भी अच्छी बात है। तो हमारे बाल मंडली कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। रंजना दीदी लेती है अपने नन्हे साथियों से विदा। जय हिंद बच्चों।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश।
4: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। मैं आपका रेडियो दोस्त आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूं। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेकिन एक बात, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ख्याल रखें। कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: मैं ब्लाइंड स्कूल से कॉल की थी, तो आज मैं अपने बच्चे लोग के फरमाइश से आज कॉल की हूँ।
4: जी
5: हाँ, तो हमारे आज बच्चे लोग का फरमाइश है गाना सुनने के लिए।
4: अच्छा अच्छा,
5: देशभक्ति गाना सुनने के लिए बच्चे लोग का फरमाइश है।
4: बच्चों से बात हो सकती है क्या? हेलो नमस्कार।
6: जी सर, मैं सिकंदर कुमार, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ सर।
4: जी जी सिकंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा और ऊंचा बोलिए, आवाज थोड़ी धीमी है आपकी।
6: आज 9वीं क्लास में पढ़ते हैं सर।
4: अच्छा, तो पढ़ाई में मन लगता है?
6: हाँ जी सर।
4: क्या ठीक लगता है, कौन सा विषय आप बढ़िया पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है?
6: राजनीतिक शास्त्र।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप अपनी रुचि बनाए रखिए और दूसरे विषय पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए, ताकि परीक्षा में तो सभी लिखना होगा ना।
6: जी सर।
4: जी, आप इस कार्यक्रम के बारे में पहले से जानते हैं कि आपने, मैम ने बताया अभी?

0: नहीं, पहले से भी जानते हैं, मैम ने बताए हैं।
1: बहुत अच्छा। तो कभी सुना है पहले इस कार्यक्रम को? कैसा
0: हाँ जी सर,
1: लग रहा है, इसके बारे में कुछ बोलिए।
0: बहुत अच्छा लगता है सर, गुंजे बिहार लोकगीत।
1: अच्छा, वो सब कार्यक्रम भी सुनते हैं।
0: जी सर,
1: बहुत अच्छा। आज इस कार्यक्रम में कैसे मन बनाया, क्या लगा कि फोन करना चाहिए, क्या सोच रहे थे आप लोग?
0: जी सर, हम लोग की सोच थी कि सर आज हम सर से गाना सुनना चाहते हैं फोन कर।
1: अच्छा, तो आपने फोन किया
0: ऑन
1: आपकी।
0: एयर फरमाइश भी दे रहा था सर, आप भी थे ऑन एयर फरमाइश में,
1: हाँ
0: आप थे ना सर?
1: जी, अभी 11 बजे से 12 बजे तक हुआ।
0: हाँ, 11 बजे से वो भी सुन रहे थे सर।
1: बढ़िया, तो अच्छा लगा वो कार्यक्रम।
0: हाँ जी सर, वो भी अच्छा लगा।
1: चलिए, इस कार्यक्रम में आपने आपकी मैम के सहयोग से फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कार्यक्रम सुनते रहें। इस कार्यक्रम में कौन सा देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: अरिजीत सिंह का सुना दे सर, तेरी माटी में मिल जावा, गुड़ बन के मैं खिल जावा।

0: हेलो फरमाइश
1: हाँ हेलो सर, ये पटना से बोल रहे हैं ना।
0: जी, मैं पटना से बोल रहे हूँ।
1: हाँ नमस्कार साहब।
0: नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन हैं?
1: मैं बलिया यूपी से बोल रहा हूँ साहब, सीपी सिंह।
0: सिंह
1: बहुत
0: जी, बहुत
1: प्रयास
0: बहुत
1: के बाद
0: स्वागत है,
1: आज
0: पहली बार कॉल किया आपने।
1: जी, बहुत 1-1.5 साल पहले एक बार आप लोगों से बात हुई थी। अब आपसे की कौन से याद नहीं है।
0: अच्छा,
1: मैं आप लोगों का बहुत रेगुलर मतलब रेडियो सुन रहा, सुबह 6 बजे से वो भज

0: हम जमुई जिला इनपे गांव से बोल रहे हैं, अजीत कुमार सिन्हा।
1: अजीत कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या करते हैं अजीत जी?
0: रिटायर कर गए हैं।
1: कहाँ सेवा में थे?
0: थाना में थे।
1: थाना में? अच्छा, पुलिस विभाग जी। तो कुछ बताइए, रेडियो का अनुभव आपको है, पहले सुनते रहे हैं क्या?
0: अनुभव है, ये सब थोड़ा सा सुनते हैं, बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं।
1: तो बहुत दिन से कौन कौन सा कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
0: देखिए, सुबह में देता है रामचरित मानस, उसके पहले देता है वंदना कीर्तन देता है वो सुनते हैं, या दोपहर में लोकगीत सुनते हैं, और आपका जो प्रोग्राम है ये हेलो फरमाइश भी सुनते हैं, वो रात में देता है मंगल को
1: गूंजे बिहार।
0: गूंजे बिहार, ये सब भी सुनते हैं
1: जी, तो कार्यक्रम सब बढ़िया लगता है आपको? ठीक।
0: हम बहुत दिन से सुन रहे हैं सब
1: जी, कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में तो बताएं, कुछ अनुभव रहा होगा आपका पुराना।
0: और पहले भी हमारा अंदाज लगता है कि करीब करीब 74-75 से हम सुन रहे हैं।
1: अच्छा जी, 50 साल लगभग ज्यादा हो गए।
0: पहले हमारे पास तो भाई ज्यादा पकड़ता है यही पटने पकड़वे करता है बढ़िया।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसका आवाज भी साफ निकलता है
1: जी,
0: बढ़िया पकड़ता भी बढ़िया, मतलब अधिकतर हम पटने से सुनवे करते हैं।
1: ठीक है, आगे भी सुनते रहिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और गाना बताइए, क्या मन बनाया आपने, क्या सुनेंगे?
0: ये गाना जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सर जी नमस्कार, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
0: विदिशा एमपी मध्य प्रदेश।
1: जी सर
0: जी बहुत बहुत
1: जी
0: स्वागत।
1: सर।
0: अपना नाम बताएं।
1: शिवा सर।
0: शिवा।
1: जी
0: बहुत
1: सर।
0: बढ़िया। कैसे हैं शिवा जी? आपने तो पहली बार कॉल किया लगता है।
1: जी सर पहली बार कॉल
0: तो
1: किया।
0: बताइए कैसे मन बनाया, कहाँ मिला आपको नंबर, या फिर आपने इस कार्यक्रम को कैसे सुना?
1: जी सर हमारे मित्र हैं पूरन जी जो कि राजस्थान जयपुर से हैं, उनके माध्यम से आपका कार्यक्रम का पता पड़ा था, सुन रहे थे और कॉल भी मिला रहे थे, कॉल मिल गया सर, बेहद खुशी हो रही है।
0: जी हमें भी खुशी हो रही है, हमारे कार्यक्रम में नए श्रोता जुड़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है आपसे भी बात करके। तो इस कार्यक्रम को सुना पहले आपने?
1: जी सर आज पहली बार ही सुना था।
0: चलिए तो आपने बारे में आप हमें बताएं, हमारे बाकी श्रोता जो हमारे हैं वो भी आपको जान लें।
1: जी सर एक्चुअली मैं ब्लाइंड हूँ सर, नेत्रहीन हूँ और आप आसमानियों से जुड़ा रहता हूँ सर, हम लोगों के लिए तो आप ही लोग सहारा है सर।
0: जी वैसे बिल्कुल घर पर रहते हैं या कुछ काम वगैरह भी करते हैं?
1: नहीं सर थोड़े बहुत समाज सेवा के काम

0: करते रहते हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी तो पौधरोपण करना, और जैसे कि अभी गर्मी चल रही है तो सर पेड़ पौधों के ऊपर पानी रखना कि पक्षी वगैरह पी सकें, और गाय वगैरह के लिए पानी रखना। सर ये समाज सेवा के काम करते रहते हैं सर।
1: घर के लोगों का सहयोग मिलता है इस काम में आपको?
0: जी घर का भी मिलता है, दोस्तों का भी मिलता है, सभी लोगों का सहयोग मिलता है सर। और हम लोगों ने टीम रखी कि जन्मदिन जिसका भी रहेगा वो जितनी आयु का होगा तो उतने भी रक्त लगाना है।
1: बहुत अच्छा संदेश है, और अगर ऐसा हो तो हमारे यहाँ हरियाली बनी रहेगी। तो ये सभी देखें कि उनका अपना व्यक्तिगत योगदान क्या है हरियाली बनाए रखने में, तो व्यक्तिगत योगदान भी बहुत बड़ा असर डालेगा आने वाली पीढ़ी के लिए।
0: जी
1: उनके
0: सर,
1: लिए हम कुछ बचा कर दे पाएंगे, और बाकी लोग भी
0: जी सर,
1: जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, वो भी इस बात को ध्यान रखें और अपना योगदान दें हरियाली बनाए
0: जी
1: रखने
0: सर,
1: में। तो आने वाले
0: बिल्कुल।
1: महीने
0: हम
1: में 5 जून
0: तो
1: को
0: यही
1: विश्व
0: अपील करते
1: पर्यावरण दिवस है, तो विश्व पर्यावरण दिवस
0: जी
1: के
0: सर,
1: पहले ये संकल्प ले लें कि उस दिन कम से कम एक दो पेड़ जरूर लगाएं अपने आसपास जहां जगह मिले।
0: बिल्कुल
1: तो इसी अच्छी से बात पे बताएं, क्या सुनना चाहेंगे आप?
0: सर जी। एक मूवी रहेगी रोटी कपड़ा मकान,
1: महंगाई
0: उसमें
1: मार
0: एक
1: गई
0: गाना है सर जी, महंगाई मार गई।
2: एक हमें

से लेकर पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे।

हाय महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना आई, हाय महंगाई महंगाई।

0: सच्चाई मार गई।
1: नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में आपका।
2: नमस्कार सर
1: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जिला सागर, तहसील बंदा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह।
1: क्या हाल है चरण सिंह जी?
2: अच्छे सर, कैसे हाल है?
1: बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ।
2: अबे तो सागर मध्य प्रदेश में गर्मी पड़ रही है बहुत।
1: पूरे देश में गर्मी है, आपके तरफ थोड़ा अधिक होगी। हमारे यहाँ भी गर्मी है और ये तो हर साल होना ही है
2: हाँ, इस
1: जी।
2: साल ज्यादा गर्मी पड़ रही है
1: वो हर साल ऐसा ही लगता है।
2: जी। और किसानों हम खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: तो फिर आपको धूप से क्या, आप तो धूप में

0: होंगे, खेतों में अगर काम हो रहा होगा तो धूप से हर साल इसी तरह से जूझते होंगे।
1: जी अभी तो पेड़ तरह सारे तरह बैठे हैं, आप कॉल लगा रहे हैं पटना आकाशवाणी में, हमने कहीं कॉल लगा लें।
0: तो पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हैं? खेतों की रखवाली कर रहे हैं, कुछ काम करवा रहे हैं, क्या हो रहा है?
1: हाँ अभी मूंग बाए।
0: अच्छा, मूंग में तो कुछ पानी वानी देना हो रहा है क्या?
1: हाँ जी,
0: बढ़िया।
1: अभी पानी देते हैं, सवेरे चलाई थी मोटर चलाते हैं तो मूंग में सवेरा दिया था पानी।
0: तो सिंचाई की यही व्यवस्था है आपके यहाँ, और कुछ और भी करते हैं?
1: हाँ एक कुआ है, कुआ से देते हैं पानी।
0: मोटर लगा के कुएं से पानी देते हैं।
1: जी
0: बढ़िया, आप अपनी अच्छी फसल लें, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। बैठे बैठे आपने कॉल किया तो बैठे बैठे बताइए कौन सा बढ़िया वाला गाना आप सोच रहे हैं, क्या सुनना चाहेंगे?
1: प्रेम पुजारी का, ओ रंगीला रे तूने कैसा जादू किया।

0: हाँ सर नमस्ते,
1: जी, नमस्कार नमस्कार
0: मैं नम्रता पांडे बोल रही हूँ सर।
1: जी। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप?
0: सब बढ़िया हाल चाल है, गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं और गर्मी खूब पड़ रही है। छुट्टियों
1: तो क्या क्या कर रहे हैं इन छुट्टियों में? हाँ,
0: में शादी की तैयारी कर रहे हैं सर।
1: शादी हो रही है आपके यहाँ?
0: हाँ, शादी हो रही है, तो
1: अच्छा,
0: अभी अगले महीने में शादी है।
1: चलिए, खुशियाँ आपके घर आंगन में आ रही हैं, तो ये खुशियाँ लंबे समय तक बरकरार रहे। हमारी शुभकामना आकाशवाणी परिवार की ओर से।
0: जी सर,
1: जी,
0: धन्यवाद, बहुत बहुत
1: बहुत अच्छा।
0: धन्यवाद।
1: तो आप लगता इसी में व्यस्त हैं, और
0: बहुत व्यस्त हूँ इसी में
1: जी,
0: सर।
1: तो शादी किनकी हो रही है और कहाँ से क्या कर रहे हैं?
0: शादी मेरे बेटे की ही हो रही है
1: जी,
0: और बारात भी यही है, लोकल में ही है।
1: अच्छा, पसंद भी आपके बेटे की है कि आपकी?
0: बहुत पसंद आई है सर।
1: जी,
0: जी सर,
1: तो बहुत अच्छा, और स्थानीय
0: हाँ
1: स्तर पर मिल गया तो और अच्छी बात है। जी,
0: जी
1: आप तो अंदर से बहुत खुश हो रही हैं, मैं समझ पा रहा हूँ।
0: सर, बेटे की शादी है तो बहुत खुशी तो हो रही है।
1: जी,
0: हाँ उन्हें जो है,
1: अभी 1 माह है लगभग।
0: हाँ एक माह है। ठीक
1: ठीक,
0: है, इसी से मिलता जुलता सर गीत सुना दीजिए।
1: हमारी शादी में
0: हाँ
1: अभी हैं हफ्ते 4।
0: हाँ
1: विवाह से सुनवाते हैं।

0: जी नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं आपका सर नियमित श्रोता राजू कुमार मुजफ्फरपुर से। बहुत
0: जी, स्वागत है राजू जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर। नहीं बोलना तो नहीं है कि आपने तो भोजपुरी समाचार शुरू किए हैं, इसके
0: हाँ,
1: लिए आप लोग धन्यवाद से पात्र हैं।
0: धन्यवाद
1: और
0: आपका।
1: इधर लोकगीत में भी जो आप संस्कार लोकगीत बजा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो पहले अगले वर्ष से हर गुरुवार को 10:30 बजे आता था ये कार्यक्रम, तो उस कार्यक्रम को बंद करके आपने लोकगीत कार्यक्रम में इसको जगह दिए हैं।
0: हमारे यहाँ जो संस्कार गीत हैं, बड़ी मेहनत से और
1: जी
0: बहुत
1: जी जी
0: ही सुंदर तरीके से इसे
1: जी
0: बनाया
1: जो
0: गया है, एक धरोहर
1: और
0: के
1: जो
0: रूप में
1: जी
0: है ये।
1: जी जो और सामूहिक स्वर में जो गीत जो बजता है सर ना, तो
0: जी
1: और भी अच्छा लगता है सर। जैसे लगता
0: हाँ
1: है कि हम हमारे गांव में जो शादियां होती हैं, चाहे जो छठी होती है बच्चे जन्म लेने पर, तो उस तरह जो गीत बजते हैं गांव में, तो लगता है कि मैं उसी गीत को सुन रहा हूँ रेडियो पर। तो
0: जी, तो वैसा ही
1: बहुत
0: है,
1: जी
0: गीत तो
1: जी
0: पारंपरिक ही होते हैं और बहुत कुछ मिलता जुलता है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने
1: और एक
0: बनाया
1: बात और
0: है।
1: भी है सर कि पहले एक नाटक था डोमकच, और हमारे जो भरत सिंह भारती हैं, ये दोनों को जो शायद प्रोत्साहन किया जाएगा पुरस्कार देने के लिए, जैसा समाचार के माध्यम से सुने थे।
0: हाँ,

0: को अवार्ड मिलना है।
1: जी, तो डोमकच एक नाटक भी सर, जो संस्कार गीत है ठीक, उसी तरह वो भी सर एक नाटक था, जो समाज में जो जो घटते गतिविधियां जो है उस पर मतलब दर्शाया गया था, और उसकी उसी के उपलक्ष्य में लोकगीत भी चलाते थे पहले, तो वो भी कार्यक्रम मैं सुना हूँ खुद, तो बहुत अच्छा। अब तो नहीं आते हैं लेकिन बहुत सराहनीय कदम था सर और बहुत अच्छा था, तो यदि हम चाहेंगे यदि रिकॉर्ड हो तो कभी कभी मतलब उसको चलाया जाए सर।
0: नाटक।
1: जी सर, दुम कच्छ।
0: अच्छा, मुझे भी याद नहीं है, अपनी लाइब्रेरी में देखेंगे।
1: और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, आकाशवाणी का केंद्र जो है, चाहे जो भी केंद्र है, वाणी से ही चलती है, और
0: जी
1: जितना
0: जी
1: अच्छा उच्चारण रखेंगे उतना ही सुनने में भी और सुनाने में भी अच्छा लगेगा, तो मैं को भी जो भी श्रोता सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, मैं सभी श्रोताओं के लिए कहना चाहूंगा कि उच्च वाणी रखिए और अच्छी जो उच्चारण जो शब्दों का है वो बात बोलते रहिए,
0: जी
1: ताकि सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी अच्छा लगे कि
0: जी
1: हाँ। तो इस कार्यक्रम में चार चरण लगेंगे और
0: जी
1: इस कार्यक्रम का जो है मैं कि महत्व भी रहेगा सुनने में। जी
0: जी हमारा एक आपसी लेन देन है बातचीत के जरिए,
1: जी
0: तो ये एक पारिवारिक माहौल बनाता है, और इसीलिए हम लोग जो है इस कार्यक्रम को बेहतर कर पाते हैं।
1: जी
0: तो हम सभी
1: जी
0: श्रोता का वेलकम करते हैं, सभी का आदर करते हैं, लेकिन ये गुजारिश करते हैं कि आप आएं और अच्छे लहजे में, अच्छे शब्दों में हमसे बातचीत करें, हमें भी बहुत खुशी होगी, जैसा कि आप कहना चाहते हैं।
1: जी सर, होना ही चाहिए सर। जी
0: जी
1: सर,
0: तो
1: जरूर
0: चलिए
1: सर,
0: राजू
1: बात
0: जी, बहुत अच्छा रहा आपसे लंबी बातचीत रही, और कोई पसंद आपकी है आज तो बताएं। इस
1: तो क्यों ना आप ही का पसंद का गाना सुनाया जाए।
0: हम तो संगीत प्रेमी हैं, बहुत सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, तो मेरे लिए
1: जी
0: दुविधा हो जाती है
1: तो
0: कि क्या सुनवाएं।
1: आप ही के पसंद का सर गाना है, दरोगा जी चोरी हो गई।
0: अच्छा जी।
2: दरोगा

0: जी सर नमस्कार।
1: जी नमस्कार नमस्कार।
0: जी सर डॉक्टर रामसेवक पासवान मझोलिया पातेपुर वैशाली से बोल रहे हैं।
1: जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। कहिए कैसे हैं आप?
0: तो ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या हो रहा है बताएं?
0: अरे वो भी तो प्रैक्टिस होता है ना।
1: जी प्रैक्टिस तो हो ही रहा होगा, आप
0: जी
1: डॉक्टर
0: सर
1: हैं तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस हो रहा होगा। तो
0: जी
1: कुछ,
0: सर
1: हाँ कुछ विशेष अगर कर रहे हैं तो ये बताएं।
0: विशेष वही मेडिकल में है, मेडिकल की दुकान है दवा की, और वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे दो बीमारियों का मैं इलाज अच्छा से कर लेता हूँ, जैसे कलरा हुआ, निमोनिया हुआ बच्चे लोगों को, ये सब।
1: इसमें विशेषज्ञता हो गई है
0: जी सर निमोनिया और कलरा में ये दो
1: जी।
0: बीमारी को मैं ठीक कर लेता हूँ।
1: जी, एक समय था कि बिहार में इस बीमारी से, इन दोनों बीमारियों से बहुत सारे छोटे बच्चे जो है जन्म के बाद ही कालकल्वित हो जाते थे।
0: जी, यार कोलोरा में भी गांव के गांव साफ हो जाता था
1: जी
0: देहात में, समझे ना सर।
1: जी तो इससे निजात मिली है और अब कॉलरा को लोग कोई बहुत गंभीर बीमारी के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन एक जमाना था कि बहुत भयावह स्थिति थी।
0: जी सर कहते ना है कि गांव के गांव साफ हो जाता, आदमी जो ना देखने को नहीं मिलता था,
1: जी
0: ऐसा वो जमाना था पहले। लेकिन अब तो खैर इलाज चल मने चल गया है, संभव है, अब सब लोग ठीक हो जाते हैं।
1: जी जी तो अब वैसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो जाते हैं। तो इस संबंध में अगर कुछ हिदायत देना चाहते हैं आप, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता को आप बताएं।
0: ऐसे सर बच्चों को निमोनिया अगर होता है तो उनको फर्स्ट आवर में डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट कराना ही चाहिए। अगर ज्यादा समय निकल जाने पर में उसमें भी काफी परेशानी का झेलना पड़ता है।
1: और कॉलरा के लिए?
0: अब कॉलरा में तो खैर ये 2 से 3 दिन में ऐसा ठीक हो जाता है ये।
1: नहीं, सावधानी
0: और
1: क्या रखें कि कॉलरा न हो?
0: कॉलरा नहीं हो सर, ताजा खाना खाएं, दांत अच्छा लें, सड़ी गली चीज ना खाएं, यानी बहुत से, या और दूषित पानी से भी ये होता है।
1: तो ये गर्मी का समय है, वो साफ सुथरा गर्म खाना खाएं और दूषित
0: जी
1: होते हुए चीज़, क्योंकि सड़न बहुत तेज़ी से होती है गर्मी के दिनों में, तो
0: जी
1: उससे बचने का प्रयास करें,
0: जी
1: वैसा पदार्थ ना लें। बहुत अच्छी बात आपकी, और हमारे श्रोता इसका ध्यान रखेंगे ताकि बीमारियों से बच सकें। आपने फ़ोन किया है, बताइए क्या सुनवाया जाए आपके लिए।
0: लवारिस फिल्म का गाना सुनवा दीजिएगा।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612

0: 2225000। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-2225000। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं कुमुद दास और अमर आनंद। पहले सुने कुमुद दास से देवी गीत।

0: नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस समझ गया।
4: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मैथिली लोकगीत। कलाकार थे कुमुद दास और अमर आनंद। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है रूपक राम की शक्ति पूजा।

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरण शील नील नभगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह, विच्छुरित वहनिराजीव नयन हत लक्ष्यवान, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेश राम विश्वजित दिव्य शर भंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्ध क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उद्गीरित वहन भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, जानकी भीरूर आशाभर रावण संवर, लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी तलमल, विध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यो विभिन्न, प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, श्लत धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तू नीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपरजस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतराजू दुर्गम पर्वत पर निशांतकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, आए सब शिविर सान पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जांबवान यादिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए करपद क्षालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो नरनिवेश, देखते राम का जित सरूज मुख श्याम देश, है अमानिशा उगलता गगन घने अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे।

0: तेयं बुधि विशाल भूदरजिम ध्यानमग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खगन जीवन परिचय तरुमलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी। सिहरातन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार, ज्यो उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के यधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यो देवदूत। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़ का सुबाह विराध शिरस्त्रय दूषण खर। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए द्रिगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। बैठे मारुति देखते राम चरण अरविंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े यस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन उनचास पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत घूर्णा वर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिफल समर्थ बढ़ता समक्ष। शत वायु वेग बल डुबा तल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहा। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो दशस्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा की पदतल भार धरण हर मंत्र स्वर बोले,
1: संवरो देवी निज तेज नहीं वानर्य, नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, लीला सहचर दिव्य भाव धर। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। विद्या।

0: घाली आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध।
1: कह हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता,
2: तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक केवल, ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसह, ये महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ। सोचो मन में क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो ये राघव के लिए धार्य।
1: कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। राम का विषण्णानन देखते हुए कुछ क्षण,
3: हे सखा
1: विभीषण बोले,
3: आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत शम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित, है वही सुमित्रानंदन मेघनाथ जित रण, है वही भल्लपति वानरेन्द्र सुग्रीव प्रमण, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण रावण लंपट खल कलमश गदाचार, जिसने हित कहते किया मुझे पादब प्रहार, बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से गिर। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंका पति धिक राघव धिक धिक।
1: सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे नहीं इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि,
4: मित्रवर विजय होगी न समर, ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति।
1: कहते छल छल हो गई नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृगजल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपिगह युगपद मसक दंड। स्थिर जांबवान समझते हुए सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले,
4: आया न समझ में ये देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो शक्ति जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, जिनमें निहित है पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित।

0: देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नव में अशंक। हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर शिप्र वार पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों। पश्चात पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त फिर खिंचा न धनु, मुक्त जो बंधा मैं हुआ त्रस्त।
1: कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जांबवान।
2: रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो। रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं बल्ल सैन है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय।
1: खिल गई सभा।
0: उत्तम उत्तम निश्चय यह भल्लेनाथ।
1: कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदीवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित,
0: माता दशभुजा विश्व ज्योति, मैं हूं आश्रित। हो विद्य शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित।
1: कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति, वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र।
0: देखो बंधुवर सामने स्थित जो ये भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दश दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। लख महाभाव मंगल पद दल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व।
1: फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए।
0: चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर कम से कम, अधिक और हो अधिक और सुंदर। जाओ देवी दह उषह काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ ओ कमल लौट कर लड़ो समर।
1: अवगत हो जांबवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जान कर समय, सब चले सदय राम की सोचते हुए विजय। निश हुई विगत नभ के ललाट पर, प्रथम किरण फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज, है नहीं

0: शरासनयाज हस्तूणी स्कंध, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मनस्तब्ध सुधी हैं ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों की गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध निरलस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदीवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर थर थर यंबर। दो दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नीर कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि। भर गए नयन द्वय
1: धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका।
0: वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय, बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गतिहत चेतन। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन।
1: यह है उपाय
0: कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन।
1: कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरुष चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन।
0: कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय।
2: साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम,
0: कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, मंदस्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरंगराग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंदस्वर वंदन कर।
2: होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन,
0: कह महाशक्ति राम के बदन में हुई ली।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे थे रूपक राम की शक्ति पूजा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में उनकी चर्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वाड की बैठक शीघ्र होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को हुए पुनर्मतदान की मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 11वें दौर की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त बना ली है। उन्हें अब तक 44,891 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 दौर में होगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के वर्तमान लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। श्री सिंह 32 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्सियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कर्सियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों

0: के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत में चीन के राजदूत शू फिहोंग ने शांगसी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना, सहयोग और सहानुभूति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में अब तक 82 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आज रेलवे लाइन पर हुए एक धमाके में 30 लोग मारे गए और कई घायल हुए। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले साल होना है। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संवेद गान शिक्षा।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हो ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। एई माती रे,
3: माती रे,
2: एई माती रे मोरो मोते,
3: मोरो मोते,
2: माती के सुमीलो, माती के सुमीलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माती ते, एई माती ते जीवन, एई माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये एई माती ते जीबॉन सोबी, जीबॉन
3: सोबी,
2: जी कैसे ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीबॉन सोबी आकी आकी, दोबारा आकी आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार,
3: हाँ,
2: ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आका ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आकाहार, आकाहार लिखो। दूर आकाहार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर, ख नहीं बोलना, ह, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,

0: आगे।
1: इसके आगे है आहा आहा। फिर मातीर बुकुत। मातीर बुकुत। मौनोर मालोती।

0: फिर दूसरा अंतरा है मोनोर
1: मोनोर
0: कोरोनी रे
1: कोरोनी रे
0: हुरोर हुरोर पापोरी रे
1: पापोरी रे
0: पापोरी रे आजी
1: आजी
0: इतना हो गया ना
1: जी हाँ
0: आगे हुकुमार
1: हुकुमार
0: थापो
1: थापो
0: नाहुजुवा
1: नाहुजुवा
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा आगे लिखा है ना
1: जी हाँ
0: हुंदोर
1: हुंदोर
0: खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: खुदीनोर नहीं खनी ख खुदीनोर
1: खुदीनोर
0: नौतून
1: नौतून
0: दृष्टि
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि
1: दृष्टि
0: दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी
0: अच्छा ठीक है गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है अपना देश। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: CIR at 90.
1: ये सुनिए, आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म का नाम है दोस्ताना। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लीजिए सुनिए, किशोर कुमार को फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म का गाना सुनिए, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की।

0: कार्यक्रम के अंत में सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है आराधना।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों पे निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

के सांग। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षण कार्य में लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल और एक्स्ट्रा क्लास की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना के 79 केंद्रों समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे शुरू हुई और पूर्वाहन 11:30 बजे समाप्त हो गई। दूसरी पाली की परीक्षा अपराहन 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की STF टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में लू चलने की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी भागों में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र

0: बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। प्रतियोगिता में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हत्याकांड के पीड़ित को सहायता राशि का चेक प्रदान किया, साथ ही अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता राशि प्रदान की गई। अररिया जिला अंतर्गत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल के क्षतिग्रस्त होने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया से विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की है। इधर जिले में पॉक्सो कानून को लेकर जागरूकता अभियान सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले में महात्मा गांधी के आगमन के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 8 और 9 अगस्त को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर आज बैठक की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तदरीसी कामों में लापरवाही बरतने वाले असातजा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जनाब तिवारी ने कहा कि रियासत में तालीमी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए महकमा मुसलसल काम कर रहा है। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह असातज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई, बैतुलखला, मिड डे मील, बेंच और टेबल के साथ साथ इजाफी क्लासों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत वज़न और पैमाइश की जांच सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जांच मराकज़ GATC के रोल की तौसी करेगी। इसके लिए 2013 के जाब्ता में तरमीम की गई है। वजारत उमूर सारफिन ने कहा कि नए जाब्तों के तहत ये मरकज़ वज़न और पैमाइश के 23 ज़ुमरों की तस्दीक कर सकेगी। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका मकसद व्यापार को शफाफ बनाना, निज़ाम में तकनीक के इस्तेमाल और आलमी मेयार के मुताबिक खुद इन्हसार भारत के अज़्म को फ़रोग देना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इब्तदाई इम्तहान का आज पटना के 79 मराकज़ समेत रियासत के मुख्तलिफ मराकज़ पर कामयाबी के साथ इनाकाद किया जा रहा है। पहली नशिस्त का इम्तहान सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे दिन में ख़त्म हुआ। दूसरी नशिस्त का इम्तहान दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। इस दौरान मुख्तलिफ मराकज़ पर तहफ़्फ़ुज़ के बेहतर इंतज़ाम किए गए हैं। आर्मी की खुफिया एजेंसी और रियासती पुलिस की STF टीम ने मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जराइम पेशा पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से मुंसलिक कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई मरकजी और रियासती सतह की एजेंसियाँ लगातार काम कर रही थीं। रियासत के जुनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। बेशतर मकामात पर पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास का डिहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद अजला में लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। इसके साथ ही रियासत के जुनूबी हिस्सों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। दूसरी तरफ रियासत के शुमाली हिस्सों में हवा का कम दबाव बनने की वजह से आंधी, बारिश और आसमानी बिजली गिरने के हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया

किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अजला में कुछ मकामात पर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मुंबई में दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान कलकत्ता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा। जीतने वाली टीमों को प्ले ऑफ में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर

0: खेला जाएगा। जीतने वाली टीमों को प्ले ऑफ में जगह मिलेगी। टूर्नामेंट में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सरबराह और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने वैशाली ज़िला हेडक्वार्टर हाजीपुर में मुनक़दा एक प्रोग्राम के दौरान कत्ल के वाक़े के मुतासरीन को इमदादी रकम का चेक पेश किया। साथ ही दीगर फलाही स्कीमों के तहत भी इमदादी रकम फराहम की गई। अररिया ज़िला के तहत झमटा गांव में परमान नदी पर बने पुल में दरार पड़ने की जांच शुरू कर दी गई है। पटना और पूर्णिया के से माहिर इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर दरार वाले हिस्से की जांच की। दूसरी तरफ ज़िला में पॉक्सो कानून को लेकर बेदारी मुहिम महफूज बचपन महफूज मुस्तकबिल चलाई गई। भागलपुर ज़िला में महात्मा गांधी की आमद के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर 8 और 9 अगस्त को एक प्रोग्राम का इनाकात किया जाएगा। इसके तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक़द की गई। तकरीब का इनाकात गांधी शांति प्रतिष्ठान की जानिब से किया जाएगा। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना।

0: रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं।

दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण

0: सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @iirnewshindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेई हुंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए फिल्म संगीत। लिए सुनिए कुमार सानू को। फिल्म का नाम है 1942 ए लवर स्टोरी।

फिल्म जख्मी में अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने, संगीत से संवारा है बप्पी लाहिरी ने।

लीजिए सुनिए मुकेश और हेमलता को फिल्म विश्वास में। गीतकार हैं गुलशन बावड़ा, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म वीरज़ारा का ये गाना, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार मदन मोहन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एसएच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज ढुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तेलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: पास?
1: वहाँ क्यों?
0: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी?
2: हाँ बिटिया,
0: हमारी चाय यही दे देंगे?
2: लाई चाय बिटिया,
0: चल बैठ सुन।
3: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
0: तो ले चाय पी, एकदम गरम है। अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है। कहा
0: तुमने शायद शैम्पू किया है? वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
0: सुमन, सुमी वो देख, सुमन देखो
3: कहाँ।
0: अरे कितनी अच्छी लग रही है।
4: सच में,
0: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
0: मैं तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
0: कटनार की गली, यही कहेगी ना। ले समोसा का।
3: गर्म गर्म खिला रही हो।
0: हाँ तो फ्रेंड्स,
2: यस
0: मिस सुमी, आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है।
2: बिल्कुल, वेलकम वेलकम।
0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है।
2: चंदन?
0: बस ये भी चंदन जैसी है। पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
3: रीमा तू नहीं सुन रही।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना।
5: Three cheers for Bhavi Kavitri।
0: तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
3: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा, कम ऑन।
3: और रीमा, अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई, मैं तो चली। चलेगी सुमी?
3: आज नहीं, भैया आते होंगे, उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय बाय फ्रेंड।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है, सुनिए। क्या करूं तुम्हारी

0: दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
1: अच्छा, और क्या कहती है?
0: कहती है, खिलती कलियां, झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं। जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
1: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
0: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो। अतखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
1: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन हो गया अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया, आप घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला। खैर, अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊँगा।
3: लेकिन भैया, अचानक ये सब क्या हो रहा है? मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूँगी? साफ बताओ ना भैया, क्या बात है?
4: तो सच कह दूँ? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी है, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
3: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
4: ये मजाक नहीं सुमी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
4: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
3: ओ भैया,
4: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
3: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज, दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना?
3: सामान बांट लो, सब लाड साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर। एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं। मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी देख तेरे बारात आ गई। सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा हूँ। नहीं देना, मुझे छोड़कर मत जा।
1: क्यों?
0: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
1: अरे घबराहट है कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
0: छोड़ मुझे रीमा, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रीमा?
1: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
0: ठीक है, कोशिश करूंगी।

0: मैं भी चलू?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों, स्वामी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि स्वामी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ,
0: स्वामी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: भाभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो ना मिलना मिलना, अरे तार आप ताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठ जाइए। आइए भैया
2: तुम भी चलो
1: नहीं के लिए। मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
4: अच्छी हो जी,
0: चाय पी लीजिए भैया।
2: आप लोग
0: भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं, चारों तरफ भाभी भाभी भाभी। वाह लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
4: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई है, हे भगवान, और बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था कुमारी के लिए चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंदी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा, अरे मैं पागल हूँ?
5: अच्छा
1: तुम पागल हो की बारात है पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी ये लो लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो बच्ची, मुझे छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो।

0: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
1: हूँ,
0: मैं पागल नहीं
2: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
1: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
2: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रहे हैं।
1: क्या कह रही?
2: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुनी पकड़े हुए हैं।
1: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
2: अच्छा।
1: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो। मंजू, तुम बेटे बहू को संभालना।
2: अच्छा बाबूजी।
1: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
2: ठीक है बाबूजी। भाभी, ताई जी संभालिए भैया को। भाभी, भाभी, ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। भाभी ये लीजिए, पानी पी लीजिए।
3: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी, क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूँ, या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं? सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
2: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
3: तो फिर?
2: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
3: ट्रेजेडी?
2: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
3: वहाँ ठीक रहते हैं?
2: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
3: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
2: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
3: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
2: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबू जी आ गए हैं।
3: सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का, रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी ही मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
2: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
1: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
2: हैं?
1: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
2: बाबूजी?
1: हाँ।

0: उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
0: क्या कह सकता हूँ मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
2: जी बाबूजी।
0: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
0: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकते हैं और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
0: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
0: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
0: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो मुंह में आता है पक देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
0: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए, जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
0: ठीक।
3: अरे आ गए आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, क्या सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी? सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
5: चंदन
3: बेटा
5: छोड़ो,
3: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
4: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है।
6: इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
6: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
3: ठीक है,
4: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
3: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
4: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
3: धोखा? कैसा धोखा?
4: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
3: अच्छा,
4: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
3: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान इसे क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
4: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ

0: काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
1: क्या?
0: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। हमें एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे। रीमा उसकी केयर करेगी और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
1: अच्छा,
0: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
1: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी और मैंने उन्हें बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
2: अंदर आ सकता हूं?
3: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
2: सब ठीक है। तुम कैसी हो सुमी?
3: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
2: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
2: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख। तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन!
2: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बहुत थक गई हूं
2: सुमी।
1: और अब जीत हो।
2: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं।
1: हाँ, और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया
1: तू चांद नगर की शहजादी मैं जिस धरती का बंजा
0: 1985 जमाना
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए
0: क्या 1993

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
2: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जहाँ हम थे
3: जी,
2: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
3: साइन में,
2: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
3: जी।
2: तो टी मतलब होता है टट्टी,
3: अरे
2: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
3: ओ गॉड।
2: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
3: जी
2: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टेड बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
3: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
2: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और

0: मद्रास ईवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
1: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त।
2: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
2: आगे चलूँ।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी, यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रख लो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
2: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला, एक आने का टिकट वहां जाता, 5 आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से रखकर कोने में बैठा हुआ। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
2: हाँ
0: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
2: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
2: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में
2: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते 1 साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म, और 1.5 साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
0: करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: राजेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर लें तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
0: हाँ।
1: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है। अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
1: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहो पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है। अच्छा है प्ले, सब बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
0: जी जी,
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंट्रम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा। मैंने नाटक में नहीं होता।
0: जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
0: जी,
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो, वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला प्ले, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं, अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी की देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सलें हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा। लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। उन्हें आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रिहर्सलें करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतज़ार होता है, क्योंकि वो जय जी थ्रू आउट प्ले में है। और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

मीडियम वेव 483.1 मीटर, 2121 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आकाशवाणी पटना से प्रसारित युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त ईशा
1: और मैं हूं आशुतोष। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है इस

0: एक घंटे की उस यात्रा में जहां हर पल जुड़ी होगी आपकी सोच, आपकी आवाज और आपके मुद्दों से, क्योंकि युवानी सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त मंच है।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना मीडियम वेव 621 किलोहर्ट्ज़ 483.1 मीटर पर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण, गर्मियों में पर्यावरण सुरक्षा और बदलते मौसम के साथ हमारी जीवन शैली पर इसके प्रभाव के बारे में।
0: बिल्कुल ईसा, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे पानी की आवश्यकता, उसकी कमी, दोनों ही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आज हम जानेंगे कि छोटे छोटे प्रयास कैसे बड़े बदलाव का नींव रख सकते हैं।
1: दोस्तों, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो पाएंगे कि मौसम में बदलाव का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। गर्मियों में जहां एक ओर तेज धूप और बढ़ता तापमान हमें प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर पानी की कमी और पर्यावरणीय असंतुलन एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में हमें अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभानी ही होगी।
0: सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि आज के समय में जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार बन चुका है। अगर हम इसे बचाने की दिशा में कदम नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम जल का सदुपयोग करें, अनावश्यक बर्बादी को रोकें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
1: बिल्कुल आशुतोष, और श्रोताओं, इसके साथ ही आज हम बात करेंगे ब्रदर्स डे की और समझेंगे कि भाईचारा सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साथ निभाने की एक मजबूत भावना भी है जो समाज को जोड़ती है।
0: और इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे होंगी आज की प्रेरक पंक्ति, फिर स्वरांजलि में प्रस्तुत होंगी भावनाओं और विचारों से भरी कविताएं, साथ ही खेल जगत की ताजा खबरें और कुछ रोचक तथ्य भी होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और आपकी जानकारी को भी बढ़ाएंगे।
1: तो दोस्तों, अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर होने वाला है जानकारी, जागरूकता, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर, जो आपके दिन को और भी खास बना देगा।
0: और अब पेश है आज के कार्यक्रम का पहला हिंदी फिल्मी गीत, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से द डिस्को सॉन्ग बोल के, जिसे आवाज दी है बेनी दयाल, सुनिधि चौहान और नाजिया हसन ने।

0: disco beat. दोस्तों अब समय है हमारे कार्यक्रम के एक छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सेगमेंट का, आज की प्रेरक पंक्ति।
1: जी हाँ ईसा, यह वो पल होता है जहाँ कुछ शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और जीवन को एक नई दिशा देने की प्रेरणा भी देते हैं।
0: तो श्रोताओं, आज की प्रेरक पंक्ति है, पानी की एक एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना जीवन को बचाने के समान है।
1: क्या बात कहा ईसा आपने, इसका भाव यही है कि प्रकृति ने हमें जो संसाधन दिए हैं वे असीमित नहीं हैं। अगर हम उन्हें व्यर्थ करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कठिनाइयां बढ़ जाएंगी।
0: ये पंक्ति हमें ये याद दिलाती है कि जल संरक्षण केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर दिन निभाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस तरह अगर हम छोटे छोटे प्रयास करते रहें तो बड़ा बदलाव संभव है।
0: तो दोस्तों, इस प्रेरक संदेश के को अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए।
1: और इसी सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनते हैं एक शानदार हिंदी फिल्मी गीत, फिल्म शोर से लता मंगेशकर के आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से प्रसारित युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आज की बात का। आज का विषय है जल संरक्षण एवं गर्मियों में पर्यावरण सुरक्षा। ये विषय केवल एक साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे आने वाले भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ एक अत्यंत गंभीर संदेश भी है, जिस पर गंभीरता से विचार करना आज की आवश्यकता बन चुका है।
1: बिल्कुल ईसा, जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि भी लगातार देखी जा रही है। इसी के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ती जाती है, चाहे वह घरेलू उपयोग हो, कृषि हो या उद्योग की जरूरतें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि जल संसाधन सीमित है और उनका अंधाधुंध उपयोग हमें एक गंभीर जल संकट की ओर धकेल रहा है।
0: दोस्तों, अगर हम अपने आसपास के वातावरण पर नज़र डालें तो स्थिति धीरे धीरे और अधिक चिंताजनक होती जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं और तालाब सूख चुके हैं, हैंडपंपों से पानी निकालना कम हो गया है और शहरों में लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह स्थिति केवल एक क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूरे देश में कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी है।
1: और इस समस्या की जड़ में हमारी रोजमर्रा की आदतें भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हम अक्सर

0: सर पानी को एक असीमित संसाधन समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पीने योग्य पानी बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। नल खुला छोड़ देना, दांत साफ करते समय लगातार पानी बहने देना, वाहन धोते समय अनावश्यक पानी खर्च करना या पाइप लीकेज को नज़रअंदाज करना, ये सभी छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़े जल संकट का रूप लेते जा रही है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अक्सर समस्या को लेकर तब हम गंभीरता से हम नहीं लेते हैं जब तक वह हमारे जीवन को सीधे प्रभावित ना करने लगती है। लेकिन जल संकट धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या है जो बिना शोर किए हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि आज हमें पहले से ही जागरूक होने की आवश्यकता है।
0: सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि केवल पानी की कमी ही नहीं बल्कि गर्मियों में पर्यावरण पर भी भारी दबाव देखने को मिलता है। बढ़ता तापमान, अनियंत्रित शहरीकरण और हरियाली की कमी मिलाकर वातावरण को असंतुलित बना देते हैं। इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के साथ साथ पशु पक्षियों और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता रहता है।
1: पेड़ों की कटाई इस समस्या को और गंभीर बना देती है। पेड़ प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं और वर्षा चक्र को नियंत्रण करने में भी मदद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, वैसे वैसे गर्मी और प्रदूषण दोनों में ही वृद्धि हो रही है।
0: आज स्थिति यह है कि कई जगहों पर हीट वेव या लू जैसी परिस्थितियां सामान्य होती जा रही है। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं है बल्कि यह पर्यावरणीय असंतुलन का स्पष्ट संकेत है जिसे हमें गंभीरता से समझना होगा।
1: इसके साथ ही जल प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। नदियों और तालाबों में कचरा फेंकना, रासायनिक पदार्थों का मिश्रण और औद्योगिक अपशिष्ट का अनियंत्रित प्रवाह जल स्रोतों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है।
0: अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में पीने योग्य पानी की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरणीय असंतुलन हमारे जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
1: इसलिए श्रोताओं, अब ये आवश्यक हो गया है कि हम इस समस्या को केवल एक विषय के रूप में ना देखें, बल्कि इसे अपने जीवन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा माने और इसके प्रति जागरूक भी बने।
0: क्योंकि किसी भी दबाव की शुरुआत और बदलाव की शुरुआत जागरूकता से ही होती है और जागरूकता ही समाधान की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। आइए सुनते हैं ये गाना फिल्म ओम शांति ओम से सोनू निगम की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और चल रही है हमारी खास प्रस्तुति आज की बात। आज हम चर्चा कर रहे हैं जल संरक्षण एवं गर्मियों में पर्यावरण सुरक्षा पर, जहां हम इस गंभीर समस्या के समाधान और उन व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर हम वास्तविक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि अगर हमने समस्या को समझ लिया है तो अब सबसे महत्वपूर्ण कदम है उसका समाधान खोजना और उसे अपने जीवन में लागू करने का। बदलाव बड़े स्तर पर तभी संभव होता है जब शुरुआत व्यक्तिगत स्तर से हो।
0: दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने दैनिक जीवन में जल उपयोग की आदतों को सुधारना होगा। हमें यह समझना होगा कि पानी कोई अनंत संसाधन नहीं है, बल्कि यह सीमित है और इसका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ब्रश करते समय नल बंद रखना, शेविंग या हाथ धोते समय अनावश्यक पानी न बहने देना, और बर्तन धोते समय बहते पानी की बजाय एक बर्तन में पानी लेकर उपयोग करना, ये सभी छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल आशुतोष, इसके अलावा हमें स्नान के तरीकों में भी बदलाव लाना चाहिए। शावर की जगह बाल्टी और मग का उपयोग करने से काफ़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति इस आदत को अपनाए तो प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है।
1: और इसके साथ ही घरों में पानी की लीकेज को तुरंत ठीक करना भी बहुत जरूरी है। कई बार एक छोटा सा टपकता नल दिन भर में बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद कर देता है, जिसे हम आसानी से रोक सकते हैं अगर इस पर हम समय से ध्यान देते हैं तो।
0: दोस्तों, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग

0: आज के समय की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है। बारिश के पानी को यदि सही तरीके से संग्रहित किया जाए तो यह न केवल हमारी पानी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है बल्कि भूजल स्तर को भी सुधार सकता है।
1: इसके साथ ही हमें पानी के पुनर्उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी पौधों की सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। यह छोटी सी आदत बड़ी बचत का माध्यम बन सकती है।
0: अब बात करते हैं गर्मियों में पर्यावरण सुरक्षा की। इसके लिए सबसे प्रभावी कदम है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। पेड़ न केवल हमें छाया देते हैं बल्कि वातावरण को ठंडा भी रखते हैं और वायु को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं।
1: हमें यह समझना होगा कि अगर पेड़ होंगे तो ही जीवन होगा, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
0: इसके साथ ही हमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि यह मिट्टी और जल स्रोतों को भी लंबे समय तक नुकसान पहुंचाता है।
1: हमें कपड़े के थैले, पुनः उपयोग योग्य बोतलें और पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना चाहिए। छोटे बदलाव बड़े प्रभाव डाल सकते हैं।
0: दोस्तों, हमें ये भी समझना चाहिए कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।
1: जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तो शुरुआत होती है, लेकिन जब पूरा समाज जागरूक होता है तो परिवर्तन निश्चित होता है। और इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब प्रस्तुत है एक और मधुर फिल्मी गीत, फिल्म साहो से साचेत टंडन, धावनी भानुशाली और तनिष्क बागची के आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से प्रसारित युवा केंद्रित कार्यक्रम युववाणी, और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट आज की बात की विशेष प्रस्तुति का। आज का दिन एक खास भावनात्मक अवसर लेकर आया है, क्योंकि आज यानी 24 मई को मनाया जाता है ब्रदर्स डे।
1: बिल्कुल ईसा, ब्रदर्स डे एक अनौपचारिक लेकिन विश्व स्तर पर

0: मनाया जाने वाला दिन है जो भाइयों के बीच के रिश्ते, प्रेम, विश्वास और जीवन भर की दोस्ती को समर्पित होता है। यह दिन उन सभी संबंधों को भी सम्मान देना होता है जहाँ कोई व्यक्ति हमारे लिए भाई जैसा सहारा बनता है, जैसे सगे भाई, चचेरे या ममेरे भाई और हमारे बेहद करीबी मित्र।
1: दोस्तों, भाई का रिश्ता जीवन के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक माना जाता है। इसमें बचपन की शरारतें भी होती हैं, छोटे छोटे झगड़े भी होते हैं, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक गहरा अपनापन और सुरक्षा का भाव छिपा होता है। भाई वह होता है जो हमें गिरने नहीं देता, और अगर हम कभी गिर भी जाएं तो हमें संभालने सबसे पहले वही आता है।
0: और सबसे खास बात क्या है ऐसा पता है आपको कि भाईचारा केवल परिवार तक सीमित नहीं होता। यह एक ऐसी भावना है जो समाज को जोड़ती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ खड़े होते हैं या किसी मुश्किल समय में सहारा बनते हैं, तो हम वास्तव में भाईचारे की भावना को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं।
1: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में रिश्तों का क्या महत्व है। एक भाई का साथ न केवल भावनात्मक सहारा देता है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल सही कहा ऐसा आपने, क्योंकि ब्रदर्स डे हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों को केवल निभाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें समझना, सम्मान देना और समय देना भी जरूरी है, क्योंकि रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिन्हें हम समय और भावनाएं दोनों एक साथ देते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने आशुतोष। और अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो भाईचारा एक मजबूत और सकारात्मक समाज की नींव है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो समाज में विश्वास और प्रेम की भावना मजबूत होती है।
0: तो इसीलिए दोस्तों आज इस विशेष दिन पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे और अपने आसपास भाईचारे की भावना को और अधिक फैलाएंगे।
1: क्योंकि जीवन की असली खूबसूरती रिश्तों में ही है, और भाई का रिश्ता उनमें सबसे खास होता है।
0: और इसी खूबसूरत और भावनात्मक संदेश के साथ अब समय है एक मधुर हिंदी फिल्मी गीत का। फिल्म हेलो ब्रदर से सोनू निगम, कमाल खान और जसपिंदर नरोला के आवाज में।

0: What's up, bro?
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: दोस्तों अब समय है हमारे इस कार्यक्रम के एक बेहद भावनात्मक और रचनात्मक सेगमेंट का, स्वरांजलि, जहाँ शब्दों के माध्यम से भावनाएं और विचार एक सुंदर रूप में सामने आते हैं।
5: जी हाँ ईसा, स्वरांजलि में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं विशेष कविता पाठ और चर्चा दीक्षा कुमारी और अंशुमान झा की आवाज में।
6: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। आज रविवार है और आज के दिन हम लेकर हाजिर होते हैं स्वरांजलि। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जो LLB की छात्रा हैं, लॉ की छात्रा हैं, कानून की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन साहित्य में भी इनका काफ़ी मन लगता है। आप हैं दीक्षा। तो दीक्षा स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
7: धन्यवाद सर।
6: दीक्षा सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि भाई लॉ कर रही हैं आप, कानून की पढ़ाई, तो ऐसे में साहित्य से कैसे लगाव है?
7: ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल के करीब रहेगा, क्योंकि यदि आप देखें तो मूल जो साहित्य का भी यही है कि आप अपने हृदय की बातों को स्पष्ट रख सकें। और कानून भी हमें यही, मतलब एज एन एडवोकेट यानी कि वक्ता या अधिक वक्ता बन के आप यही तो करते हैं, आप बातों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने रखते हैं। तो बातों को स्पष्टी से रखना ही तो मूल है, और इसीलिए ये दोनों चीज़ें मुझे काफ़ी अपनी ओर प्रभावित करती हैं।
6: दीक्षा बातें तो आपने काफ़ी गंभीर कही हैं, लेकिन एक बात है, मतलब थोड़े लाइट वेन में मैं कह रहा हूँ कि भाई कानून की बातें काफ़ी इतनी स्पष्ट भी नहीं होती, काफ़ी उलझी होती हैं।

0: और सामान्यतः समझ में नहीं आती, लेकिन ठीक वैसी ही बात है जैसे कवि की बात जिसे कविता की समझ नहीं है उसे समझ नहीं आती, उसे उलझी हुई लगती है। तो वैसे ही आप जो पढ़ाई पढ़ रही हैं तो आपके हिसाब से कानून की बात आपको समझने में उतनी दिक्कत नहीं आती होगी, और साथ ही दोनों ही चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव है ना, आप क्या कहेंगी?
1: सही कहा आपने। कानून भी इसी तरीके से हर समय बदलता रहता है, कानून उसके अनुसार बदलते हैं। वैसे ही हमारा साहित्य भी है, सदियों से बदलता आ रहा है।

0: जानना चाहेंगे कि भाई कानून की पढ़ाई करने में तो समय काफी लगता होगा, ऐसे में साहित्य सृजन के लिए क्रिएटिव टाइम निकालना कितना कठिन होता होगा आपके लिए, तो कैसे लिख पाती हैं?
1: इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में, मल्टीटास्किंग। लेकिन बात यही आ जाती है कि जो चीज़ आपके हृदय के बहुत करीब हो, आपको अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी भक्ति के लिए, निष्ठा के लिए जिस तरीके से समय निकालना नहीं पड़ता, वो समय उनका ही है। उसी तरीके से जैसे कविताएं, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है तो मुझे समय निकालना नहीं पड़ता। मैं हर वक्त कुछ सोच रही होती हूँ। कानून की किताबों के बीच भी मैं अपनी इन कविताओं को नहीं छोड़ पाती हूँ।
0: क्या बात है, तब जब आपने इतना मन लगा के कुछ लिखा है तो चलिए सुनते हैं, कोई अपनी कविता सुनाइए।
1: तो सामाजिक विडंबनाओं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, जो बेटियां अक्सर महसूस करती हैं पर शायद कभी कह नहीं पाती। कविता का शीर्षक है, कुछ तो अजीब है। बेटा ही चाहिए कहने वाले समाज में, क्यों तुम्हारे पिता ने ईश्वर से एक बेटी की ही मन्नत मांगी होगी? कुछ तो अजीब है। बेटी है जो भी परोसो खा लेगी वाली परंपरा में, क्यों तुम्हारी मन पसंद की चीजें थाली में सजाई होगी? कुछ तो अजीब है। थोड़ा पढ़ लिख लेगी वाली सोच में, क्यों तुम्हें प्रख्यात विद्यालयों में पढ़ाया गया होगा? कुछ तो अजीब है। लड़कियां कम बोलती हैं वाले ख्याल में, क्यों तुम्हें हर मंच पर अपनी बात स्पष्ट और निर्भय होकर कहना सिखाया होगा? कुछ तो अजीब है। हिसाब से चलो, सर झुका के चलो वाली भीड़ में, क्यों तुम्हें बागी बनाया होगा? कुछ तो अजीब है। किताबें छोड़ चूल्हा चौका सीख ले कहने वालों के बीच, क्यों तुम्हें वकालत की किताबों में उलझाया होगा? कुछ तो अजीब है। बेटियां पराए घर की होती हैं वाले समाज में, क्यों तुम्हें घर की रौनक और आत्मा बताया होगा? कुछ तो अजीब है। क्या सच में ये अजीब है?
0: बहुत ही अच्छी कविता आपने कही है दीक्षा, और भाई हम तो कहेंगे कविता जो है बहुत ही सजीव है। अच्छा दीक्षा, एक बात है कि हमारी सरकार जो है केंद्र की सरकार, वो बहुत ही सजग है इन बातों को लेकर के, और देखिए सरकार की तरफ से समय समय पर बहुत सारे कानून ऐसे लाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लीजिए, या हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत का जो अभियान चलाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हमारी सरकार हमारा समाज इसके पीछे है, और इसके बारे में काफ़ी गंभीरता से हम लोग विचार भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। चलिए, जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, आज है रविवार, और आज स्वरांजलि में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा कवि और लॉ की छात्रा दीक्षा, और दीक्षा से बातचीत हो रही है। आइए इनसे जानते हैं इनकी कामयाबी का राज। तो दीक्षा बताइए कि इतने सारे मल्टीटास्किंग आजकल के युवाओं को करने पड़ते हैं, कॉलेज जाओ असाइनमेंट करो टाइम पर घर भी आओ किसी को कोई टेंशन ना हो, और उसके बाद जो आपका साहित्य सृजन का जो एक शौक है जो जुनून है वो भी है, तो इतने सारे काम करने में भाई दिक्कत तो आती होगी।
1: ये तो नेतृत्व का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि कुछ भी तो नहीं करना पड़ता ना। हमें भोजन कब मिलेगा की चिंता है, क्या खाएंगे की चिंता है, कहाँ रहेंगे की चिंता है, क्या पहनेंगे की चिंता है। माता पिता ने सारी चिंताएं तो मुक्त कर दी है। एक ही तो चिंता दी है कि पढ़ लो, कुछ बन जाओ, थोड़ा नाम रोशन कर दो, अपना भी हमारा भी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सरल काम है एक विद्यार्थी के लिए, अब क्योंकि बहुत ही साधारण हो गई है अब, क्योंकि सारी जो मुश्किलात हैं वो तो हमारे माता पिता ने खुद ही उठा रखे हैं। हमें तो बहुत आसान काम दिया है।
0: जी बहुत ही सरलता से आपने अपनी बात रख दी है दीक्षा। अच्छा दीक्षा, तो इसी बात पर बताइए कि भविष्य के लिए क्या सोचा है, आगे क्या करना है?
1: अभी तो मेरी कानून की पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद मैंने एक जज बनने का सोचा है, न्यायाधीश, उसी की तैयारी में जुट जाऊंगी।
0: क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आपका सपना साकार हो, और अब हम चाहेंगे और हमारे श्रोतागण चाहेंगे कि एक और कविता भाई आपसे सुनी जाए, तो सुनाइए अपनी एक और कविता।
1: तो जब मैंने आपको बताया कि घर वालों ने कितनी आसान कर दी है जिंदगी, तो उस पे मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी कविता

0: शुरू करूंगी। तो कविता घर पे है, आइए शुरू करते हैं। ये वही है जो तुम्हें रोने नहीं देगा, तुम्हें उदास होने नहीं देगा, भटक भी जाओ तो खोने नहीं देगा, और ये वही घर है जो तुम्हें कभी भूखा सोने नहीं देगा। कविता शुरू करते हैं। क्या है ये घर? चार दीवारें ही तो हैं, दीवारें वो जो तुम्हें महफूज रखेंगी, कुछ लोग ही तो हैं, लोग वो जो तुम्हारे अपने हैं, कुछ बातें ही तो हैं, बातें वो जो तुम्हारे दिल से होती हैं, कुछ रिश्ते ही तो हैं, रिश्ते वो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं, कुछ एहसास ही तो हैं, एहसास वो जो तुम्हें निरंतर अपनाते हैं, कुछ मर्यादा ही तो है, मर्यादा वो जो तुम्हें राह भटकने से बचाती है, कुछ परंपराएं ही तो हैं, परंपराएं वो जो तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, एक भाषा ही तो है, भाषा वो जो तुम्हारा मूल है, एक आज़ादी ही तो है, आज़ादी वो जो तुम्हें उड़ान भरने देता है, एक डोर ही तो है, डोर वो जो तुम्हें प्रेम से बांधे रखता है, यही तो घर है।
1: क्या बात है, क्या बात है। इतनी गंभीर कविताएं लिख लेती हैं आप भाई दीक्षा, सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। और हमारे
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं को भी यकीनन ये सारी कविताएं जो अभी आपने सुनाई हैं उन्हें काफ़ी पसंद आ रही होंगी। अच्छा दीक्षा, इन कविताओं के बाद एक बात और जो मेरे मन में आ रही है, और शायद यह बाद में ये बात भूल जाऊँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे एक क्वेश्चन करना है।
0: बिल्कुल।
1: आपने बताया कि आप LLB कर रही हैं। भाई बचपन से ये कौतूहल रहा है मेरे मन में कि LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ।
0: ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं,
1: तो इसमें ये दूसरा एल ये क्यों होता है?
0: ये असल में एक लैटिन टर्म से लिया गया है, एक अलग भाषा का टर्म है, और वहां से हमने ये लिया है, और LLB हम इसे शॉर्ट में बैचलर ऑफ लॉ कह देते हैं।
1: चलिए श्रोताओं, तो अभी आप सुन रहे थे दीक्षा को वही बोलते हुए भी और ज्ञान बांटते हुए भी, और अब हम दीक्षा से एक और कविता, एक और उनकी रचना वो सुनने वाले हैं।
0: तो कविता है, तुम क्या हो?
1: तुम क्या हो, क्या हो तुम, कवि हो, लॉ की छात्रा हो, क्या हो तुम? चलिए मजाक की बात है, कविता का शीर्षक है तुम क्या हो।
0: ये भी स्त्री पे ही है समर्पित। तुम वृक्ष हो, तुम वायु हो जीवन जीने को जरूरी, तुम अग्नि हो, तुम ज्वाला हो, राख कर दो सृष्टि पूरी, तुम ज्ञान हो, तुम ज्ञानी हो, मन में भरा संचार भी, तुम कविता हो, तुम लेख हो, उसमें छुपा जो सार भी, तुम मान हो, मर्यादा हो, तुम ही पिता का गौरव भी, तुम स्वप्न हो, साकार हो, तुम ही तो कुल का सौरभ भी, तुम लक्ष्मी हो, तुम दुर्गा हो, उनकी करीब भक्ति भी हो, तुम माँ भी हो, तुम ममता हो, उसमें मिली शक्ति भी हो, तुम बीज हो, तुम वृक्ष हो, तुम जीवन का संचार भी, तुम आज हो, तुम कल भी हो, और नित नवीन विचार भी।
1: वाह, इतनी गंभीर कविताएं आप लिखती हैं दीक्षा, और वाकई काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे कविताएं सुन करके, और काफ़ी अर्थपूर्ण कविताएं हैं आपकी। लेकिन कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। दीक्षा बहुत बहुत बहुत शुक्रिया है आपका कि आपने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकाला है, हमारे स्टूडियो आई और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें आज आपने साझा की हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: धन्यवाद। वाह, सच में यह एक बेहद सुंदर और भावनात्मक प्रस्तुति थी दीक्षा कुमारी के द्वारा। शब्दों में जो गहराई थी उसने मन को छू लिया।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म बाजार से इका ज्योति का तंगड़ी के आवाज में।

0: अब समय है हमारे स्पोर्ट्स अपडेट के सेगमेंट का, जहां आईपीएल 2026 का रोमांच लगातार अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है और हर मुकाबला प्लेऑफ की तस्वीर को बदलता जा रहा है।
1: सबसे पहले बात करते हैं कल यानी 68वें मुकाबले की, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
0: इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 196 रन 6 विकेट पर बनाए थे। जवाब में पंजाब किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और कप्तान श्रेयस अय्यर की 79वीं पारी के बदौलत लक्ष्य को हासिल किया।
1: इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को इस हार से बड़ा झटका लगा।
0: इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। हर जीत अब सीधे प्लेऑफ समीकरण को प्रभावित कर रही है।
1: अब बढ़ते हैं आज के पहले मुकाबले की ओर, जहां मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे।
0: यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स यह मैच जीत जाती है तो वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, यानी यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा है।
1: वहीं मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में पूरे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। हालांकि इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और टीम इस मैच को जीतकर अपने अभियान का सम्मानजनक समापन करना जरूर चाहेंगी।
0: अब नजर डालते हैं आज के दूसरे मुकाबले पर, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच टक्कर हो रही है। खास बात यह है कि मुकाबले मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के नतीजे का सीधा असर इस मैच के समीकरण पर भी पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल की स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।
1: अगर राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो प्लेऑफ की दौड़ और भी कड़ी हो जाएगी और इसका दबाव कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमों पर साफ नजर आएगा।
0: तो दोस्तों, आज का दिन आईपीएल 2026 में बेहद अहम है, क्योंकि दो मुकाबले मिलकर पूरी अंक तालिका की दिशाई कर सकते हैं। हर गेंद, हर रन और हर विकेट अब प्लेऑफ की कहानी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक शानदार हिंदी फिल्मी गीत, फिल्म सलामी नमस्ते से कुणाल गंजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: मित्रों, स्वागत है आपको हमारे इस खास सेगमेंट रोचक तथ्य में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्ञान और आश्चर्य से भरी कुछ ऐसी बातें जो आपके सोचने के दायरे को और भी विस्तृत कर देती हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प यात्रा को, जहाँ हर तथ्य अपने आप में एक अपने साथ एक नया ज्ञान और नई सोच लेकर आता है।
0: दुनिया की सबसे तेज मछली सेल्फिश मानी जाती है, जो पानी में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से तैर सकती है।
1: यह मुख्य रूप से महासागरों में पाई जाती है और अपनी गति के कारण समुद्र की सबसे कुशल शिकारी भी मानी जाती है।
0: बांस का पौधा दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। यह बहुत कम समय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।
1: प्रकृति की यह क्षमता हमें यह सिखाती है कि सही परिस्थितियों में विकास बहुत तेजी से संभव है।
0: तो दोस्तों, अब हमारा युवा केंद्रित कार्यक्रम युवानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। उम्मीद है कि आज की यह पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञान, जागरूकता, प्रेरणा और मनोरंजन का एक संतुलित संगम रही होगी।
1: आज के कार्यक्रम में हमने जल संरक्षण एवं गर्मियों में पर्यावरण सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा की और यह समझने का प्रयास किया कि सीमित जल संसाधनों के बीच हमें अपने व्यवहार और आदतों को बदलाव लाना कितना जरूरी है।
0: हमेशा याद रखिए, जल ही जीवन है, इसलिए इसका संरक्षण भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपना सुझाव ईमेल कर सकते हैं feedback@patna@gmail.com पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: आप सभी का धन्यवाद।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारती में पवन अपने लोकनिक स्वागत करते हैं। श्रोता, आई भारती में डॉक्टर हेमंत मिश्र से हुनक विचार जानब। विख्या है मीमांसा दर्शन आ मैखिक गौरवपूर्ण इतिहास। संग ही श्यामा झा से गीत सुनब, मुदाओ पहिने हमरा लोकन किछु गपशप कऽ ली। श्रोता, घरक अगल बगल में जो हरियर गाछ वृक्ष रहे छे, तो घर में रहनिहार व्यक्ति

पर एकर सकारात्मक असर होइ छै। ई तखने संभव थिक जखन बागवानी कयल जाय। बागवानी करबाक लेल ओहन जगह चाही जतय रौद अबैत हो आ पानि जमा नहि होइत हो। ओहन जगह के साफ कऽ माटि के भुरभुरा बनाबय लेल कोरि दी। माटिक उर्वरा शक्ति बढ़ेबाक लेल वर्मी कम्पोस्ट वा सरल गोबर के खादक उपयोग करी। गाछ लगेबाक लेल 15-20 दिन पहिने खादि बना ली, ओहिमे रौद लागऽ दी, जाहिसँ जमीनक कीड़ा मकोड़ा जे छै जे गाछके नुकसान पहुँचा सकै छै से मरि जाय। फेर माटि खाद आ नीमक खल्ली वा कीड़ा मारयवला दवाईके मिश्रणसँ खादिके भरि दी। ओकर बाद कयल गेल बागवानी जाहिमे फूल फल आ तीमन तरकारी जनमत से आनंद तऽ देबे करत, सङ्गहि स्वस्थ सेहो राखत। ओना एहि सन्दर्भमे जँ प्रशिक्षण लऽ ली तब तकरा बाद कयल गेल बागवानीसँ अर्थोपार्जन सेहो कयल जा सकैत अछि। श्रोता, आप गप करब स्वास्थ्य कोना नीक राखल जाय ओकरा सम्बन्धमे। ओना सभ केओ चाहै छथि जे स्वस्थ रहे, तकरा बादो जँ स्वास्थ्य बिगड़ै छै तऽ डॉक्टर आ अस्पतालमे जा कऽ अपन इलाज करबै छै। मुदा अस्पतालक खर्च बड़ बेसी हेबाक कारण सभक नीक इलाज भऽ सकै ई नहि भऽ रहल अछि। आर्थिक रूपसँ कमजोर लोकक लेल एकटा योजना भारत सरकार दिससँ शुरू कयल गेल। ओहि योजनाक नाम थिक आयुष्मान भारत योजना। एहि योजनाक उद्देश्य आर्थिक रूपे कमजोर व्यक्ति जे BPL कार्डधारी होइत छथि हुनका सबके 5 लाख टका धरिक स्वास्थ्य बीमा देल जाइ छनि जे कैशलेस होइत अछि। एहिमे ओ व्यक्ति आ हुनक परिवारके सस्ता दर पर गुणवत्तापूर्ण इलाजक सुविधा भेट सकै छनि। श्रोता, मानव जीवन सर्वोत्तम मानल गेला और ई तखन और उपयोगी सिद्ध भऽ जाइत अछि जहन मानव जीवन के उपयोग करैत परोपकार ओहिमे शामिल कऽ देल जाय। श्रोता, परोपकार हमरा लोकनिक व्यक्तिगत आ सामाजिक जीवनक लेल बड़ जरूरी थिक। परोपकारक सोझ अर्थ भेल निस्वार्थ भावसँ दोसर के सेवा करब। परोपकारसँ मन के आत्मिक शांति भेटै छै, समाज में प्रेम आ भाईचारा बढ़ै छै आ जीवन के सार्थक उद्देश्य पूरा होइत अछि। जखन कोनो जरूरतमंद लोकक मदद करै छी तऽ मानसिक संतुष्टि भेटैत अछि। दान आ समाज सेवा सँ तनाव कम होइ छै। परोपकार सँ वसुधैव कुटुम्बकम केर भावना जन्मैत अछि, एहिसँ आपसी मतभेद खत्म होइ छै। वेद पुराण में परोपकार के सबसे पैघ मानल गेल छै। स्वार्थ सँ ऊपर उठ दोसरा के लेल जीव मानवता थिक। परोपकारक भावना मनुख के अहंकारी हो सँ बचबैत अछि। एहिसँ विनम्रता सहानुभूति आ प्रेम सन गुणक विकास होइत अछि। श्रोता, परोपकारक लेल बड़ बेसी धन वा संसाधन ओकर जरूरत नहि छै। प्यासल के पानि पियाब, भूखल के भोजन करायब, जरूरतमंद नेना के मुफ्त शिक्षा देब, बुजुर्ग आ असहाय के सहारा देब, गाछ वृक्ष लगा पर्यावरण संरक्षण करब, ई सब परोपकार भेल। परोपकार क जीवन के धन्य बनाबी। श्रोता, गप सब चलित रहत, आओ कार्यक्रम दिस बढ़ी आ सुनी श्यामा झा सा ई गीत।

सोताई छली श्यामा झा, सुना रहल छली विद्यापति गीत। नीक लागल हैत ओना आगा कार्यक्रममे हिनका सा आर गीत सुना। चलै छी अगला कार्यक्रम दिस। श्रोता, मिथिला प्राचीने कालसँ विद्वानक शरणस्थली रहल है। विद्वता के रूप में जब देखल जाए तो मैत्री, गार्गी आ स्वयं राजा जनक सेहो परम विद्वान छला। वही मिथिला के सहरसा जिला के महिखी गाम, जे महिषी गाम, मीमांसा दर्शन, अद्वैत वेदांत आ दर्शन के प्रमुख केंद्र अछि। ई जे स्थान थीक से

0: महान दार्शनिक मंडन मिश्र आ हुनक पत्नी के कर्मस्थली रहल है। आदि शंकराचार्य आ मंडन मिश्रक बीच जे शास्त्रार्थ भेल छल से प्रसिद्ध है, वह एही जगह पर भेल छलै। जँ महिषी के गप करी तो एहिठाम जे छे से जे मीमांसा दर्शन के बात छे, कोन रूपे एत तंत्र साधना और कोन रूपे एत जे छे से अनुसंधान होइ छे तकरा चर्च करब, तक आ संगहि एहिठाम माँ तारा के पीठ छनि, उग्र तारा स्थान कहबैत अछि जे एकटा दैवीय स्थान छै। जँ एहि सभक सन्दर्भमे हमसब सविस्तार जानऽ चाही तऽ आउ डॉक्टर हेमंत मिश्रासँ एहि सन्दर्भमे सविस्तार जानै छी। हुनक वार्ताक विषय छनि मीमांसा दर्शन आ महिषीक गौरवपूर्ण इतिहास, तऽ सुनी हुनकेसँ ई वार्ता।
1: आइ हम एक एहन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कऽ रहल छी जे भारतीय ज्ञान परम्पराके पोषित एवं संरक्षित करैत उन्नत सेहो करैत अछि। ई विषय यह मीमांसा दर्शन और महिषी के गौरवपूर्ण इतिहास। महिषी मूल रूप सँ बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत कोसी तटबंध पर स्थित अछि। कोसी तट पर ज्ञान ग्राम तारामंडन भारती महान के नाम सँ प्रसिद्ध महिषी की सांस्कृतिक धरोहर वेद काल सँ मानल गेल अछि। ई धरती ज्ञान एवं कर्म के संगम के रूप में विद्यमान अछि। तारा के 5 किलोमीटर के आसपास प्रसिद्ध स्थान सेहो अछि, जहि में संत लक्ष्मीनाथ गोसाई, संत कारू बाबा और कंदहा के सूर्य मंदिर सेहो शामिल यह। महिषी के एग्रीकल्चर क्षेत्र के जहाँ तक हम बात कर रहल छी तो महिषी मूल रूप से समतल कोसी जलोढ़ मेगाफेन के हिस्सा के रूप में सेहो चर्चित अछि। एहिठाम के मुख्य फसल के रूप में मक्का और मखाना सेहो अछि। मखाना के मूल रूप से भारत में GI टैग सेहो प्राप्त अछि। ई धरती ऋषि वशिष्ठ के तपोभूमि एवं राजकमल चौधरी के कलम के रूप में सेहो विद्यमान अछि। दर्शन तंत्र साधना और साहित्य के केंद्र के रूप में महिषी ख्याति प्राप्त अछि। मध्वाचार्य कृत शंकर दिग्विजय के अनुसार ई धरती पर आदि शंकरा सेहो आयल रहे। जहाँ तक मीमांसा दर्शन के बात कह रहल छी तो मीमांसा दर्शन मूल रूप से जे शाब्दिक अर्थ अछि तऽ मानल जाय अछि कि मीमांसा के मूल अर्थ एनालिटिकल या विश्वसनीय शब्द के रूप में हुनका ख्याति प्राप्त अछि। मंडन मिश्र के ज्ञान और कर्म के विभिन्न विचार से प्रभावित बहुत लोकनी सेहो अछि, ओहि में शंकराचार्य के सेहो मानल गेल है। मंडन के 7 ग्रंथ एवं लोक कथा से प्रभावित मंडन मिश्र के जीवन जैव विविधता के सेहो प्रभावित करैत यह। मीमांसा दर्शन से संबंधित जहाँ तक बात कह रहल छी वह ओ मूल रूप से बौद्ध धर्म दर्शन से सेहो संबंध राखैत अछि। बौद्ध और सनातन धर्म के संगम के रूप में महिषी के सेहो ख्याति प्राप्त अछि। इतिहासकार सेहो मानैत यह कि तारा मूर्ति जे महिषी ग्राम में स्थापित यह ओ 3 फीट के नीला काला रंग के पत्थर से निर्मित यह। ई मूर्ति के तिब्बत नेपाल के मार्ग सँ महिषी में लायल गेल रह। यह स्थान बौद्ध तंत्र तारा संप्रदाय और हिंदू सनातन तंत्र के अद्भुत समन्वय के जीवंत उदाहरण के रूप में उपस्थित अछि। मीमांसा दर्शन आधुनिक तकनीकी प्रथा जैमे एल्गोरिथम निर्णय निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमता जेमिनाई AI सेहो शामिल यह। जेमिनाई AI के ही अंतर्गत NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण अर्थात जे कंप्यूटर के इंसानी भाषा के पढ़े में और समझे में मदद करैत अछि। एहि से संबंधित देखल जाय तऽ मीमांसा दर्शन में जे निष्पादित मूल रूप से मंत्र के कह गेल यह से मंत्र के प्रभाव के रूप में जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जे हुनका महत्व प्राप्त अछि वो यह पैरा सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र डोपामाइन और सेरोटोनिन जे मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क के प्रभावित करैत अछि। जैसे

मानव मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा और शांति सेहो प्राप्त कैल गेल जाय अछि। एहि से संबंधित जहन हम अमेरिका और भारत के दो मुख्य संस्था के रूप में जो चर्चा करै छी तो ओहिमे मुख्य रूप से साइंस एंड नॉन डुअलिटी, एहि जगह पर नॉन डुअलिटी के अभिप्राय सब कुछ एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, और निर्वाणा नीलिमा वेलनेस के मुख्य वेबसाइट पर ओम इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर सेहो निष्पादित अछि। ओम मुख्य रूप से वेद में ईश्वर के रूप में स्वीकार कैल गेल अछि और मुख्य रूप से ओम के ब्रह्म और ब्रह्म सत्य और ईश्वर के रूप में निष्पादित कैल गेल अछि। ओम के महत्व मंत्र में प्रारंभ और अंत के रूप में सेहो देखल गेल अछि। एहि के साथ जहन हम बात करै छी आप्तम आप्त वाक्यम शब्द अर्थात यथार्थ वक्ता के वचन ही स्रोत प्रमाण है के आलोक में विद्वान लोकनि के मान्यता अछि कि प्रौद्योगिक युग में आप्त के अर्थ पीयर रिव्यूड, ई रिव्यू मुख्य रूप से सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड एवं ओपन रिव्यू के रूप में शोध और प्रमाणिक डेटा का सेहो सत्यापित करैत अछि जे प्रकाशन नैतिकता समिति COPI और निष्काम नैतिकता का सेहो रेखांकित करैत अछि। मीमांसा के ज्ञान एवं कर्म के आधुनिक तकनीकी विमर्श के साथ एकीकृत सेहो कैल गेल अछि। यांत्रिकी तकनीक शोध आदि पर नैतिक व्यवहार के प्रधानता के रूप में मीमांसा के ख्याति प्राप्त अछि। एहि से तकनीकी विकास मानवीय मूल्य उत्तरदायित्व और सामाजिक कल्याण आदि नैतिकता के साथ विकसित भऽ रहल अछि। जहाँ तक उग्रतारा तारापीठ के बात अछि तऽ उग्रतारा सिद्धपीठ के रूप में विद्यमान अछि। एहिठाम के संबंध में मान्यता यह कि उग्रतारा के सान्निध्य में बैठ कर एहिठाम बहुत सारा तपस्वी अपन चिंतन के जागृत और तार्किक रूप देलनि। एकाग्रता की प्रतिमूर्ति एवं माइंडफुलनेस के केंद्र के रूप में तारा का सेहो मानल गेल अछि। तांत्रिक योग एवं तंत्र युक्ति के प्रयोग शोध पद्धति के लिए प्राचीन वाग्मय में सेहो मीमांसा के महत्वपूर्ण स्थान अछि। अनुसंधान एवं व्याख्या के परंपरा प्राचीन भारत के मिथिला में विद्यमान ये। एहिठाम राजा जनक सँ लऽ कऽ गार्गी मैत्री एवं विभिन्न प्रकार के विदुषी विद्वान सेहो उपस्थित अछि। आधुनिक काल के जहाँ तक हम बात कऽ रहल छी ओहिमे गंगेश उपाध्याय आरो गंगानाथ झा आदि सेहो एहिमे शामिल अछि। राजकमल चौधरी मुख्य रूप से साहित्य हिंदी साहित्य आरो मैथिली साहित्य में हुनक योगदान अपेक्षित अछि। मीमांसा दर्शन के जहाँ तक बात कऽ रहल छी तऽ मीमांसा दर्शन आरो महिषी के मूल रूप से जो संबंध देखल जाए वैदिक काल से विद्यमान अछि। मीमांसा दर्शन मूल रूप से ज्ञान कर्म के ही बात नहीं करे यह मूल रूप से ओ ज्ञान के सेहो बात करे यह ज्ञान आरो कर्म के एकीकृत करैत अपूर्व के सेहो स्थापित करैत अछि। जहाँ तक मीमांसा दर्शन के हम विभिन्न आयाम पर बात करै छी तऽ हम देखै छी कि ज्ञान में जे छै से वेद के शब्द और पुरुषता के बात कैल गेल ये, सृष्टि प्रपंच के बात कैल गेल ये, आर विभिन्न प्रकार के आयाम छै जकर आधार पर मीमांसा दर्शन ज्ञान आरो कर्म के परिभाषित करैत अछि। जहाँ तक देखल जाए तऽ जैमिनी सूत्र के मान्यता के अनुसार मीमांसा दर्शन 16 अध्याय में विभक्त अछि, जाहिमे 12 अध्याय ज्ञान आरो कर्म से संबंधित अछि और 4 अध्याय जे शंकर कांड से संबंधित अछि। मीमांसा दर्शन में जैमिनी अपन से पूर्व 10 जे आचार छथि जाहिमे बादरायन, बादरी, आलेखन आरो विभिन्न प्रकार के विद्वान अछि जिनका ओहिमे समेटैत समाहित केने अछि। जैमिनी के मान्यता के अनुसार देखल जा सकैए तऽ जैमिनी के कर्म आरो गीता के कर्म दोनों के जो परिणाम अछि वो निष्काम परिणाम अछि। ई संबंध ऐसा स्थापित होइए बादरायन आरो जैमिनी के गुरु शिष्य या शिष्य गुरु संबंध से ई स्थापित भेल।
जहाँ तक देखल जाय छै तऽ महाभारत के जे भाग में गीता अछि ओकर जे रचयिता

0: के रूप में बादरायन के मानल गेल ये, तय चलते कहल जाए छे कि दोनों के कर्म के सिद्धांत के जे परिणाम छे या लक्ष्य छे वो निष्काम से संबंधित छे। छे मंडन मिश्र के विचार से प्रभावित वाचस्पति मिश्र जे वेदांती मीमांसक रहल ये, हुनक के किताब भामती जे छे छे वो निष्काम प्रेम का सेहो परिभाषित करैत अछि। मंडन मिश्र मूल रूप से मीमांसा वेदांत और शब्द जे स्पोर्ट सिद्धि छे ओइसे के विचार जे छे से प्रभावित अछि। मिथिला और महिषी मूल रूप से ज्ञान कर्म तर्क और नैतिकता के विभिन्न आयाम के सेहो समृद्ध करैत या। उग्रतारा स्थान एक प्रकार से तंत्र विद्या और लोक संस्कृति से प्रभावित सेहो देखल जा सकैत या, क्याकि मूल रूप से वेद या सनातन संस्कृति से संबंधित मूल ग्रंथ में कोनो जगह एहन नहि लिखल छै जेठमा बलि प्रथा या हिंसा के चर्चा कैल गेल छै या उनकर समर्थन कैल गेल छै। ई मूलतः ओहि समय के पद्धति और संस्कृति के देन छै जकर कारण हम कहि सकै छी कि महिषी में बलि प्रथा जे छै से देल जा रहल अछि। या इहो कहि सकै छी कि मूल रूप से तंत्र विद्या से जे प्रभावित लोक छै जे मूल रूप से कर्म और तंत्र विद्या के नहि बुझि रहल छै लेकिन तंत्र विद्या में हिंसा के समाहित करैत जे छै से ओकर वर्चस्व कैल गेल या। जहाँ तक एआई के बात हम करै छी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बात करै छियै, तऽ कहल जाइ छै कि वेद में दू पद्धति छे, एक फलित और एक गणित। फलित के भाग छे वो भाग छे जकरा कहल जाए छे कि सौर मंडल और ज्योतिष। ज्योतिष के सौर मंडल से कहे छे कि वो जे प्रभावित छे जे सैटेलाइट छे वो सैटेलाइट कहीं न कहीं वो चीज से प्रभावित छे। दोसर एकर इहो कारण छे कि मीमांसा जे छे से एक समराइज कए के एक एनालाइज करे छे कोनो भी चीज का और एनालाइज कए के जे छे से ओ विषय और वस्तु का जे छे से प्रस्तुत करे छे। त्या चलते लिखल जाय छे कि जेमिनाई एआई के रूप में। और वह से संबंधित जहन हम एकर नैतिक पक्ष के बात करे छे तो मीमांसा दर्शन नैतिक पद्धति के रूप में ई परिभाषित करे के प्रयास करे छे कि कना व्यक्ति जे छे से सिर्फ ज्ञान ने ज्ञान के आधार पर कर्म के सेहो जे छे से समाहित करत। एकरा हम एना समझ सके छी कि जना हम थ्योरी और प्रैक्टिकल के बात करे छिए वह पद्धति से जे छे से ज्ञान जे छे से एक थ्योरी के रूप में छे और कर्म जे छे से एक प्रैक्टिकल के रूप में छे। जत तक हम मीमांसा दर्शन और महिषी के गौरवपूर्ण इतिहास संबंधित विषय पर उपयुक्त चर्चा कलूँ यह, ओम मूल रूप से देखल जाए तो अगर हम बिंदुवार करी तो ओम ज्ञान के बात कैल गेल अछि, ओम कर्म के बात कैल गेल अछि, ओम नैतिकता के बात कैल गेल अछि, ओम तत्व मीमांसा संबंधित विचार के सेहो बात कैल गेल अछि, ओम जे छै से तंत्र विद्या आरो ज्योतिष के सेहो बात कैल गेल अछि। मीमांसा दर्शन के आइ के परिप्रेक्ष्य में देखल जाए तो तकनीकी विकास के जे उन्नयन में मीमांसा दर्शन के जे योगदान ये विषय के रूप में आइ शोध में कार्य कऽ रहल ये। जत तक अहाँ रेफरेंस के बात करै छी तो रेफरेंस आरो जो फुटनोट्स के बात करै छी तो फुटनोट्सो जे छे से के हिंदी जहन हम करै छी तो ओमे कहै छी हिंदी ओकर पाद होइ छै। आ ओ जे मीमांसा में जहन हम जाइ छी तो कहै छी कि 7000 से अधिक श्लोक आरो 8 पाद जे छे से मीमांसा में समाहित छै। तो कहल जाइ छै कि ओतै से ओ प्रभावित छै। जत तक तारा के बात कैल जाए तो तारा एक महिषी के सांस्कृतिक उत्थान और महिषी के पहचान के रूप में ओहिठाम अवस्थित अछि और पर्यटन क्षेत्र होबा के कारण जे छै से ओहिठाम संभवतः 100 से अधिक परिवार का आर्थिक लाभ और रोजगार सेहो प्राप्त कैल गेल अछि।
1: मीमांसा दर्शन आ महिषीक गौरवपूर्ण इतिहास एहि पर अपने लोग अखन सुनल डॉक्टर हेमंत मिश्रक विचार। धन्यवाद दियन डॉक्टर हेमंत मिश्र के जे महिषी के जे गौरवपूर्ण इतिहास छले तै पर ओ बढ़िया से प्रकाश डालन। अश्रोता आओ हमरा लोकन श्यामा झा से सुनी ई अगला गीत।

सुतै छली श्यामा झा, सुना रहल छली मिथिला गीत। आ श्रोता आजुक भारतीमे बसेतबे, अगला कार्यक्रम धरि पवनके विदा दियौ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें।

छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, सामाजिक सद्भाव बनाए रखें, सुनेंगे वार्ता, ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता, साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का। कलाकार होंगे पंकज कुमार पांडे। सात बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे बटेर पालन,

सुनेंगे लोकगीत पंकज कुमार पांडे के स्वर में। सात बजकर 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे चंदन दा। आठ बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे सुनीता जोशी। श्रोताओं, 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल साइंस मैगजीन पर आधारित कार्यक्रम रेडियो स्कोप। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेगा। 10:00 आप सुनेंगे रविवार सरिये अखिल भारतीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित। 11:00 आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 14 ये थी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ लोग आशुतोष से सुनी भोजपुरी में समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहनी है कि पढ़ावे के काम में लापरवाही करे वाला मास्टर लोगन के खिलाफ कार्रवाई कैल जाय। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत करत श्री तिवारी कहले कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के मजबूत बनावे खातिर विभाग लगातार काम कर रहल बा। ऐसे में अपना जिम्मेदारी से लापरवाह मास्टर लोगन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई हुई। वहां के आगे कहनी कि सरकारी स्कूल में बढ़िया पढ़ाई, शौचालय, मिड डे मील, बेंच, टेबल और एक्स्ट्रा क्लास के भी व्यवस्था कल जा रहल बा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 विभूति के पद्मश्री सम्मान प्रदान करी हैं। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान खातिर पद्मश्री दिहल जाय, जबकि डोमकच नृत्य के मुख्य धारा में लावे वाला लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु के मरला के बाद पद्मश्री सम्मान दिहल जाय। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से

0: पटना के ज्ञान भवन में काल से 3 दिन के रोजगार मेला के आयोजन कल जा रहल बा। मेला में स्वास्थ्य अउरी एकरा से जुड़ल लोग खातिर कंपनी हिस्सा ले रहल बाड़ी सन। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके नियोजक संस्थान में आवेदन दे सकता लोग अउरी स्टॉक बुक करा सकता लोग। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज पटना के 79 केंद्र समेत राज्य के अलग अलग केंद्र पर सफलतापूर्वक आयोजन कल गई। पहला पाली के परीक्षा सवेरे 9:30 बजे से शुरू भइल और दिन के 11:30 बजे खत्म हो गई। दूसरा पाली के परीक्षा दोपहरिया में 2:30 बजे से सांझ के 4:30 बजे ले भइल। परीक्षा के दौरान सब केंद्र पर सुरक्षा के कड़ा इंतजाम कल गई रहल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारे के घोषणा कल गई बा। पटना में पार्टी के भइल बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह के प्रत्याशी बनावे के निर्णय लेहल गई बा। पार्टी के प्रदेश सचिव रामनरेश पांडे बतौलें कि महागठबंधन के और दोसर दल के साथ समन्वय बना के संयुक्त उम्मीदवार उतारे खातिर विचार कल गई बा। आगे बतौलें कि बैठक में निर्णय लेहल गई बा कि 25 मई से सारा जिला मुख्यालय पर किसान और 10 जून के गया में किसान महापंचायत और 6 से 15 अगस्त तक प्रदेश के सारा प्रखंड में पद यात्रा निकालल जाय। सेना के खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस के एसटीएफ टीम द्वारा पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट के नेटवर्क चलावे वाला गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी के गिरफ्तार कल गई बा। गिरफ्तार अपराधी पर भारत नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोट से जुड़ल कई गो मामला दर्ज बा। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात एकर पुष्टि कैलें। वो बतौले कि सुशील तिवारी के गिरफ्तारी खातिर कई गो केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसी लगातार काम कर रहल बा। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा में भयानक गर्मी के दौर जारी बा। ज्यादातर जगहन पर पारा 40 डिग्री के पार हो गई बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक रोहतास के डेहरी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल है, जहाँ के अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज कल गई। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान बक्सर कैमूर रोहतास औरी औरंगाबाद जिला में लू चले के आशंका जतौले बा। एकरा साथे प्रदेश के दक्षिणी भागन में ज्यादातर जगह पर मौसम सुखल रही। एने राज्य के उत्तरी हिस्सा में कम दबाव के क्षेत्र बने के कारण आंधी पानी औरी वज्रपात के स्थिति बनल बा। मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान सुपौल अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार जिला में कुछ जगहन पर आंधी पानी के अलर्ट जारी कैले बा। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबला हुई। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहरिया 3:30 बजे से होता। दूसरका मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में सांझ के 7:30 बजे से खेलल जाय। जीते वाला टीम के प्लेऑफ में जगह मिली। यह प्रतियोगिता में काल पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जॉइंट्स के हरा देहलस। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जा समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रुस्तम फिल्म का ये गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे इस रचना को तर्ज दिया है चीत गांगुली ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में रॉकी हैंडसम फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है मनोज मुंतशिर ने और इसे संगीत दिया है सन्नी पावरा ने और इंद्र पावरा ने।

0: श्रोताओं, श्रेय घोषाल की आवाज़ में गाइस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ताम प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशौ रणनीतिक सहभागितां सुदृढीकरणाय पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः शीघ्र व्यापार संधेः आह्वानम् अकरोत्। सहैव राष्ट्रस्य कृते ऊर्जा आपूर्तेः विविधीकरणे बलम् अददात्। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टीति दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा इत्येषः फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने महति विजयम् अवाप्नोत्। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो उक्तवान् यत् भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यंत महत्वपूर्णेषु रणनीतिक सहभागिषु अन्यतमः अस्ति इति। प्रशासनेन इबोला संक्रमणस्य प्रकोपं दृष्ट्वा सर्वे भारतीय नागरिकाः कांगो, युगांडा तथा दक्षिण सूडान देशेषु अनावश्यक यात्रां न कर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। पाकिस्तानस्य बलूचिस्तान प्रान्तस्य क्वेटा नगरे रेलमार्गस्य समीपे जाते विस्फोटे 24 जनाः मृताः। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलं दिल्ली कैपिटल्स दलेन सह कोलकाता स्थिते ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। डॉक्टर एस जयशंकरः मार्को रूबियो चोभौ अद्य नवदिल्लीनगरे अनेक विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। उभौ भारत अमेरिका सामरिक सहभागितां महत्

0: नमस्ते सोमा बहन।
1: अंजुला बहन को नमस्कार।
0: आज खूब गुलाबी गुलाबी पहन के एलू मैं, एकदम देख करके मन
1: क्या
0: हल्का
1: पहने
0: हल्का लग
1: गुलाबी, एकदम हल्का।
0: रहे।
1: देखिए अभी का जो मौसम है ना, मन करता है एकदम हल्का फुल्का कपड़ा पहने।
0: हाँ
1: इतनी गर्मी कुछ मन नहीं करता है, ना खाने को मन करता है ना कोई काम करने को मन करता
0: लेकिन
1: है।
0: पिए के जरूर मन कर रहा है
1: हाँ
0: कि
1: ये तो
0: ठंडा
1: है।
0: ठंडा कोई पेय पदार्थ हर समय पीते रही, चाहे वो नींबू पानी हो, चाहे सत्तू के घोल
1: बोलो
0: हो,
1: डाप पानी
0: हाँ
1: हो,
0: हाँ चाहे छाछ हो।
1: छाछ हो, बिल्कुल।
0: तो पिए से थोड़ा सा शरीर में जो पानी की कमी ना होवे का डर रहेगा कि घर जितना पसीना छलते
1: पसीना
0: हैं,
1: एकदम।
0: एक खाना बनावे के हम सब और मेहरारू के तो समझते कि का हाल हो भाई, यह खाना बनाना ही है
1: बहुत
0: तो
1: बड़ा काम लगता
0: बहुत
1: है।
0: बड़का काम है घड़ी खाना
1: हाँ
0: बनावे
1: खा।
0: के। लेकिन खाना तो बनाए ताजा खाना घड़ी जरूरी भी है, और कोई बासी खाना भी ना खाए के चाहिए इस समय
1: सही
0: में।
1: बात है, जितना खाना खा।
0: हाँ

0: बनाना है उतना ही
1: हाँ
0: खाना बनाइए,
1: हाँ
0: और उसी समय मतलब खाते
1: खत्म
0: समय
1: कर दो,
0: खत्म,
1: खत्म
0: उसको
1: करने के
0: दूसरे
1: चाहिए।
0: दिन के लिए या दूसरे टाइम के लिए नहीं रखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: अभी अच्छे खाना भी इतना गर्मी है कि खराब भी बहुत जल्दी हो रहा
1: जल्दी
0: है,
1: हो जाए।
0: और तेल मसाला तो खाने में एकदम बिल्कुल नहीं, जितना सादा खाना हो सके वही
1: तो
0: खाइए।
1: भाई ये करी तो नेनुआ के जो तरकारी हम बना भी फौरन पर कद्दू की तरकारी
0: हाँ,
1: फौरन पर।
0: फौरन पे, और थोड़ा दही ले लीजिए, रायता
1: हाँ
0: बना लीजिए,
1: खीरा के रायता भी
0: रायता,
1: बना के खा
0: हाँ,
1: भी
0: तो अलग अलग तरह के रायता, तो दही का तो सेवन करना बहुत ही
1: बहुत।
0: जरूरी होता है, और पानी तो पीना
1: पानी
0: ही
1: तो
0: है
1: भरपूर मात्रा में
0: भरपूर
1: पिए के
0: मात्रा
1: चाहिए।
0: में, तो अपने शरीर को जितना ठंड रख सके उतना रखे, और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बहुत आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, लेकिन जब भी निकले अपने मतलब पूरे चेहरे को नाक को ढक के निकले ताकि लू ना
1: और
0: लगे,
1: 12 से 4
0: चार
1: के
0: के
1: बीच
0: बीच।
1: में तो बिल्कुल भी ना निकले के चाहिए, क्या कि ये घड़ी जो है सूर्य के तापमान सबसे चरम सीमा पर हो रहे हैं।
0: लेकिन अंजुला बहन जिसको जाना पड़ता है जिसको काम
1: हाँ,
0: में,
1: जैसे
0: हाँ
1: आपने
0: तो
1: कल भी था
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: जरूरी
0: जरूरी,
1: ना हो,
0: हाँ
1: वही तो
0: हाँ
1: जरूरी ना हो
0: तो
1: तो
0: आप
1: ना
0: जाइए,
1: निकले।
0: लेकिन मुंह कान नाक ढक के निकलिए ताकि गर्मी से बचे, क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम सही मन से कुछ काम को कर पाएंगे, वहीं सही मन से हम एक दूसरे से, अगर मन ठीक रहेगा तभी हम एक दूसरे से बातचीत भी प्रेम भाव से कर
1: बिल्कुल
0: पाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और कोई भी अगर होता है ना कि कोई त्योहार हो या कोई ओकेजन हो, कोई आसपास कोई भी
1: कोई भी
0: पार्टी
1: त्यौहार,
0: है
1: हाँ, कोई भी सब
0: या
1: चीज,
0: कुछ भी
1: हाँ
0: लोगों के यहाँ जाना हो, तो मन मिजाज जो है वो सही रहना जरूरी होता है।
1: अपने ठीक कहथिन कि देखथिन कि जैसे कि खान पान के ध्यान हम सब कई घड़ी रखे के चाहिए, लेकिन पूरे समय में हम सबके ये भी ध्यान रखे के चाहिए कि आपसी मतभेद ना रहे समाज में, और हम सबके एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के, सौहार्द बिठा करके, हर धर्म हर जाति हर तिथि में ये करके प्रेम से रहे के
0: रहना चाहिए,
1: चाहिए।
0: बिल्कुल
1: काहे कि जब हम घरों में देखते हैं कि तनिको सा तनी झगड़ा झंझट
0: हो जाता
1: हो
0: है
1: जाए,
0: सब।
1: दूल्हे के साथ निकटपट हो जाए, तो मन थोड़ा चन भन होवे लगे, कोई
0: हाँ
1: काम करे के
0: मन
1: ना मन
0: शांति
1: करे।
0: नहीं
1: हाँ
0: रहता, शांत हो जाता
1: हाँ तो
0: है।
1: कल देखिए मतलब घर में थोड़ा सा तनाव हो जाए तो घर के माहौल अशांत हो जाए, तो मैं सोचती हूँ कि अगर देश में भी तनाव होते तो देश के माहौल भी अशांत होते, और देश में माहौल अगर अशांत होते तो देश के तरक्की और खुशहाली
0: विकास,
1: में।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: सही बात है अंजुला बहन, कि जहाँ प्रेम और सद्भाव रहेगा वहीं शांति और प्रगति स्वयं ही आ जाएगी,
1: बिल्कुल
0: और समाज जो है किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है, और असली जो शक्ति है वो आपसी प्रेम, विश्वास तथा एकता में निहित होती है। अगर हम लोग
1: बिल्कुल
0: एकजुट होके रहेंगे, सद्भाव के साथ रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो कोई भी हम लोग को बाहरी दुश्मन हम लोग को तोड़ नहीं सकता है,
1: बिल्कुल
0: और हम एकजुट होके तभी, अगर एकजुट रहेंगे जब तभी हमारे समाज का भी, समाज की तरक्की होगी, और जब समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान, सबसे
1: हाँ
0: ज़रूरी बात, एक
1: बहुत
0: दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सामाजिक सद्भाव बना रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल अपने दम बहुत बढ़िया बात बतेलथिन कि देखथिन कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान के साथ संवाद भी करे के चाहिए, क्या कि अगर बातचीत ना होते बहुत सारा बीच बहुत कुछ ऐसा हो जाए कि गलत फहमी भी हो जाए, कोई आदमी केकरो बारे में कुछ फुसुक भी दे, कोई गलत चीज बता भी दे है, तो ओकरा से लोग सोचते अरे फलाना आदमी हमारा बारे में ऐसे
0: ऐसे
1: कैसे, तो संवाद ही एक माध्यम है कि जेकरा से वो गलतफहमी दूर हो
0: दूर हो
1: सके है।
0: सकती, बिल्कुल
1: तो समुदाय के बीच में जे भी गलतफहमी है या अफवाह के कारण कुछ चीज ऐसा माहौल भी बिगड़ जाए, तो ये क्रम में संवाद बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होवे, और समुदाय के बीच हमेशा बातचीत होते रहे के चाहिए, और ये बहुत जरूरी है सामाजिक सद्भाव बनाए रखे ला।
0: बिल्कुल
1: और देखते हैं कि हर धर्म के अपना अपना उत्सव त्योहार हो वही, तो आदमी के चाहिए कि हाँ ओकरा ओकरा उस धर्म के उत्सव त्योहार में भाग भी लेथिन और ओकरा सम्मान भी करथिन।
0: एक दूसरे से बिल्कुल, और ज़्यादातर देखा जाता है अंजुला बहन कि आजकल लोगों में ना इतना स्वार्थ भावना आ गई है और भेदभाव, और अगर किसी की थोड़ी सी तरक्की होते कोई देखता है तो एक जलन की भावना,
1: बिल्कुल
0: तो हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है,

0: अपने उस आगे बढ़ने की उसका एक अलग ही तरीका होता है। तो आप एक आदमी दूसरे की तरह बन नहीं सकता, हाँ उससे बेहतर हो सकता है, उससे कम हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: तो आज के समय में जो स्वार्थ, भेदभाव और आप जो आपसी विवाद के कारण में भी समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है और लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा
1: उलझ
0: करने
1: जाते
0: जाते
1: हैं।
0: हैं, मनमुटाव करने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि समाज की एकता कमजोर होती है। तो हम लोग को एक दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। अगर कोई अच्छा कर रहा है, उसके परिवार में कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसे आप उसके परिवार के साथ मिलकर आप उसे बधाइयाँ दीजिए, उसकी खुशी में आप शामिल होइए। और आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी अच्छा करें, आपके
1: बिल्कुल
0: परिवार के लोग भी अच्छा करें।
1: और देखें कि यही तो खूबसूरती है कि अगर आदमी कोई घर बनावे और घर में अकेले रहे, तो अकेले रहे में सुकून ना है कि वो सुकून मिल ना मिला है जे कि दो चार परिवार आ करके रहतीन
0: रहे
1: तो
0: हाँ
1: अच्छा लगे। तो ऐसे ही समाज भी है, अगर समाज में कोई व्यक्ति अपने मन के कुछ कर रहथिन तो दूसरा के ओकरा में शामिल ना करथिन या दूसरा लोग शामिल ना होवथिन तो ओकरा में थोड़ा सा वो कौन कहल जाए उदासीपन आ
0: आ
1: जाए।
0: जाता है
1: तो कोई भी
0: बिल्कुल।
1: कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या तीज त्योहार हो, तो उस क्रम में हर समुदाय के, हर वर्ग के और हर धर्म जाति के लोग की
0: एक दूसरे
1: में
0: के
1: बढ़ चढ़ के
0: साथ
1: हिस्सा
0: बिल्कुल
1: लेवे
0: हिस्सा
1: के
0: लेना
1: चाहिए।
0: चाहिए, एकदम
1: और
0: एकदम।
1: एक बहुत बड़ा ये भी बात है
0: हाँ
1: कि आज सुमा बहन, आज
0: हाँ
1: हर आदमी जैसे अपने स्वार्थ के बात करते हैं तो सचमुच आदमी लोग के लिए कि हमारा सुख मतलब
0: सबसे
1: सबसे सर्वोपरि है।
0: बिल्कुल
1: और कभी कभी तो ऐसा भी वो देखे मतलब मिले ही कि दुख केकरो पर विपत्ति आ जाए और लोग दूर से झांक
0: खाली
1: लेते हैं
0: झांकते
1: कि
0: हैं बिल्कुल,
1: भाई ये, यहाँ तक कि मृत्यु तक में पता न चले कि फलाना घर
0: घर
1: में
0: में कुछ
1: कोई
0: ऐसी
1: हाँ
0: दुर्घटना हो
1: दुखद
0: गई है।
1: घटना हो गई।
0: सही बात
1: तो
0: है
1: आज ये समाज के सोचे के पड़ते कि नहीं ना दुख में और सुख में दोनों में भी हिस्सा
0: बिल्कुल
1: लेवे
0: हिस्सा
1: के
0: लेना
1: चाहिए,
0: चाहिए।
1: हमारी कर्तव्य है। हम लोग की पुराना परंपरा ये है कि दुख में और सुख में
0: सुख में
1: जरूर शामिल होने के
0: शामिल होना
1: चाहिए।
0: बिल्कुल। और अंजुला बहन, हम लोग ये भी देखते कि ये जो आज के समय में जो बातें सद्भाव बनाए रखने की बातें, तो इसको बचपन से ही स्कूली शिक्षा में इसमें इसको शामिल करना चाहिए। और बच्चों में बचपन से ही ये जो नैतिक शिक्षा है, जो सहिष्णुता है और जो मानवता का पाठ है, उसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। और जब बच्चे के बचपन से ही अच्छे संस्कार उन्हें मिलेंगे, तो वो बड़े होकर समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन
1: बिल्कुल
0: जाएंगे।
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: हमें अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचना चाहिए। और आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें,
1: बात आ
0: झूठी
1: जाती है।
0: अफवाहें
1: हाँ
0: फैलाई जाती
1: अब तो और
0: है।
1: यही AI के जमाना आ गया तो पता न
0: हाँ
1: चले कि ये सच है कि
0: सच है
1: झूठ
0: कि
1: है।
0: झूठ है
1: तो
0: बिल्कुल
1: सचमुच ऐसे बात पर बिल्कुल ध्यान न
0: ध्यान
1: देवे
0: नहीं
1: के
0: देना
1: चाहिए।
0: चाहिए। कि
1: हाँ
0: और जो बातें हैं, और जैसा कि आपने कहा कि संवाद से अगर एक दूसरे के साथ कोई गलतफहमी है, कोई बातें हैं आप को उनकी अच्छी नहीं लगी, तो आप एकदम सीधे जाकर संवाद स्थापित करके जो भी गलतफहमी है उसे आप दूर करें। और हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो सत्य और शांति के साथ ही काम करे। कोई भी बात पर तुरंत एकदम तुनकना या
1: हाँ
0: झगड़े के लिए
1: मारा पीटा
0: तैयार हो
1: की
0: रहा,
1: निकल
0: तो
1: जाना
0: ये सब
1: तो
0: चीज़ जो है कि जो
1: हाँ
0: सामाजिक सद्भाव जो है, एक मजबूत और विकसित जो राष्ट्र है उसकी नींव है। और यदि हम प्रेम, भाईचारे या सहयोग की भावना को हम बनाएंगे, तभी हम समाज में एक सुखी, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते हैं। अपने समाज को आगे बढ़ते हम देख पाएंगे।
1: बिल्कुल देखते हैं कि कोरोना में हम सब ये सब चीज देख
0: बिल्कुल
1: लिए
0: हाँ
1: कितना
0: देखे
1: बढ़िया
0: हैं
1: कि हर
0: हाँ
1: आदमी एक दूसरे के दुख में शामिल हो गए थे हल। और ऐसे ही हम सब कोरोना के लड़ाई से निपट गए लिए। तो
0: तो
1: सोमा
0: ज़रूरी है कि मिलजुल कर हम सभी को रहना है, और यही हमारे समाज की शान है। और प्रेम और सद्भाव से ही हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, हमारा देश महान बनेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: और महान देश में
0: बहुत
1: लोक संस्कृति भी हमर बहुत महान
0: आगे
1: है।
0: बढ़ेंगे। और अभी
1: हाँ
0: आपने कही ना कि हम लोग को एक दूसरे के तीज त्योहार में
1: हाँ
0: शामिल होना चाहिए, तो हमारे
1: त्योहार
0: भारत में कितने विविध तरह
1: विद
0: के
1: हाई
0: लोक
1: है
0: संस्कृति है, कितने त्योहार मनाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: इससे एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होंगे तो संस्कृति के बारे में हम जान भी
1: जान
0: पाए।
1: भी पाए जान भी
0: हाँ
1: पाए सही बात है।
0: तो आप लोक संस्कृति की बात आपने कही, तो क्यों ना एक लोकगीत हम अपने श्रोताओं को
1: बिल्कुल
0: सुनवा
1: बिल्कुल
0: दें।
1: बिल्कुल
0: तो
1: कलाकार
0: कलाकार हैं पंकज कुमार पांडे।

0: वाह।
1: वाह, विद्यापति गीत, बहुत सुंदर, पंकज कुमार पांडे से हम सब सुन लिए। और
0: हाँ
1: अभी हम सब सोमा बहन बातचीत करते थे कि कैसे सामाजिक सद्भाव बना रहे, कि मतलब हम सब हमेशा कुछ ना कुछ अपने समाज के, अपने देश के हित में कोई ना कोई काम करते रहे के चाहिए,
0: एकदम
1: सोचते रहे के चाहिए,
0: एकदम
1: तभी
0: सही
1: हमारा
0: बात
1: देश
0: है,
1: आगे आगे जा बढ़
0: क्योंकि ये
1: सकता है,
0: देश सिर्फ एक नहीं, हम सबका देश है।
1: सबके देश है
0: जैसे
1: ये।
0: हम लोग अपने परिवार या खुद के विकास की बात करते हैं, तो उसी तरह अगर हम लोग हर एक कोई देश का हर एक नागरिक अगर ये बात सोचे

0: तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे देश की तरक्की होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं भी जैसे कहीं हम गेली और वहां लाइट जलल है और ऐसे पंखा चल रहा है, तो हम सबके जरूरी ना कि हम कहीं गेल गेल ही तो ओकर वो चीज है,
0: नहीं
1: ये समझे के चाहिए कि बिजली हमारे देश के खपत हो रहे है, तो हम सब वो अपना चीज समझ करके बिजली के बचत कर लगे पंखा और बिजली बंद कर दे के चाहिए, कहीं भी कोई ऑफिस हो, कहीं भी हो, कोई दूसरे समाज के कोई तीज त्योहार में भी गेल है और कहीं अनावश्यक रूप से कुछ इस तरह से ऊर्जा के खपत हो रही है, तो ओकरा संरक्षित कर लगे हम सब
0: बिल्कुल
1: कर
0: सही बात है।
1: सके।
0: और हमारे देश में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हाँ सब कुछ तो सीमित है,
1: सब
0: हाँ
1: सीमित है।
0: सीमित है, तो और उसी सीमित में से इतने संख्या में, करोड़ों की संख्या के लोग जो हमारे यहाँ दे पूरे देश भर में वो उसका उपभोग कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम अगर उसमें बचत करना और कैसे हम उसका संरक्षण करें, अगर इस दिशा में अभी से नहीं सोचेंगे तो आगे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है कहीं उन्हें इस तरह के संकटों का सामना ना करना पड़े।
1: बिल्कुल,
0: हाँ
1: ऐसे तो कुछ कुछ
0: बिजली,
1: बीच बीच में
0: पेट्रोल,
1: संकट आ रहे
0: पानी,
1: हैं
0: हाँ हाँ अभी तो हम
1: कि
0: लोग सब
1: अनावश्यक रूप खर्च करे से ही, बहुत
0: हाँ
1: लोग ऐसे हथिन जे कि बेकार के मतलब अनावश्यक रूप से ओकर खर्चा
0: खर्च
1: कर दे
0: कर रहे
1: रहे।
0: हैं, तो हमारे भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी हर तरह के ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमेशा लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना ज़रूरत है उस उतना ही
1: उतना
0: आप इस्तेमाल करें और इसके संरक्षण में आप हमेशा अपना भागीदारी दें, योगदान दें।
1: बिल्कुल
0: तो ऊर्जा जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ऊर्जा संरक्षण करना कह सकते हैं कि आज की आवश्यकता बन गई है। तो
1: एकदम
0: क्यों ना
1: सही
0: हम
1: बात है।
0: लोग इसी विषय पर अपने श्रोताओं को कुछ और जानकारी दे दें कि क्यों ज़रूरी है आज के समय में और क्यों ये आवश्यकता पड़ गई है।
1: बिल्कुल
0: और हमारी वार्ताकार हैं सीमा कुमारी, वार्ता का विषय है ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता।
1: चलो सुनिए, बहुत ही उपयोगी वार्ता।
2: हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक ऐसी सदी जो अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की साक्षी है। इन सभी चमत्कारों के केंद्र में एक ही शक्ति है, ऊर्जा। हमारी जीवन शैली ऊर्जा पर अत्यधिक निर्भर हो गई है, हमारे घर, हमारे कारखाने, हमारे परिवहन के साधन, और यहाँ तक कि हमारी डिजिटल दुनिया भी ऊर्जा के बिना एक पल के लिए भी काम नहीं कर सकती। लेकिन इस तीव्र विकास की एक भारी कीमत है, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण और पर्यावरण पर बढ़ता बोझ। हमारी अधिकांश ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से आती है, जो सीमित है और प्रदूषण फैलाते हैं। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा एक विकल्प नहीं बल्कि आज की परम आवश्यकता बन गई है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ केवल बिजली बचाना नहीं, यह बुद्धिमत्ता, दक्षता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसका अर्थ है ऊर्जा के उपयोग इस तरह से करना कि हमारी वर्तमान जरूरतों को पूरा कर सके, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा संसाधन सुरक्षित रख सके। यह एक वैश्विक आह्वान है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम एक वास्तविक ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़े हैं। हमारी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जीवाश्म ईंधन सीमित है, ये लाखों वर्षों की भूवर्गीय प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, और जिस गति से हम इसका उपयोग कर रहे हैं उस गति से इसका पुनरुत्थान असंभव है। अनुमान है कि तेल और गैस के भंडार अगले कुछ दशकों से समाप्त हो सकते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधनों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस भारी मात्रा में उत्सर्जित होती है। ये गैसें ग्रह के तापमान को बढ़ा रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम बाढ़, सूखा, जंगल की आग और समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हम पहले से ही देख रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण सीधे तौर पर इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग, दुनिया की बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग भी बढ़ गई है। इस मांग को पूरा

0: करने के लिए या हमें नए ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने होंगे या मौजूदा ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करना होगा। ऊर्जा संरक्षण वास्तव में सबसे सस्ता और सबसे स्वच्छ नया ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण केवल संकट का समाधान नहीं है, यह एक व्यापक लाभ प्रणाली है जो हमारे समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को मजबूत करता है। आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत स्तर बिजली के बिल में कमी, राष्ट्रीय स्तर ऊर्जा संरक्षण आयात बिल को कम करता है। भारत जैसे देश के लिए यह विदेशी मुद्रा की बचत करता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर निवेश की आवश्यकता को कम करता है, जिससे इन निधियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। कम बिजली का उपयोग करने का सीधा अर्थ है बिजली संयंत्रों द्वारा कम ईंधन जलाना, जिससे वायु और जल प्रदूषण कम होता है। यह संसाधन प्रबंधन में भी मदद करता है। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता। जीवाश्म ईंधन के भंडार कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में हमें बाहरी स्रोतों पर हमारी निर्भरता को कम करके अधिक आत्मनिर्भर बनाती है, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ऊर्जा संरक्षण एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है, जिससे सरकारी नीतियाँ, तकनीकी नवाचार और व्यक्तिगत प्रयास शामिल है। सरकारी और औद्योगिक स्तर पर पहल, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मानक, स्टार लेबलिंग को कड़ाई से लागू करना और उच्च दक्षता वाले उपकरणों को बढ़ावा देना है। ऊर्जा ऑडिट, उद्योगों और वाणिज्यिक भवनों के लिए नियमित और अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट करना। सार्वजनिक परिवहन, कुशल सार्वजनिक में परिवहन और मेट्रो नेटवर्क में भारी निवेश, व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करना। स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा वितरण को अधिक कुशल बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी को अपनाना। उद्योग पुरानी मशीनों को बदलकर आधुनिक ऊर्जा कुशल तकनीक अपनाना। एलईडी लाइटिंग, एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्बों को तुलना में 80% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, एसी और रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर तकनीक का उपयोग, जो बिजली की खपत को काफ़ी कम करता है। इमारती वास्तुकला, हमारी इमारतों का निर्माण जो प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन का अधिकतम उपयोग करती है, जिससे हीटिंग और कूलिंग की आवश्यकता कम हो जाती है। व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव हमारे दैनिक व्यवहार में निहित है। उपयोग में न होने पर बंद करें, उपयोग न होने पर लाइट, पंखे और अन्य उपकरणों को बंद कर दें। स्टैंड बाय मोड से बचे उपकरणों को बंद करने के बजाय उन्हें प्लग से भी हटा दें, ताकि स्टैंड बाय पावर या फैंटम लोड से बचा जा सके। प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग दिन में समय खिड़कियाँ खोले और कृत्रिम प्रकाश का निर्भरता से प्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग दिन में समय खिड़कियाँ खोले और कृत्रिम प्रकाश पर निर्भरता कम करें। स्टाफ रूम सोलर पैनल, अपने घरों की छतों पर स्टाफ रूम, रूफ टॉप सोलर पैनल अपने घरों की छतों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर आत्मनिर्भर बने।
1: अभी हम सब सुन रहे हैं वार्ता, ऊर्जा संरक्षण आज की आवश्यकता, और वार्ताकार हैं सीमा कुमारी। तेनका धन्यवाद, ये वार्ता लगी। और फिर से अब सुनिए वो लोकगीत पंकज कुमार पांडे के स्वर में।

0: अभी हम सब सुनते हैं ले लोकगीत पंकज कुमार पांडे के स्वर में, और सुबह बहिन अब चौपाल के समय संपन्न होते हैं। खेती गृहस्थी में हम सब फिर बातचीत कर रहे हैं।
1: खेती गृहस्थी में अब हम लोग बातचीत तो करेंगे खेती संबंधी, लेकिन अभी समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
0: चलो सुनो।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस।
3: नमस्कार, कैसे हैं गोड़ौल वालों? राजेश हूँ आपका। रविवार का दिन है और आज के दिन हम आ गए आपके घर आंगन में, गोरौल जैसी जगह में। श्री राज ग्रुप ने एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और अब गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना की है, और उनके तरफ से ये कार्यक्रम हम रोजगार आप सबों के लिए लेकर आ रहे हैं। रोजगार नाम से ही जाहिर है कि वैसी पढ़ाई जिससे पढ़ते पढ़ते या पढ़ने के बाद रोजगार मिल जाए और हमारा जीवन रफ्तार पकड़ ले। पढ़ाई का पहला और अंतिम मकसद मेरी समझ से यही होता है कि एक अच्छी शिक्षा एक अच्छा रोजगार दे, और एक अच्छा रोजगार एक अच्छा अर्थ लाभ दे, जिससे अपने अपने लोगों का भरण पोषण ठीक से हो सके और समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। बहरहाल, यहाँ एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में बीसी और बीबीए की पढ़ाई, और अब गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ

0: बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की पढ़ाई इसी सत्र से कर सकते हैं। वैसे युवा साथी, वैसी लड़कियां, युवतियां जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए सुनहरा अवसर है यहां। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। दे रहा हूं फोन नंबर, आप जरूर फोन पर बात करके ज्यादा जानकारियां ले लें। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है गोड़ौल में, गोड़ौल स्टेशन और पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में, संस्कार नगर है, वही है। हाँ, गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बहुत बड़ा कैंपस है, वहां जाकर के आप मिल सकते हैं। या ये फोन नंबर 9162413233, जी हाँ, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888, ये नंबर है। इस पर बात करके अधिक से अधिक जानकारियां ली जा सकती हैं।
1: और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, लगातार सुनते रहे हैं, और भी कार्यक्रमों में आते हैं, और स्टूडेंट के साथ लंबा अनुभव है काम करने का, एक गार्जियन की तरह से श्रीराज ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, और अब ये श्रीराज ग्रुप का ही गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि गोड़ौल में हाँ स्थापित किया गया है, यहाँ पर इसी सत्र से बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई शुरू होने जा रही है आपके गोड़ौल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये कार्यक्रम रोजगार जो है उसके अंतर्गत।
2: स्वागत है हमारे श्रोतागण का भी, और आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि इसी सत्र से एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, और यह पढ़ाई जो सबसे उम्दा पढ़ाई होती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मांग वाली शिक्षा है नर्सिंग की शिक्षा। और यह बहुत लोगों के बाद फोन आता था जब हम लोग बीसीए और बीबीए के बारे में चर्चा करते थे, तो इनके बारे में आता था कि यहाँ, हाँ, कि यहाँ क्यों नहीं, यहाँ सर बीएससी और जीएनएम और एएनएम का पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ श्रीराज में होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। तो मैंने उनके लिए यह गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना किया, और इस साल से हमारे तीनों फैकल्टीज में एडमिशन शुरू हो गए हैं, और एडमिशन के साथ साथ लगभग एक डेढ़ महीने के बाद से हम लोग पढ़ाई शुरू कर लेंगे।
1: हम लोगों ने बताया था पहले रोजगार कार्यक्रम हमने शुरू किया था एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, जिसमें कंप्यूटर के दो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, और उसी कैंपस, हम बार बार कहते थे कि कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है, जिसमें से अगली कड़ी में गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया, जहाँ की जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो रही है। अगर जो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, और इसके लिए उसका नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। ये वही भरोसा है श्रीराज ग्रुप का, जिसका पैरामेडिकल आप पारा सुनते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोगों ने जैसे ही बीसी और बीबीए के लिए बातें की तो आप लोगों ने फोन कॉल्स इसके लिए हेल्थ सेक्टर के लिए शुरू किया, और ये देखिए कार्यक्रम में हम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के कि उधर जो इलाका है, गोड़ौल है, भगवानपुर है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है, सिवान है, बिदुपुर है, राजा पाकर है, हाजीपुर है, अगर वो बच्चे या लड़कियां जो नहीं आ सकते हैं पटना में, तो उनके लिए घर पर ही सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। ढेर सारी बातें अभी और जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब एक बार इन कोर्सेज के बारे में बता दीजिए, और किसमें एलिजिबल है लड़के और किसमें एलिजिबल है लड़कियां।
2: हां देखिए, मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि एएनएम का कोर्स जो होता है वो इंटर पास लड़कियां कर सकती हैं, इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास होना चाहिए, और वो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी नर्स की पूरी पढ़ाई होती है, मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की सारी बात बताई जाती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बताया जाता है, उसके साथ साथ उसके बायोकेमिस्ट्री बताए जाते हैं, फिजियोलॉजी बताए जाते हैं, साइकोलॉजी बताई जाती है, बायोकेमिस्ट्री की सभी विधाएं बताई जाती है। इस तरह से एएनएम की पढ़ाई भी एक पूरी नर्स की पढ़ाई है, और ये जो देखते होंगे कि

0: एक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसको कहते हैं, जो पहले 1.5 साल का होता था, अब 2 साल का हो रहा है। अब ये जो होता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होती है, पहले बीएनआरसी के द्वारा होता था, अब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होता है। तो गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के, गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एएनएम की पढ़ाई शुरू हो गई, उसके साथ साथ जीएनएम है। तो जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये उससे कुछ ऊपर दर्जे का हुआ, और ये 3 साल की पढ़ाई होती है। इसमें एएनएम और जीएनएम से में विशेषता क्या है कि एएनएम तो एक तो 3 साल की पढ़ाई हो गई, और उसके साथ साथ इसमें कुछ एडवांस पढ़ाया जाता है उससे, कि ताकि ये सब जो एएनएम को उससे ऊपर की पढ़ाई कर लेने के बाद जैसे और ज़्यादा सघन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ एएनएम को नहीं रखा जाता, वहाँ जीएनएम को रखा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा जानकार होते हैं और उसमें ज़्यादा दक्ष होते हैं, तो उसकी पढ़ाई थोड़ा उससे लेवल जो होता है वो ऊपर होता है। और उसके साथ साथ अब जो होता है तीसरे 3 साल के बाद एक और पढ़ाई होती है जिसको कहते हैं बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग जो होता है ये नर्सिंग का ही क्षेत्र है, और ये बैचलर का कोर्स होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसको भी बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ही संचालित करती है, और इस तरह से ये उससे भी एडवांस होता है, एएनएम से एडवांस जीएनएम हुआ, जीएनएम से एडवांस बीएससी नर्सिंग हुआ। तो इस तरह से ये तीनों कोर्स जो है वो नर्सिंग क्षेत्र में अपना अपना योगदान देती है। एक सबसे नीचे का जो हुआ डिप्लोमा कोर्स जो हुआ वो हुआ एएनएम का कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर इसको मेजनाइन कोर्स कहते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, जीएनएम का कोर्स होता है, और बैचलर का कोर्स डिग्री कोर्स जिसको कहते हैं वो होता है बीएससी नर्सिंग का कोर्स।
1: ये पूरी जानकारी दी, एक बात बता दें आपको, हाँ यहाँ जो गोरौल में
0: अच्छा बीएससी नर्सिंग में एक चीज बातें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद एक बात बताना भूल गया,
1: बोलिए
0: कि उसमें क्या है कि जीएनएम कोर्स और बीएससी नर्सिंग कोर्स इसमें लड़का लड़की दोनों कर सकता है।
1: क्या बात है।
0: अच्छा जीएनएम में जो है किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से इंटर पास किया हो, लड़का कॉमर्स भी हो, आर्ट्स भी हो, साइंस भी हो, कोई भी स्ट्रीम से हो तो वो कर सकता है। और उसके साथ साथ पीएससी के जहां तक बात होती है तो उसमें सिर्फ आईएससी पास ही लड़के कर सकते हैं, लड़का लड़की कर सकती है, आईएससी बायोलॉजी से होना चाहिए और उसके बाद ही ये 4 साल का कोर्स कर सकता है। तो इसमें बाध्यता है कि आईएससी बायोलॉजी होना चाहिए, बाकी में कोई बाध्यता नहीं है।
1: बाकी में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी तीनों में है। हेल्थ सेक्टर के बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स हैं बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डॉक्टर साहब का नंबर है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। और ये संस्थान जो है गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसा कि हमने बताया था एसएस प्रोफेशनल के समय कि गोरौल स्टेशन से लेकर के आप जब पीएससी की तरफ आते हैं तो बीच में कौन सा नगर पड़ता है, संस्कार नगर में ये संस्थान है। बहुत बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं जाके। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, प्रैक्टिकल की जरूरत होती है तो बच्चों को ये बताइए कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकल के लिए।
0: देखिए वहाँ अपना अस्पताल भी संचालित होने वाली है, कुछ ही दिन में उसका उद्घाटन हो जाएगा
1: जी।
0: और उसके साथ साथ जो श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग में के जो कैंपस अपना है वो उसका एडवांस के लिए तो यहाँ है ही, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पर है गरौल है
1: जी, जी।
0: उसमें भी हमने व्यवस्था कराई है कि उसका जब 2 साल हो जाएगा दूसरे साल में उसको वहाँ पर प्रैक्टिकल की सुविधा दी जाएगी।
1: मतलब कुल मिलाकर समझिए ये सवाल हमने आपकी तरफ से डॉक्टर साहब से किया था, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गोरौल में तुरंत हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है, उद्घाटन होगा। इसके अलावा श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल है इस संस्थान का, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो श्रीराज ग्रुप है, आप पटना भी आ सकते हैं और पीएससी में भी आपको मौका मिलेगा। आपके घर के अंदर, आपके घर में, मोहल्ले में कहिए कि ये संस्थान आ गया। क्या सोचकर आपको लगता है कि सफल होगा वहाँ, के बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद होगा?
0: 100% इसलिए जरूरी कि सबसे मांग वाली, देखिए बच्चों को आजकल अभी भी बिहार इतना एडवांस हुआ, उसके साथ साथ भी अभी भी कुछ ऐसे हैं कि जो होम सिकनेस रहता है कि पास के में ही पढ़ ले तो अच्छा रहे, हमारी बच्ची उतना दूर नहीं जाएगी, नजदीक

में ही होगा तो हम पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आसपास के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर आना बहुत लोगों को संभव नहीं होता है, तो उनको लिए वह है। बाकी जो रेसिडेंशियल रहना चाहते हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डे स्कॉलर जो होता है वो चाहता है कि हमारा घर का भी काम हो जाए, पढ़ भी ले और इस तरह से उच्च शिक्षा भी पा ले, तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। गौरव बहुत ही अच्छा जगह में हम लोग ने इसकी व्यवस्था किया है। तो

0: इतनी बड़ी बात आपने यहाँ की है कि गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना और इसी सत्र से ये तीन कोर्सेज आ रहे हैं। अगर जो लड़के मुजफ्फरपुर से या छपरा सीतलपुर या इसी इलाके से आएंगे तो उनके लिए इनिशियली बच्चे या बच्चियों के लिए रहने की व्यवस्था है या
1: हॉस्टल है? अपना हॉस्टल है,
0: अपना
1: दोनों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल है। दोनों को हमने हॉस्टल की व्यवस्था कराई है और पूर्ण रूप से व्यवस्था कराई है।
0: और इसी सत्र से क्या उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा?
1: जी हाँ,
0: मिल जाएगा।
1: एएनएम में तो नहीं मिलता, लेकिन जीएनएम और बीएससी में दोनों में मिलेंगे।
0: दोनों में मिल जाएगा, यानी पैसे की समस्या भी नहीं है। तो गोरौल और उसके आसपास वालों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में और बातचीत होगी। जब आपके रिस्पॉन्स आना शुरू होंगे, आपके सवाल आना शुरू होंगे, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप आए रोजगार कार्यक्रम में, और एसएस प्रोफेशनल में जो बीबी और बीसीए है वो तो एज इट इज है, अभी
1: एज इट इज है, उसी का ग्रुप, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत ये गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद हो गया, डॉक्टर साहब ने जानकारियां दी और निकल गए। गोरौल वालों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हेल्थ सेक्टर में, लगातार जो है ना रोजगार ही रोजगार है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस कोर्स में भी 4 लाख तक का लोन मिलेगा वो इसी सत्र से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी बच्चियां अगर घर पर बैठी हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ उन्होंने किया है, तो अब ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, एकदम स्टेशन के बगल में है। फिलहाल चलने से पहले हम नंबर बता दें, हाँ फोन करना न करना आपकी मर्जी, हम तो कहेंगे कीजिएगा। नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा 9155558888, यही नंबर है। तो इस अपॉर्चुनिटी, ये जो आपके घर आंगन में आया है मौका, उसका फायदा जरूर उठाइए और अपने बच्चों को हेल्थ सेक्टर में प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जी हाँ बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, हाँ ये सारी चीजों का दिलवाइए और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ उन्हें आगे बढ़ने में मदद कीजिए। और बीसीए बीबीए भी करना चाहते हैं तो आप जाकर के मिल सकते हैं या इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
4: तो अंजुला बहन, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार, और अब हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि फायदा के बाद क्या क्या लेकर। जी जी,
5: तो हम सब आज उनकर फायदा की बात कर रही, और फायदा ये है बटेर पालन कैसे करें और बटेर पालन करे के का का फायदा है। तो भाई हम एक जगह गेलियल प्रोग्राम करे, सांस्कृतिक प्रोग्राम, और रास्ता में एक खाई लगी एक जगह रुक ली, तो वहां बटेर के मांस के बारे में, तो मांस के पहले पूरा लगावल हले कि बटेर उसके मांस से सेहत लगी कितना फायदेमंद है।
4: अच्छा,
5: तो ओकरा में लिखल है कि भारी मात्रा में एकरा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन होवे है।
4: अच्छा,
5: बटेर के मांस में। तो बाजार में एकर मांग बहुत अधिक है, और फायदा ये है कि एगो मादा बटेर साल भर में लगभग 280 से 300 तक के अंडा दे देती
4: है। अच्छा।
5: और बहुत जल्दी इनका विकास हो जाए, जल्दी मांस तैयार हो जाए।
4: तो सही बात है कि हमारे जो किसान भाई हैं, खेती बाड़ी के साथ साथ कई तरह के वो पालन, बटेर पालन, मुर्गी पालन, ये तो करते ही हैं, और जो अगर पशु पालन, पक्षी पालन किया जाए तो इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी
5: खेती के साथ आराम से करल जा सके।
4: हाँ, और जैसा कि आपने कहा कि बटेर पालन करना बहुत ही लाभदायक है, तो बटेर जो एक छोटा सा पक्षी होता है और इसके अंडे और मांस दोनों काफी पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कम खर्च, कम स्थान और जल्दी लाभ मिलने के कारण आजकल जो है बटेर पालन हमारे युवा किसानों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो रहा है।
5: हाँ,
4: क्योंकि कम समय लगता है, कम पूंजी और कम मतलब खर्च में, और जल्दी इसका लाभ मिलता है। और बटेर जो है एक छोटा जंगली भी होता है, ये पालतू पक्षी के रूप में भी हम लोग इसको मानते हैं, और ये छोटा हल्का आकार होता है, और अगर ये पक्षी लगभग 5 से 6 सप्ताह में अंडा देना शुरू कर देती है, इसलिए शीघ्र लाभ देने वाला व्यवसाय इसे कहा जाता है।
5: और देखें कि बटेर के जो

0: पाले के बात हम कर रहे हैं, इसलिए कर लेगी। सबसे पहले स्थान के चयन करे के चाहिए, स्थान चुनने के चाहिए। तो एकरा आकार बहुत छोटा हुआ है, यही चलते एकरा बहुत कम जगह के जरूरत पड़ा है। और शुरुआत में 100 बटे पाले लगी लगभग 3 गुना, अढ़ाई मतलब 3 से 2.5 फीट के गुना के फीट के पिंजरा पर्याप्त होवे कर
1: पर्याप्त
0: लगी।
1: होता है।
0: और बटेर पाले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सोमा भाई, वो तापमान के है। तो तापमान के जरूर ध्यान रखे के चाहिए। चूजा जब 7 से 10 दिन तक हो जाए तो ओकरा 95 से लगभग 99 डिग्री के फॉरेन हाइट के तापमान में रखे के चाहिए।
1: अच्छा।
0: और भी जरूरी बात है कि एकर खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना के चाहिए। शुरू में बोलल जाए कि 15 दिन तक बॉयलर के प्री स्टार्टर दाना खिलावल जाए। एकरा बाद स्टार्टर दाना और साफ पानी देवे के चाहिए। और
1: एकदम
0: बटेर में कोई ज्यादा खास बीमारी ना हो, इसलिए एकरा में टीकाकरण के भी जरूरत उतना ना पड़े।
1: हाँ, कहते हैं कि इसके रख रखाव में साफ सफाई बहुत
0: बहुत
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है,
0: है।
1: और नियमित साफ सफाई और टीकाकरण जो होता है हल्का फुल्का जो जरूरी है वही दीजिए। और इस इनके भोजन में दाना है, मक्का है, चोकर है, ये पौष्टिक आहार दिया जाता है। बटेर पालन अगर हमारी महिला किसान लोग करना चाहे तो उनके लिए भी बहुत ही आसान है, कि युवाओं तो कर रही हैं लेकिन अगर महिला लोग भी अपने घर के काम के साथ साथ इसे भी रोजगार के रूप में अगर
0: हाँ,
1: शुरू
0: अगर उनका
1: करना
0: दूल्हा
1: चाहते।
0: खेत पर जाके अपने निराई गुड़ाई करते थे, तब तक अपना खाना उना बना करके अपना छोटा सा जगह में
1: जरूर
0: बटेर पालन कर
1: कर
0: सका
1: सकती
0: थे।
1: है। और अभी जो है किसानों के बीच काफी लोकप्रिय, जैसा कि आपने कहा कि इसके मांस की मतलब बाजार में बहुत मांग है, और होटल रेस्टोरेंट में और स्वास्थ्य के प्रति लोग इस मांस को खाने के लिए या अंडे को खाने के लिए काफी पसंद करते हैं। तो बट
0: तो बहुत फायदे के चीज है। अब किसान भाई लगी और शुरू कर सकथिन, अगर शुरू ना करथिन तो एकरा शुरू करके आर्थिक मुनाफा अपना
1: हाँ,
0: ले
1: और
0: सकथिन।
1: मतलब पूरी तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि बटेर पालन जो एक सरल, सस्ता और लाभकारी व्यवसाय है,
0: बिल्कुल
1: तो इसे
0: बिल्कुल
1: हमारे किसान भाई या किसानी लोग अपना सकते हैं, कर सकते
0: भाई,
1: हैं।
0: इतना फायदे के बात उनका कर ली तो
1: तो
0: मन तो
1: चलिए
0: झूम झूम झूमे के हो गए ले
1: हाँ,
0: हो
1: तो
0: खाए
1: झूमेंगी
0: ना
1: तभी जब हम लोग लोकगीत में झूमर गीत
0: तो
1: सुनेंगे।
0: सुनवाई
1: ठीक,
0: थी किन खास से,
1: पंकज कुमार पांडे से।
0: चलो सुनाई।

0: अंजुला बहन झूम रही थी ना।
1: बिल्कुल झूमर, यही से तो नाम भी पड़े, झूमर, झूम झूम के वह गाए वाला गीत हम सबके झूमर। तो पंकज कुमार पांडे के धन्यवाद करिए, और अब घर इशारा करते हैं श्रोता लोग से विदा लेवे के, और सोमा बहन से भी विदा
0: हाँ
1: लेवे
0: तो
1: के।
0: हम लोग चले,
1: नमस्ते सोमा बहन।
0: नमस्कार अंजुला बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान वायु का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: आरबीआई कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कौन सा प्लांट है?
11: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
12: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
10: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
12: क्यों?
10: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
12: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
13: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल किया जा रहा है तैयार। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। श्री चौधरी ने पटना में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यवसायियों को भरोसा दिया कि सुरक्षा और सुविधा के मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
1: मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार के तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो पूरा गैप है इसको बदलने का समय है। बिहार की समृद्धि का रास्ता आपके माध्यम से खुले। बिहार समृद्ध हो, देश विकसित होगा तभी जब बिहार समृद्ध होगा।
0: मुख्यमंत्री ने उद्योग संघों और व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याएं समझी और उनके निदान का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति सख्ती से लागू की जाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसके लिए शौचालय, मिड डे मील, बेंच टेबल समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण उत्पन्न संकट से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि सरकार इस पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है, लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।

0: पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, जो दुनिया के हालात हैं, जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, दाम में जो बढ़ोतरी का दर है वो भी समझिए कई देशों की तुलना में यहाँ पे नियंत्रित रखा गया है कि जो प्रधानमंत्री की अपील है उसके तहत हम लोग काम करके खपत को कम करें और खाड़ी युद्ध का जो प्रभाव आ रहा है उसका हम लोग न्यूनतम स्तर तक ले जाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न भागों में दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत कार्यकर्ताओं को संगठन के विचार, व्यवस्था और संपर्क माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। रोहतास में आयोजित महाअभियान में आज राज्य के खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 नीतीश मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी पर काम शुरू कर दिया गया है। श्री मिश्रा शेखपुरा जिले में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका विभाग लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर रहा है।
2: भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसी कड़ी में पूरे देश स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है और न सिर्फ शेखपुरा में बल्कि पूरे देश स्तर पर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो मंडल स्तर से जिले स्तर तक भी, जिसमें कार्यकर्ताओं के बेहतरी के लिए उस पर आधारित ये प्रशिक्षण है।
1: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान परिषद के आगामी चुनाव में सारण और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। पटना में पार्टी की आज हुई बैठक में सारण से विद्यासागर विद्यार्थी और तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र से प्रोफेसर संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टी के प्रदेश सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि महागठबंधन के अन्य दलों के साथ समन्वय बनाकर संयुक्त उम्मीदवार दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में पंजाब से आए प्रतिनिधियों के लिए आज आईआईटी पटना में स्वागत सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: आईआईटी पटना के सीनेट हॉल में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के युवा शामिल हुए। पंजाब से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया और उन्हें बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विरासत से अवगत कराया गया। डीजीपी विनय कुमार ने अपने संबोधन में युवाओं से देश की विविध संस्कृति को समझने, आपसी संवाद बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद भी किया।
4: मैं आईआईटी खड़गपुर से 1986 में पास आउट किया था, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद फिर मैं जॉब किया एलएनटी में एक साल, फिर आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया, फिर मैं पब्लिक सेक्टर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन बॉम्बे ज्वाइन किया, फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस गया, दिल्ली आया, यूपीएससी लिखा 90 में और फिर आपके सामने पुलिस में आ गया।
3: आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि पंजाब से आए छात्रों को राज्य के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
5: उन जगहों पे ले जाएंगे जिसके कारण बिहार ज्यादा जाता है, जैसे वैशाली है, बोधगया है, ये है नालंदा है, वैशाली का भी हम लोग प्रयास करेंगे और इन सारी चीजों को देखने के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर मिलेगा यहाँ के संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को समझने के लिए और यहाँ के व्यक्तियों की मानसिकता को समझने का भी पूरा प्रयास रहेगा।
3: कार्यक्रम में विधायक सुरेंद्र मेहता समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। युवा संगम कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल को समझने का अवसर प्रदान करता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार की तीन विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को डोमकच नृत्य को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा। डॉक्टर त्रिवेदी और विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी भागों में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले में लू चलने की संभावना जताई है।
1: तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों और गया जिले में लू चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के उत्तरी भागों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आंधी, बारिश और वज्रपात की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज और सुपौल जिलों में तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे और हल्की से मध्यम आंधी और बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है।
0: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आज पटना समेत प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्वक आयोजन किया गया। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से पटना के ज्ञान भवन में कल से 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में स्वास्थ्य और इससे संबद्ध क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीकरण कर नियोजक संस्थाओं में आवेदन दे सकते हैं तथा स्लॉट बुक करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेना की खुफिया एजेंसी और राज्य पुलिस की एसटीएफ टीम ने पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से जाली नोट का नेटवर्क चलाने वाले गिरोह के सरगना सुशील तिवारी उर्फ दया तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जाली नोटों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सुशील तिवारी की गिरफ्तारी के लिए कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थीं। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बाकरपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, भारी संख्या में कारतूस, 4.5 लाख रुपए नकद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान।

0: बरामद किए गए हैं। पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में एक युवती से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मद्य निषेध कानून और भारतीय न्याय संहिता BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिले की बरबीघा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी पिस्तौल और 3 संदिग्ध मोबाइल बरामद की गई है। दोनों से प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। साइबर थाना पुलिस ने शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कतरी सराय कबीरपुर पथ पर गश्ती के दौरान एक साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सुपौल जिले के बीरपुर में सशस्त्र सीमा बल द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिल रैली निकाली गई। वाहिनी मुख्यालय बीरपुर से सीमा चौकी कटैया तक आयोजित रैली का उद्देश्य सीमा क्षेत्र के लोगों और जवानों के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और नियमित व्यायाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित महात्मा फुले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह में छात्र, शिक्षक और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नई शिक्षा नीति सख्ती से की जाएगी लागू। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण का प्रयास कर रही है। और प्रदेश के दक्षिणी भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास समेत प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुड्ढू।
3: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है। सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
3: जिले का 46वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को जिले के गौरवशाली इतिहास और विकास यात्रा से अवगत कराया। जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में श्री यादव ने कहा कि मधेपुरा ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं और अब विकास के गति को और तेज करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी और साहित्यकार डॉक्टर BN मधेपुरी की पुस्तक मधेपुरा जिला का इतिहास का वितरण किया गया। वहीं जिले के घैलाड़ क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले 100 खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मधेपुरा

0: जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। जिले में निर्धारित लक्ष्य 18,82,000 के मुकाबले करीब 10,72,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजीत कुमार मिश्र के अनुसार सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और वसुधा केंद्रों पर लगातार कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिले के 12 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना से जोड़ा गया है, जहां गंभीर बीमारियों का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मधेपुरा जिले में कैंसर पीड़ितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना के IGIMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने मधेपुरा में कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। IGIMS के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष प्रदेश में कैंसर के लगभग 78,000 मामले संस्थान में पहुंचे, जिनमें अकेले मधेपुरा जिले के करीब 2,750 मरीज शामिल थे। यह संख्या राज्य औसत से लगभग 700 अधिक बताई गई। डॉक्टर मंडल के अनुसार जिले का भूजल प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है। पानी में नाइट्रेट की बढ़ती मात्रा और रासायनिक प्रभाव के कारण पेट, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंत और मलद्वार से जुड़े कैंसर के मामले अधिक सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने की अपील भी की है। जिले में प्रशासनिक स्तर पर जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोलों में विशेष शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 38 चिन्हित शिविरों में आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और राशन कार्ड जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण और पौधरोपण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शिविर का आयोजन कल तक होगा। मधेपुरा में किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संयुक्त रूप से फार्मर रजिस्ट्री अभियान चला रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसके तहत किसान अपने भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री ID बनवा सकते हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक पारदर्शी और सुगम तरीके से पहुँचाना है। जिले में पासपोर्ट सेवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 26 मई तक विशेष मोबाइल वैन शिविर लगाया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से आयोजित इस शिविर के जरिए नागरिक अपने घर के नजदीक पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इच्छुक लोग पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर स्लॉट बुक कर आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जनवरी में आयोजित ऐसे शिविर में 165 आवेदनों का निष्पादन किया गया था। मधेपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। जिन लाभार्थियों ने अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें 30 मई तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए हैं और ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समय पर प्रमाणीकरण नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है। जिले के सिंहेश्वर से मानिकपुर तक बनने वाली बाईपास सड़क को विभागीय स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल इसका DPR तैयार किया जा रहा है। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से मधेपुरा और सिंहेश्वर शहर में जाम की समस्या कम होगी तथा आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। 9 मई को मधेपुरा जिले के व्यवहार न्यायालय और अनुमंडल न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां आपसी सहमति के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। वहीं 19 मई को जिले की विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री शीला मंडल और प्रभारी सचिव राहुल कुमार ने सहयोग शिविर में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए पेश है गजल। कलाकार हैं चंदन दास।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल चंदन दास की आवाज में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं दर्शन रावल की आवाज़ में 13 सुरूर फिल्म का ये गीत। समीर अंजान की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है सूफी जय फिल्म से असीस कौर की आवाज़ में। सुहैल अख्तर फारसी की लिखी इस गीत को संगीतबद्ध किया है आमिर खुसरो ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन

0: की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और

0: अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, ये सुनते हैं मोहम्मद इरफान की आवाज़ में शौकीन गामदी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं और संगीतकार हैं धर्म देवड़ा।

अभी आप सुन रहे थे शौकीन तमीने फिल्म का ये गीत। चलिए आगे सुनते हैं शेखर रवि जियानी फिल्म शेखर रवि जियानी की आवाज़ में निर्जा फिल्म से ही। गीत लिखा है परोसन जोशी ने, प्रसून जोशी ने, और इसे संगीतबद्ध किया है विशाल खुराना ने।

ओ खुशबू खुशबा महका इश्क डूबा डूबका गहरा इश्क।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं करम फिल्म का ये गीत। आवाज़ दी है अलीशा चुनाए और अमित मिश्रा ने। गीत लिखा है विशाल और इरशाद कामिल ने और इसे संगीतबद्ध किया है पंकज अवस्थी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बर्फी फिल्म का ये गीत। रेखा भारद्वाज की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत। कलाकार है सुनीता जोशी।

अभी आप सुन रहे थे गीत सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनीता जोशी के स्वर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आय

0: आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT

मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों आईआईटी के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यूपीएससी ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए यूपीएससी टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय त्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से

0: कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and US outline trade agreement, energy security and mobility as key areas of cooperation in high-level talks in New Delhi. BJP candidate Debangshu Panda sweeps West Bengal's Falta Assembly repoll by over 1 lakh votes. TMC candidate forfeits deposit. West Bengal government directs all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners. Government ropes in IIT Madras and Kanpur to experts to fix CBSE re-evaluation portal glitches. In Karnataka, 8 people swept away by strong currents in Tatte Hakalu River in Uttara Kannada district. President, Vice President and Prime Minister expressed grief over the loss of lives. Normal life affected due to severe heat wave in central and northwest India. Conditions to continue for next 7 days. And at the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers clinched 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcome the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
2: On the Iran conflict, Mr. Jaishankar said both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy as well as safe and unimpeded maritime commerce was also reiterated. He also pointed out that India is one of the very few countries in the world which has strong relations with the US, Israel, Iran, as well as other Gulf nations. Dr. Jaishankar also highlighted the importance of people-to-people ties and said legal mobility should not be adversely affected.
3: People-to-people ties are at the heart of our relationship. I apprise

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती माहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को ताउन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत ताउन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती माहदे की तकमील को की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा

0: और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। दतिया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद, जिनमें 7 खवातीन थीं, आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा इख्तियार करने वाली ट्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है, जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं, उन पर भी जहेज के लिए हरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दिगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था, जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसी लथेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्द तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगाशंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रोशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरोशंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauroshankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Gangashankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Muralidas Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauroshankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauroshankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauroshankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauroshankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: Pandit Hauroshankar Bhattacharya sitar vadan ki is prastuti ka aarambh raag darbari ke saath karenge. Yeh bandish aalap aur jod ke saath shuru hogi.

0: जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हरशंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी बिगिनिंग विद अलाप एंड जोर द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट टू गत इन विलंबित तीन ताल फॉलोड बाय मध्य लय तीन ताल।

सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानट सुन रहे थे। पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानट इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरोशंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी कोलकाता।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में